ये है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं भक्ति संगीत आराधना अपनी रेडियो दो शशि के।

हम बोल रहे हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला से और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं भक्ति संगीत आराधना।

हम बोल रहे हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला से और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं भक्ति संगीत आराधना।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला। तो श्रोताओं, बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा भजन।

ये है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं भक्ति संगीत आराधना अपनी रेडियो।

0: 91.2 MHz पर ये है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे थे भक्ति संगीत आराधना अपनी रेडियो दोस्त शशि के साथ। तो श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। आप सभी यूं ही सुनते रहिए रेडियो गुंजन
1: 91.2 MHz पर। ए तुहा सारे दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला जी श्रोताओं कन तुहा सारे कार्यक्रम सुना देना माटी दी महक अपनी रेडियो दोस्त रुचिका कन्या।

ए तो हाँ सारे दा अपना सामुदायिक रेडियो गुंजन धर्मशाला कनिष्ठो तो हाँ सारे इस कार्यक्रम सुना दे माटी दी महक तो सुन दे ना कार्यक्रम दा अगला गीत तो हाँ सारे इये ही बनी रिया कनिष्ठ सुन दे रिया रेडियो गुंजन धर्मशाला गूंज अपने बंदी।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये तो हाँ सारे दा अपना पसंदीदा रेडियो गुंजन धर्मशाला कने श्रोताओ तो हाँ सारे अपने पसंदीदा कार्यक्रम सुना दे जिसका नाम है माटी दी महक। सुन दे कार्यक्रम दा अगला गीत।

कानवे दशमलव दो मेगा हर्ट्स पर ये तुहां सारिया दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला जी श्रोताओ कने तुहां सारे कार्यक्रम सुना दे थे माटी दी महका। आज दे कार्यक्रम च बस इतना ही, तुहां सारे ई बनी रिया सुन दे रिया रेडियो गुंजन धर्मशाला, गूंज अपने पन दी।

0: गोरिया
1: गोरिया गोरिया आकर आ गोरिया
2: हटो हटो हटो हटो एले गोरिया।
3: प्लास्टिक गोरिया जैसे नादान जानवरों की जान ले सकता है। आप भी छोटी सी शुरुआत कीजिए, प्लास्टिक को अलग डस्टबिन में डाल के शुरू करें एक छोटी सी अच्छाई।
4: बैठिए मैडम बैठिए। अरे देखो इनको, इनकी नाक देखो, बिल्कुल अपने पिताजी से मिलती है। देखो इसकी आंखें देखो। पता है तेरे पिताजी ने हमें हंसाया है, रुलाया है, मनोरंजन दिया है। मतलब कौन सा गाना था, एक चतुर नार बड़ी होशियार है, क्या गाना था वो?
5: अरे बेटो तू यहाँ क्या कर रहा है, और ये दोनों लड़कियों कौन है?
4: देखिए भाई साहब आप कौन है?
5: जी मैं इसका बाप हूँ।
4: आप इसके बाप हैं? महमूद का बेटा नहीं है तू? अरे हास्य कलाकार महमूद, ये तेरे बाप का रोड नहीं है?
6: जी नहीं।
4: तो फिर बिना हेलमेट के दो लड़कियों को बिठा के रूम रूम करते शर्म नहीं आती तुम्हें?
7: चालान तो कटेगा भैया तेरा,
4: और अभी उतर के लेके जाओ। आपकी और सबकी सुरक्षा के लिए कृपया ट्रैफिक नियम का पालन कीजिए, क्योंकि
6: रोड किसी के बाप का नहीं है।
4: शाबाश, सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा।
8: नमस्कार दोस्तों, प्रेम विश्वास और भाई बहन के अटूट रिश्ते का ये पावन पर्व रक्षाबंधन आप सभी के जीवन में ढेर सारी खुशियाँ लेकर आ रहा है। राखी का ये पवित्र धागा सिर्फ कलाई पर बंधा एक धागा नहीं, बल्कि प्यार विश्वास सुरक्षा और जीवन भर साथ निभाने के वचन का प्रतीक है।

रिश्तों में मिठास रहे, अपनों का साथ रहे। रिश्तों में मिठास रहे, अपनों का साथ रहे। हर कलाई पर सजे प्यार का धागा और हर चेहरे पर मुस्कान रहे। इन्हीं खूबसूरत भावनाओं के साथ रेडियो गुंजन धर्मशाला की ओर से आ रहे इस रक्षाबंधन पर्व की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं।

0: नमस्ते भैया, कैसे हो भाभी जी?
1: अभी शादी का लहंगा सिलवाना था।
0: हाँ हाँ, बहुत सारे डिजाइन है, ये देखिए कौन सा स्टाइल चाहिए आपको। ये देखिए, पिछले महीने मिश्रा जी की बेटी की शादी के लिए सिया था।
1: ये तो स्लीवलेस है, हमें फुल स्लीव्स वाला चाहिए। थोड़ा सिंपल दिखाइए।
0: सिंपल में तो फिर, अरे पर किसके लिए बनाना है?
1: चुन्नी के लिए।
0: ये अपनी चुन्नी?
1: हाँ, अच्छा रिश्ता मिला है।
0: बेटा चुन्नी, कितने साल के हो आप?
2: अगले ही महीने 12 साल की हो जाएगी। पंडित जी ने इसी इतवार का मुहूर्त निकाला है, तो हो तो जाएगा ना तब तक।
0: अच्छा, 12 साल की है तो आपको प्रॉब्लम नहीं है?
2: नहीं, क्यों?
0: और आपको भी प्रॉब्लम नहीं है? पर मुझे प्रॉब्लम है, मैं नहीं सीऊंगा।
2: चलो छोड़ो उसे, किसी और से सिलवा लेंगे।
0: अरे भैया जी, एक मिनट। अरे बिरजू, वो कौन सा नंबर है, निकलवाओ तो जरा।
3: मास्टर जी, टोल फ्री नंबर है 1098, कभी भी कॉल करके कंप्लेन कर सकते हैं।
0: ना हम सीएंगे ना किसी को सीने देंगे।
4: जीवन की हर उलझन का हल मिलेगा मित्र, बस अपने मन को थोड़ा शांत करके देखो। जो तुम्हारा है वो कहीं नहीं जाएगा, और जो चला गया वो कभी तुम्हारा था ही नहीं। हर परिस्थिति में मुस्कुराना सीखो, क्योंकि मुस्कान ही हर दर्द की सबसे बड़ी दवा है। भरोसा उस ईश्वर पर पूरा रखो, वो तुम्हें वही देगा जो तुम्हारे लिए सही है। तुम्हारी सरलता ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है, और तुम्हारी खामोशी में ही ईश्वर का वास।
5: मम्मी जी क्या कह रहे हैं, बचपन में आपका बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ था।
6: हाँ, जब मैं 12 साल का था ना, तो मैं पापा को बिना बताए उनकी बाइक लेके घर से बाहर निकल गया, और मैं बाइक इतनी तेज चला रहा था कि सामने से एकदम से ट्रक आ गया। तो ट्रक को बचाने के चक्कर में मैंने एकदम से लेफ्ट ले लिया। तो जैसे ही लेफ्ट लिया, सामने से गाड़ी आ रही थी, और गाड़ी में जाके बाइक लगी और बाइक पूरी खत्म हो गई।
5: बेबी बाइक को छोड़ो, आप बताओ आप बचे थे कि नहीं।
6: तब तो बच गया था, लगता है अब नहीं बचूंगा।

नमस्कार दोस्तों, ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला 91.2 MHz पर। मैं हूँ आपकी अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका, हाजिर हो गई हूँ कार्यक्रम लेकर गीत सुहाने नए पुराने।

दोस्तों बहुत ही प्यारा सा गीत था, आप सभी ने एंजॉय किया। आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और फिर से चलते हैं एक प्यारे से गीत की तरफ।

आप सभी कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं, गीत सुहाने नए पुराने, और आज के इस सफर को आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ।

दोस्तों आप सभी ने ट्यून किया है 91.2 MHz पर अपना मन पसंद रेडियो कुंचन धर्मशाला और कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं दोस्तों आप सभी, गीत सुहाने नए पुराने इस प्यारे से सफर को आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ। तो आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

दोस्तों कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपने मनपसंद रेडियो कुंचन धर्मशाला से। आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और लेकर चलते हैं आप सभी को फिर से एक प्यारे से म्यूजिकल ब्रेक की तरफ।

दोस्तों, नए पुराने गीतों का ये सफर आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला से। आइए एंजॉय करते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

दोस्तों, ये है आप सभी का अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

दोस्तों बहुत ही प्यारा सा गीत आप सभी ने एंजॉय किया। आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और फिर से चलते हैं एक प्यारे से गीत की तरफ।

आप सभी कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं, गीत सुहाने, नए पुराने, और आज के इस सफर को आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ।

दोस्तों, आप सभी ने ट्यून किया है 91.2 MHz पर अपना मन पसंद रेडियो कुंचन धर्मशाला और कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं। दोस्तों, आप सभी गीत सुहाने नए पुराने इस प्यारे से सफर को आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ। तो आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

दोस्तों कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपने मनपसंद रेडियो कुंचन धर्मशाला से। आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और लेकर चलते हैं आप सभी को फिर से एक प्यारे से म्यूजिकल ब्रेक की तरफ।

दोस्तों, नए पुराने गीतों का ये सफर आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला से। आइए एंजॉय करते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

दोस्तों ये है आप सभी का अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

दोस्तों बहुत ही प्यारा सा गीत आप सभी ने एंजॉय किया अपने मन पसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला से। आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और एंजॉय करते हैं कार्यक्रम का ये अगला खूबसूरत सा गीत। आप सभी इसी तरह से एंजॉय करते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला, गूंज अपने पन की।

दोस्तों बहुत ही प्यारा सा गीत आप सभी ने एंजॉय किया। आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और फिर से चलते हैं एक प्यारे से गीत की तरफ।

आप सभी कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं, गीत सुहाने नए पुराने, और आज के इस सफर को आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ।

दोस्तों आप सभी ने ट्यून किया है 91.2 MHz पर अपना मन पसंद रेडियो कुंचन धर्मशाला और कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं दोस्तों आप सभी। गीत सुहाने नए पुराने इस प्यारे से सफर को आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ। तो आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

दोस्तों कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपने मनपसंद रेडियो कुंचन धर्मशाला से। आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और लेकर चलते हैं आप सभी को फिर से एक प्यारे से म्यूजिकल ब्रेक की तरफ।

दोस्तों ये है आप सभी का अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

0: दोस्तों बहुत ही प्यारा सा गीत आप सभी ने एंजॉय किया अपने मन पसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला से। आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और एंजॉय करते हैं कार्यक्रम का ये अगला खूबसूरत सा गीत। आप सभी इसी तरह से एंजॉय करते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला, गूंज अपने पन की।
1: फोकस करना पड़ेगा सर ट्रेन में।
2: फोकस।

आप सभी कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं, गीत सुहाने नए पुराने, और आज के इस सफर को आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ।

दोस्तों आप सभी ने ट्यून किया है 91.2 MHz पर अपना मन पसंद रेडियो कुंचन धर्मशाला और कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं दोस्तों आप सभी, गीत सुहाने नए पुराने इस प्यारे से सफर को आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ। तो आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

नमस्कार। 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। अब आप सभी सुनेंगे आज का ये खास समाचार बुलेटिन रंजिका के साथ। तो आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों की हेडलाइंस पे। जल शक्ति विभाग में होगी 4000 मल्टीटास्क वर्कर्स की भर्ती। SOS की परीक्षाएं 17 से हिमाचल स्कूल शिक्षा बोर्ड ने जारी किया शेड्यूल। इसरो अब नहीं बनाएगा कोई रॉकेट। रूफटॉप सोलर सिस्टम ग्रिड से जोड़ना अब और आसान। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि जल शक्ति विभाग में जल्द ही मल्टीटास्क वर्कर्स के 4000 पद भरे जाएंगे। ये बात उन्होंने विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान विधायक भुवनेश्वर गौड़ के सवाल के जवाब में कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि लोक निर्माण, जल शक्ति विभाग और बिजली बोर्ड में क्रियाशील रिक्त पदों को भरा जाएगा। उनका कहना है कि सरकार बिजली बोर्ड के अधिशासी अभियंता के माध्यम से बिजली मित्रों की भर्ती करेगी। मनाली विधानसभा क्षेत्र में भी बिजली मित्रों की भर्ती होगी। इसमें स्थानीय युवकों को तरजीह दी जाएगी। बेलदार के पदों के लेकर मुख्यमंत्री ने साफ किया कि इन्हें पूर्व सरकार के वक्त ही समाप्त कर दिया गया है तथा इनके स्थान पर MTW की नीति बनी है। हिमाचल पथ परिवहन निगम प्रदेश में इलेक्ट्रिक बसों के संचालन के लिए आवश्यक चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत कर रहा है। इसके तहत 122 करोड़ रुपए की लागत से प्रदेश में 80 स्थानों पर चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जा रहे हैं। इनमें से 34 स्थानों पर चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जा चुके हैं जबकि 21 स्थानों पर आगामी एक माह के भीतर चार्जिंग स्टेशन स्थापित कर लिए जाएंगे। शेष 25 स्थानों पर चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने की प्रक्रिया जारी है। ये जानकारी उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने हिमाचल पथ परिवहन निगम के अधिकारियों के साथ आयोजित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए दी। उन्होंने बताया कि ये चार्जिंग स्टेशन HRTC के बस अड्डों और वर्कशॉप में स्थापित किए जा रहे हैं। इससे विभिन्न रूटों पर संचालित इलेक्ट्रिक बसों के लिए चार्जिंग सुविधा उपलब्ध होगी और उनके संचालन को और गति मिलेगी। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि इलेक्ट्रिक बसों के साथ साथ उनके लिए आवश्यक चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार प्रदेश में आधुनिक, किफायती और पर्यावरण अनुकूल सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। HRTC इलेक्ट्रिक बसों के संचालन के लिए आवश्यक सुविधाओं को चरणबद्ध तरीके से विकसित कर रहा है ताकि यात्रियों को बेहतर और आधुनिक परिवहन सुविधा उपलब्ध करवाई जा सके। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने वाराणसी में आयोजित फेडरेशन ऑफ होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया के 56वें वार्षिक अधिवेशन में देश भर में आए होटल व्यवसायियों, ट्रेवल एजेंटों, टूर ऑपरेटरों और पर्यटन उद्योग से जुड़े अन्य प्रतिनिधियों का स्वागत एवं अभिनंदन किया। मुख्यमंत्री ने पर्यटन उद्योग से जुड़े सभी लोगों से आग्रह किया कि वे देश विदेश के पर्यटकों को हिमाचल आने के लिए प्रोत्साहित तथा अपने टूर पैकेज में राज्य के नए और अनछुए पर्यटन स्थलों को भी शामिल करें। उनका कहना है कि हिमाचल की शांत और सुरक्षित घाटियां, स्वच्छ हवा, निर्मल हरे भरे जंगल, समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और गांवों की सरल जीवन शैली इससे देश और विदेश के पर्यटकों के बीच एक अलग पहचान प्रदान करती है। आज का पर्यटक केवल पारंपरिक पर्यटन स्थलों तक सीमित नहीं रहना चाहता बल्कि वो शांति, प्रकृति, स्थानीय संस्कृति, वेलनेस, प्रामाणिक अनुभव और स्थानीय लोगों के साथ जुड़ाव को भी प्राथमिकता दे रहा है। हिमाचल इन सभी नई पर्यटन आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता रखता है। उनका कहना है कि सड़क, बिजली, पानी और डिजिटल कनेक्टिविटी में सुधार से राज्य के दूरदराज क्षेत्र के पर्यटन स्थल भी अब अधिक सुगम हो गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार पर्यटकों को हिमाचल के अनछुए क्षेत्रों, स्थानीय संस्कृति, परंपरा और जीवन शैली से करीब से परिचित करवाने के लिए अनुभव आधारित पर्यटन को बढ़ावा दे रही है। इसके साथ ही कारवां पर्यटन और वीकेंड पर्यटन को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। महिलाओं के लिए हिमाचल प्रदेश को सुरक्षित और स्वागत योग्य पर्यटन गंतव्य बनाने के उद्देश्य से शी ट्रैवल नीति तैयार की जा रही है। सरकार महिलाओं को होम स्टे, स्थानीय खाद्य व्यवसाय, हस्तशिल्प, स्थानीय उत्पादों और पर्यटन से जुड़े स्टार्टअप के माध्यम से रोजगार एवं स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने के लिए महिला आधारित पर्यटन उद्यमिता को भी बढ़ावा दे रही है। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के SOS की 8वीं, 10वीं और 12वीं कक्षा की परीक्षाएं 17 सितंबर से शुरू होंगी।
इस दौरान पूर्ण विषय रिपेयर, श्रेणी सुधार, विशेष अंक सुधार और अतिरिक्त विषय की परीक्षाएं शामिल होंगी। इन परीक्षाओं का आयोजन सुबह 9:45 से दोपहर 1 बजे तक रहेगा। बोर्ड ने परीक्षाओं का शेड्यूल जारी कर दिया है। 8वीं कक्षा की परीक्षाएं 17 से 24 सितंबर, 10वीं कक्षा की 17 से 28 सितंबर और 12वीं कक्षा की परीक्षाएं 17 सितंबर से 6 अक्टूबर तक रहेंगी। इस संदर्भ में हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने अधिसूचना भी जारी कर दी है। 10वीं और 12वीं कक्षाओं के परीक्षार्थियों की प्रायोगिक परीक्षाएं 8 से 17 अक्टूबर तक आंतरिक रूप से सभी राजकीय और संबद्धता प्राप्त विद्यालयों में स्थापित अध्ययन केंद्रों में संबंधित विषय के अध्यापक द्वारा स्थल पर ही प्रश्न पत्र सेट करवाकर संचालित करवाई जाएंगी। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो अब तक के सबसे बड़े ढांचागत बदलाव की तैयारी कर रहा है। इसरो अब खुद रॉकेट बनाने का काम धीरे धीरे बंद करेगा। आगे रॉकेट बनाने की जिम्मेदारी निजी कंपनियों और कुछ सरकारी कंपनियों को दी जाएगी। इंस्पेस के चेयरमैन डॉक्टर पवन गैनका ने बताया कि इसरो अपने पारंपरिक काम जैसे लॉन्च व्हीकल और आम सैटेलाइट बनाने का जिम्मा धीरे धीरे प्राइवेट सेक्टर और पीएसयू को सौंपने जा रहा है। इसरो अब रिसर्च, नई टेक्नोलॉजी, वैज्ञानिक मिशन और जरूरी स्पेस सिस्टम पर ज्यादा ध्यान देगा। इस बदलाव का मकसद देश में निजी कंपनियों की भागीदारी बढ़ाना और स्पेस सेक्टर की को तेजी से आगे बढ़ाना है। हिमाचल प्रदेश में घरों और अन्य पात्र परिसरों पर रूफटॉप सोलर सिस्टम लगाकर बिजली ग्रिड से जोड़ना अब पहले के मुकाबले आसान होगा। हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग ने रूफटॉप सोलर फोटोवोल्टिक ग्रिड इंटरैक्टिव सिस्टम लगाने वाले उपभोक्ताओं के लिए आवेदन और कनेक्शन प्रक्रिया को सरल और डिजिटल बना दिया है। आयोग ने रूफटॉप सोलर पीवी ग्रिड इंटरैक्टिव सिस्टम विनियम 2015 में 14 संशोधन करते हुए अधिसूचना जारी की है। संशोधित नियमों के तहत पात्र उपभोक्ता केंद्र या राज्य सरकार की रूफटॉप सोलर योजना के तहत सोलर सिस्टम स्थापित कर उसे बिजली ग्रिड से जोड़ने के लिए आवेदन कर सकेंगे। इसके लिए आवेदन की प्रक्रिया को किसी एक माध्यम तक सीमित नहीं रखा गया है। उपभोक्ता डाक के माध्यम से संबंधित कार्यालय में स्वयं जाकर ईमेल अथवा निर्धारित आधिकारिक ऑनलाइन पोर्टल के जरिए आवेदन कर सकेंगे। आवेदन के लिए निर्धारित फॉर्म एक बिजली वितरण कंपनी की वेबसाइट और उसकी अधिकृत कार्यालयों में उपलब्ध रहेगा। इसी के साथ आज का ये खास समाचार बुलेटिन यही समाप्त होता है। धन्यवाद।

0: गोरिया
1: गोरिया
2: गोरिया।
3: प्लास्टिक गोरिया जैसे नादान जानवरों की जान ले सकता है। आप भी छोटी सी शुरुआत कीजिए, प्लास्टिक को अलग डस्टबिन में डाल के शुरू करें एक छोटी सी अच्छाई।
4: बैठिए मैडम बैठिए। अरे देखो इनको, इनकी नाक देखो, बिल्कुल अपने पिताजी से मिलती। देखो इसकी आंखें देखो। पता है तेरे पिताजी ने हमें हंसाया है, रुलाया है, मनोरंजन दिया है। मतलब कौन सा गाना था, एक चतुर नार बड़ी होशियार है, क्या गाना था वो।
5: अरे बेटो तू यहाँ क्या कर रहा है, और ये दोनों लड़कियों कौन है?
4: देखिए भाई साहब आप कौन है?
5: जी मैं इसका बाप हूँ।
4: आप इसके बाप हूँ? नमूद का बेटा नहीं तू? अरे हास्य कलाकार नमूद, ये तेरे बाप का रोड नहीं है?
6: जी नहीं।
4: तो फिर बिना हेलमेट के दो लड़कियों को बिठा के रूम रूम करते शर्म नहीं आती तुम्हें?
1: चलान तो कटेगा भैया तेरा,
4: और अभी उतर के लेके जाओ आपकी और सबकी सुरक्षा।

नमस्कार दोस्तों, प्रेम विश्वास और भाई बहन के अटूट रिश्ते का ये पावन पर्व रक्षाबंधन आप सभी के जीवन में ढेर सारी खुशियाँ लेकर आ रहा है। राखी का ये पवित्र धागा सिर्फ कलाई पर बंधा एक धागा नहीं, बल्कि प्यार, विश्वास, सुरक्षा और जीवन भर साथ निभाने के वचन का प्रतीक है।

0: नमस्ते भैया, कैसे हो भाभी जी?
1: अभी शादी का लहंगा सिलवाना था।
0: हाँ हाँ, बहुत सारे डिजाइन है, ये देखिए। कौन सा स्टाइल चाहिए आपको? ये देखिए, पिछले महीने मिश्रा जी की बेटी की शादी के लिए सिया था।
1: ये तो स्लीवलेस है, हमें फुल स्लीव्स वाला चाहिए। थोड़ा सिंपल दिखाइए।
0: सिंपल में तो फिर, अरे पर किसके लिए बनाना है?
1: चुन्नी के लिए।
0: ये अपनी चुन्नी?
1: हाँ, अच्छा रिश्ता मिला है।
0: बेटा चुन्नी, कितने साल के हो आप?
2: अगले महीने 12 साल की हो जाएगी। पंडित जी ने इसी इतवार का मुहूर्त निकाला है, तो हो तो जाएगा ना तब तक।
0: अच्छा, 12 साल की है तो आपको प्रॉब्लम नहीं है?
2: नहीं, क्यों?
0: और आपको भी प्रॉब्लम नहीं है? पर मुझे प्रॉब्लम है, मैं नहीं सीऊंगा।
2: चलो छोड़ो उसे, किसी और से सिलवा लेंगे।
0: अरे भैया जी, एक मिनट। अरे बिरजू, वो कौन सा नंबर है, निकलवा तो जरा।
3: मास्टर जी, टोल फ्री नंबर है 1098, कभी भी कॉल करके कंप्लेन कर सकते हैं।
0: ना हम सीएंगे, ना किसी को सीने देंगे।
4: जीवन की हर उलझन का हल मिलेगा मित्र, बस अपने मन को थोड़ा शांत करके देखो। जो तुम्हारा है वो कहीं नहीं जाएगा, और जो चला गया वो कभी तुम्हारा था ही नहीं। हर परिस्थिति में मुस्कुराना सीखो, क्योंकि मुस्कान ही हर दर्द की सबसे बड़ी दवा है। भरोसा उस ईश्वर पर पूरा रखो, वो तुम्हें वही देगा जो तुम्हारे लिए सही है। तुम्हारी सरलता ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है, और तुम्हारी खामोशी में ही ईश्वर का वास।
5: मम्मी जी क्या कह रहे हैं, बचपन में आपका बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ था?
2: हाँ, जब मैं 12 साल का था ना, तो मैं पापा को बिना बताए उनकी बाइक लेके घर से बाहर निकल गया, और मैं बाइक इतनी तेज चला रहा था कि सामने से एकदम से ट्रक आ गया। ट्रक को बचाने के चक्कर में मैंने एकदम से लेफ्ट ले लिया, तो जैसे ही लेफ्ट लिया सामने से गाड़ी आ रही थी, और गाड़ी में जाके बाइक लगी और बाइक पूरी खत्म हो गई।
5: बेबी बाइक को छोड़ो, आप बताओ आप बचे थे कि नहीं?
2: तब तो बच गया था, लगता है अब नहीं बचूंगा।

फ्रीक्वेंसी 91.2 पर श्रोता इस समय आप जुड़े हुए हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ और कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला। कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारी ओर से प्यार भरी नमस्ते। जी हाँ श्रोताओं, हम पहुंच चुके हैं रेडियो गुंजन के स्टूडियो में लेकर ढेर सारी जानकारियाँ और प्यारे प्यारे गीत। तो श्रोताओं, ये कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और आप तक पहुँचाते हैं कार्यक्रम का ये प्यारा सा पहला गीत। तो आप बने रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ।

श्रोताओ, इस प्यारे से गीत के बाद कार्यक्रम में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज कार्यक्रम में हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज के सुविचार की। श्रोताओ, कहते हैं शब्दों की ताकत को कम मत आंकिए, क्योंकि छोटा सा हाँ और छोटा सा ना पूरी जिंदगी बदल देता है। आप सभी ने देखा होगा श्रोताओ कि शब्द बड़ा छोटा है, लेकिन जब हमारी बात बनने या बिगड़ने पर आती है तो छोटे से शब्द से ही सब कुछ बन जाता है या सब कुछ खत्म हो जाता है। जैसे अगर हम बात करें जीरो की, शून्य की, तो शून्य लगने से शब्द की जो है गुणवत्ता बढ़ जाती है। उसी तरह से हाँ और ना से हमारी ज़िंदगी ही पूरी तरह से बदल जाती है। तो शब्दों की ताकत को श्रोताओं हमें बिल्कुल भी कम नहीं आंकना चाहिए। हर चीज़ की अपनी वैल्यू होती है, हर चीज़ का अपना महत्व होता है और समय के साथ साथ वो महत्व और भी बढ़ जाता है। तो श्रोताओं, अपनी बात और जानकारियों के साथ साथ हम कार्यक्रम में फिर से आप सभी को लिए चलते हैं गीत संगीत की ओर।

श्रोताओ, इस समय आप बने हुए हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ और कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला। तो श्रोताओ, कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मौसम की। मौसम के मिजाज तो आपको पता है श्रोताओ, पल में बदलते रहते हैं। पल में धूप तो पल में बारिश हो जाती है। कभी कभी तो पता ही नहीं चलता है कि कब बारिश आ गई है, एकदम से भागम भाग पड़ जाती है और बहुत तेज़ वाली बारिश हो जाती है उस समय। तो थोड़ा बरसातों का मौसम चल रहा है श्रोताओ, इस तरह से ही हर जगह हो रहा है। और थोड़ा सा ऐसे मौसम में हम सभी को रखना होता है अपना ध्यान और ख्याल, क्योंकि जब हम अपना रखते हैं ध्यान तो थोड़ा सा बीमारियों से भी बचे रहते हैं, क्योंकि एकदम शरीर गर्म होता है और बारिश की ठंडी ठंडी बूंदें जब हमारे ऊपर गिरती हैं तो बीमार भी हम हो जाते हैं।

अंदर चले जाते हैं, और जब धूप खिलती है तो मन करता है इसी चीज़ को भी धूप लगा ले, उस चीज़ को भी धूप लगा ले। और कहीं कहीं तो बरसातें इतनी होती हैं कि धूप निकलने का नाम ही नहीं लेती है, तो वहाँ पर कई बार बिस्तर से भी थोड़ी हल्की हल्की स्मेल आने लगती है। तो ऐसे में श्रोताओं, जब भी धूप निकले थोड़ा सा फ़ायदा लें, अपने घर के कपड़ों को, अपने घर के सामान को, खाने पीने की चीज़ों को धूप लगवा ले ताकि वो ख़राब ना हो। और बिस्तर में भी धूप लगाई हो तो कहीं ना कहीं जो है वो स्मेल निकल जाती है और अच्छा लगता है, और स्मेल कहीं ना कहीं वो अच्छी नहीं लगती है। और थोड़ा सा अपना सभी ऐसे मौसम में रखे ध्यान, और फिलहाल हमें रखना है आपका ध्यान और आप तक पहुँचाना है कार्यक्रम के अगला प्यारा सा गीत। तो सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

0: श्रोतो, फिलहाल कार्यक्रम में समय हो रहा है 9:20 और समाचारों का समय हो जाता है, तो आइए आपको भी लिए चलते हैं समाचारों के लिए। और थोड़ा सा इसके लिए आपको करना होगा इंतज़ार।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप विनोद कुमार से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रीय खेल दिवस के उपलक्ष्य पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वर्चुअल माध्यम से खिलाड़ियों, जनप्रतिनिधियों व युवाओं से करेंगे संवाद। धर्मशाला में भी कार्यक्रम। प्रदेश विधानसभा के मॉनसून सत्र की तीसरी बैठक आज। दोपहर बाद शुरू होने वाले सत्र में कई मुद्दों पर तप सकता है सदन। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली सहित कुछ अन्य राज्यों में स्वाइन फ्लू फैलने के बाद प्रदेश का स्वास्थ्य विभाग हुआ अलर्ट। स्वास्थ्य संस्थानों के लिए जरूरी दिशा निर्देश जारी। और रक्षाबंधन पर्व को लेकर प्रदेश के बाजारों में बढ़ने लगी रौनक। विशेष बच्चों व स्वयं सहायता समूहों द्वारा तैयार की गई राखियां बनने लगी आकर्षण का केंद्र। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय खेल दिवस के उपलक्ष्य पर आज खेलो इंडिया संवाद कार्यक्रम का आयोजन होगा। युवा कार्यक्रम व खेल मंत्रालय द्वारा आयोजित किए जा रहे इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल माध्यम से खिलाड़ियों, जनप्रतिनिधियों और युवाओं से संवाद करेंगे। भारतीय खेल प्राधिकरण के धर्मशाला स्थित केंद्र में इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम को लेकर हमारे जिला संवाददाता ने कहा कि
2: राष्ट्रीय खेल दिवस पर इंडिया संवाद कार्यक्रम का आयोजन धर्मशाला में किया जा रहा है। कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं को खेल एवं फिटनेस से जोड़ने के साथ साथ खेल क्षेत्र के विकास, प्रतिभा संवर्धन, खेल प्रशासन तथा विकसित भारत 2047 को लेकर युवाओं के विचारों और आकांक्षाओं को सामने लाना है। स्थानीय खिलाड़ियों, जन प्रतिनिधियों और युवाओं के साथ संवाद तथा युवा संवाद के आयोजन के माध्यम से खेलों को लेकर युवाओं की भागीदारी बढ़ाने और उनकी प्रतिभा व विचारों को मंच देने का प्रयास किया जाएगा। माई भारत केंद्र कांगड़ा के उपनिदेशक ध्रुव डोगरा ने कहा कि कार्यक्रम के माध्यम से धर्मशाला से युवाओं और खिलाड़ियों के बीच खेल फिटनेस तथा विकसित भारत के लक्ष्य को लेकर संवाद को बढ़ावा देने का संदेश दिया जाएगा। आकाशवाणी समाचार के लिए कांगड़ा से विपिन शर्मा।
1: प्रदेश विधानसभा के मॉनसून सत्र की आज तीसरी बैठक है। एक दिन के अवकाश के बाद सत्र की कार्यवाही दोपहर बाद 2 बजे शुरू होगी। शुरुआती 2 दिनों में वंदे मातरम और राष्ट्रगान के मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच भारी हंगामा देखने को मिला था। आज भी सदन में हंगामे के आसार है। विस्तृत रिपोर्ट के साथ हमारे जिला संवाददाता।
3: सदन की कार्यवाही प्रश्नकाल के साथ शुरू होगी, जिसमें विधायकों द्वारा स्वास्थ्य संस्थानों, शैक्षणिक संस्थानों में खाली पदों, बेरोजगारी, आपदा से नुकसान, सड़कों की बदहाली और जनहित के अन्य मुद्दों पर प्रश्न पूछे गए हैं। प्रश्नकाल के बाद शून्यकाल होगा, जिसमें विधायक कई अहम मुद्दे उठाएंगे। इसके बाद नियम 62 के अंतर्गत 2 ध्यानाकर्षण प्रस्तावों और नियम 130 के अंतर्गत 2 प्रस्तावों पर सदन में चर्चा होगी। मॉनसून सत्र की कार्यवाही 2 दिन काफी हंगामेदार रही है। सदन की शुरुआत राष्ट्रगान के साथ हुई थी, लेकिन भाजपा विधायकों द्वारा वंदे मातरम गाने की मांग को लेकर हुए हंगामे के कारण कार्यवाही 2 दिन सुचारू रूप से नहीं चल पाई और सदन की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा। आज भी पक्षी भाजपा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का मुद्दा सदन में उठाएगी, जिस पर हंगामे के आसार हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए शिमला से योगराज शर्मा।
1: गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में आयोजित होने वाले 9वें राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन में भाग लेंगे। 2 दिवसीय ये सम्मेलन भौतिक और आभासी दोनों माध्यमों से संयुक्त रूप से आयोजित किया जाएगा। देशभर के विभिन्न सुरक्षा बलों और पुलिस बलों के 850 से अधिक अधिकारी सम्मेलन के दौरान राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित विभिन्न समकालीन मुद्दों और चुनौतियों पर विचार विमर्श करेंगे। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत कुछ अन्य राज्यों में स्वाइन फ्लू फैलने के बाद प्रदेश में भी स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है। राष्ट्रीय

0: स्वास्थ्य मिशन के निदेशक प्रदीप कुमार ने बताया कि स्वाइन फ्लू को देखते हुए सभी मेडिकल कॉलेजों और बड़े अस्पतालों के एमएस व मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि इसके अलावा संदिग्ध मामलों की समय पर पहचान कर जांच करवाने और मरीजों को आवश्यक उपचार देने के लिए भी कहा गया है। प्रदीप कुमार ने कहा कि बाहरी राज्यों से अपने घर हिमाचल आने वाले लोगों के सैंपल लेने के लिए भी स्वास्थ्य संस्थानों को कहा गया है। इसके अलावा आइसोलेशन, संक्रमण नियंत्रण और आवश्यक दवाएं सुनिश्चित करने के लिए स्वास्थ्य संस्थानों को निर्देश दिए गए हैं। चंबा जिला प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुरक्षा को देखते हुए 25 अगस्त तक पवित्र मणिमहेश यात्रा स्थगित करने का निर्णय लिया है। उपायुक्त मुकेश रेपसवाल ने बताया कि ये निर्णय यात्रा मार्ग पर भारी वर्षा के चलते संभावित खतरे को देखते हुए लिया गया है। उन्होंने श्रद्धालुओं से इस दौरान यात्रा मार्ग पर जाने से बचने और प्रशासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करने का आग्रह किया गया है। आधिकारिक तौर पर पवित्र मणिमहेश यात्रा 4 सितंबर से शुरू होगी और 19 सितंबर तक चलेगी। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। रक्षाबंधन का पवित्र त्यौहार नजदीक आते ही प्रदेश के बाजारों में चहलकदमी बढ़नी शुरू हो गई है और रंग बिरंगी राखियों की मांग भी बढ़ने लगी है। इस त्यौहार को लेकर विभिन्न स्वयं सहायता समूहों और विशेष स्कूलों के बच्चे भी राखियां तैयार कर रहे हैं। इस कार्य में नाहन शहर का आस्था स्पेशल स्कूल भी पीछे नहीं है और यहां दिव्यांग बच्चे अपने हुनर को राखियों के माध्यम से बाजार में उतार रहे हैं। अधिक ब्यौरे के साथ हमारे जिला संवाददाता।
1: आस्था स्पेशल स्कूल नाहन की ये विशेष बच्चे पिछले कई सालों से रक्षाबंधन के लिए राखियां तैयार करते आ रहे हैं। इन बच्चों द्वारा तैयार की जाने वाली राखियों की बाजार में खूब डिमांड रहती है। इस पहल के पीछे का मुख्य मकसद इन विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को हुनरमंद बनाकर उन्हें आत्मनिर्भरता की तरफ ले जाना है। वही बच्चों में राखियां बनाने को लेकर खासा उत्साह देखा जा रहा है। राखियों को लोगों तक पहुंचाने के लिए विशेष काउंटर लगाए गए हैं, जहां लोग इन बच्चों के हाथों से बनी राखियां खरीद पा रहे हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए सिरमौर से सतीश शर्मा।
0: चंबा जिला में लोगों को स्वास्थ्य वर्धक खाद्य वस्तुओं उपलब्ध करवाने और सार्वजनिक वितरण प्रणाली सुनिश्चित करवाने के लिए विभाग लगातार प्रयासरत है। खाद्य आपूर्ति विभाग के जिला नियंत्रक करण ने बताया कि इस वर्ष जनवरी माह से अब तक विभाग द्वारा नियमों का उल्लंघन करने वालों पर करीब 1,00,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। उन्होंने कहा कि जिले में LPG की कोई कमी नहीं है और उपभोक्ताओं को समय अनुसार इसकी आपूर्ति की जा रही है। करण ने कहा कि इस बार मणिमहेश यात्रा के दौरान भी भरमौर और चंबा में श्रद्धालुओं को LPG की आपूर्ति सुनिश्चित करवाई जाएगी।
2: जनवरी 2026 से 31 जुलाई तक जो हमने इंस्पेक्शंस किए हैं डिफरेंट रूल्स के अंडर, उसके अंडर हमने लगभग 1,00,000 के करीब जो पेनल्टीज है वो रिकवर की है। जो स्पेसिफिकेशंस है उसके अनुरूप नहीं पाया गया है, तो एज पर रूल्स उस पर भी एक्शन लिया गया है। उपायुक्त महोदय ने ये निर्देश दिया है कि आगामी जो मणिमहेश यात्रा है उसके लिए LPG का भंडार सुनिश्चित करें भरमौर में भी और यहाँ चंबा में भी, ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की मुसीबत का सामना न करना पड़े।
0: राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकतर भागों में आज मौसम साफ बना हुआ है। साफ मौसम के चलते भूस्खलन प्रभावित सड़कों को खोलने के कार्य में तेजी आने की उम्मीद है। राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र के अनुसार प्रदेश की 125 सड़कें अभी भी यातायात के लिए अवरुद्ध है। इसके अलावा भारी वर्षा से बिजली और पेयजल व्यवस्था भी प्रभावित हुई है। राज्य में 30 जून से शुरू हुए मॉनसून सीजन के दौरान बारिश व अन्य भूस्खलन से जुड़ी विभिन्न घटनाओं में अब तक 230 लोगों की मृत्यु हुई है। इस बीच मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों के दौरान कुछ स्थानों पर वर्षा की संभावना जताई है। अदालतों में लंबित मामलों को मध्यस्थता, सुलह व आपसी सहमति से निपटने के लिए अभियान शुरू किया गया है। हमीरपुर जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण के सचिव कुलदीप शर्मा ने बताया कि जिले की सभी अदालतों में ये अभियान चलाया गया है। उन्होंने कहा कि इस अभियान के तहत केस का निपटारा करने के लिए संबंधित अदालत में आवेदन किया जा सकता है। मध्यस्थता के लिए कोई भी शुल्क नहीं लिया जाएगा। और अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर। आज समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता दी है। पंजाब केसरी मुख्यमंत्री के हवाले से लिखता है, देश विदेश के पर्यटकों को हिमाचल आने के लिए करे प्रोत्साहित। दैनिक भास्कर के शब्द है, शिमला मनाली से आगे बढ़ेगा प्रदेश का पर्यटन, नए ठिकानों तक पहुंचेंगे सैलानी। दैनिक सवेरा टाइम्स की एक खबर है, हिमाचल विधानसभा में आज फिर सरकार को घेरेगी भाजपा। मौसम पर हिमाचल दस्तक की सुर्खी है, हिमाचल में अभी भी 125 सड़कों पर यातायात ठप। दैनिक जागरण लिखता है, वर्षा भूस्खलन ने सताया, मंडी में सुरक्षा दीवार ढहने से NH का 20 मीटर हिस्सा धंसा। अमर उजाला का शीर्षक है, पांवटा में खड्ड में ना रहे दो बच्चों की डूबने से गई जान। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, राष्ट्रीय खेल दिवस के उपलक्ष्य पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वर्चुअल माध्यम से खिलाड़ियों, जनप्रतिनिधियों व युवाओं से करेंगे संवाद, धर्मशाला में भी कार्यक्रम। प्रदेश विधानसभा के मॉनसून सत्र की तीसरी बैठक आज, दोपहर बाद शुरू होने वाले सत्र में कई मुद्दों पर तप सकता है सदन। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली सहित कुछ अन्य राज्यों में स्वाइन फ्लू फैलने के बाद प्रदेश का स्वास्थ्य विभाग हुआ अलर्ट, स्वास्थ्य संस्थानों के लिए जरूरी दिशा निर्देश जारी। और रक्षाबंधन पर्व को लेकर प्रदेश के बाजारों में बढ़ने लगी रौनक, विशेष बच्चों व स्वयं सहायता समूहों द्वारा तैयार की गई राखियां बनने लगी आकर्षण का केंद्र। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ, हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं सुबह 11 बजे। नमस्कार।

श्रोताओ, इसी गूंज के साथ कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। कहते हैं दिलों से लिखी बातें दिलों को छू जाती हैं। कुछ लोग मिलकर बदल जाते हैं तो कुछ लोगों से मिलकर ज़िंदगी बदल जाती है। बिल्कुल सही कहा श्रोताओ, हमारी भी ज़िंदगी आपके साथ मिलकर बदल चुकी है, क्योंकि बहुत ही प्यारे प्यारे से श्रोता हमें मिले हैं जिनसे अक्सर हमारी बातचीत होती रहती है, और बहुत ही खुश मिजाज हमारे दोस्त हैं। उनसे मिलकर कहीं ना कहीं हमें भी अच्छा लगता है, मूड भी बेहतर हो जाता है, और ज़िंदगी की टेंशन परेशानियों से पल भर के लिए सुकून भी मिल जाता है। ज़िंदगी में शोध सुकून बेहद ज़रूरी है। सुकून की तलाश में ही हम इधर उधर भटकते हैं, और आजकल की बात की जाए तो कामकाज का बोझ, कामकाज का बर्डन इतना ज़्यादा है कि हर कोई चाहता है कि ज़िंदगी में थोड़ा सा आराम मिले, थोड़ा सा चैन मिले, ताकि हम अपनी जो है थोड़ा कुछ पल अपने लिए, खुद के लिए भी जी सके। श्रोता, वैसे तो हम हर काम काज करते हैं, अपने परिवार के लिए जीते हैं, अपनों के लिए जीते हैं, लेकिन कभी कभार खुद के लिए भी समय निकालिए, खुद के लिए भी जीकर देखिए ज़िंदगी कितनी हसीन, कितनी प्यारी सी है। थोड़ी सी ज़िंदगी को हम भी सुकून से भरते हैं और आप तक पहुँचाते हैं कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत। तो आप सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

श्रोतो, इस समय आप बने हुए हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ और इस समय कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला। सोमवार की सुबह है और सभी को आज भागम भाग होगी क्योंकि एक छुट्टी के बाद जब हम अपने कामकाज पर निकलते हैं तो थोड़ा सा लेट भी हो जाते हैं, कभी ये काम रह गया, कभी वो काम रह गया, फिर हफ्ते भर की रूटीन हमारी शुरू हो जाती है तो हमारे काम भी समय पर हो जाते हैं। कोई रह जाता है तो उसे हम छोड़कर चले जाते हैं क्योंकि हमें पता होता है कि हमने पहुँचना होता है अपने कामकाज पर। जी हाँ श्रोताओ, सोमवार का दिन है, हमें पता है इस समय हमारे श्रोता कुछ तो अपने कार्यालय की ओर निकल चुके होंगे, कुछ रास्ते में होंगे और कुछ हमारी तरह अपने अपनी सीट पर बैठ चुके होंगे। जी हाँ श्रोता, हम भी बैठ चुके हैं अपनी सीट पर, लेकर ढेर सारी जानकारियाँ और प्यारे प्यारे गीत अपने श्रोताओं के लिए। और गीत तो खैर हम बीच बीच में सुनाते ही रहते हैं क्योंकि अगर गीत ना हो तो हमारा कार्यक्रम थोड़ा सा अधूरा लगता है और गीत हो जाए तो हमारा कार्यक्रम जो है पूर्ण हो जाता है। तो श्रोताओं, फिलहाल अगर हम थोड़ी सी बात जानकारियों की करें और इतिहास को खंगालें तो ढेर सारी घटनाएं आज के दिन घटी थी और उन्हीं घटनाओं में आज के दिन कोलकाता शहर की स्थापना हुई थी और नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद रेडियो में संदेश प्रसारित किया था। 1600 की बात की जाए श्रोताओं, तो ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला जहाज हेक्टर सूत्र के तट पर पहुंचा था और 1690 में जांब चार नाग ने कोलकाता शहर की नींव रखी थी जिसे शहर की स्थापना दिवस मनाया जाता है। इसके साथ साथ श्रोताओं, 1814 में ब्रिटिश सेना ने वाशिंगटन पर हमला किया था और व्हाइट हाउस को आग लगा दी थी। 1944 की ओर थोड़ा सा रुख करें तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की, जैसे हमने पहले भी बात की, ने आज़ाद हिंद रेडियो के माध्यम से देशवासियों को संबोधित भी किया था और इसके साथ 2006 में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ में प्लूटो का ग्रह का दर्जा खत्म किया और उसे बोना ग्रह माना गया था। तो श्रोताओं, ये तो थी हमारी जानकारियाँ। जानकारियाँ तो हम आपके लिए ढेर सारी लेकर आए हैं, उन्हें भी आपके संग साझा करेंगे। फिलहाल कार्यक्रम में आप सभी का करवा देते हैं मनोरंजन कार्यक्रम के अगले प्यारे से गीत के साथ। तो आप सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

श्रोताओ, इस प्यारे से गीत के बाद एक बार फिर से हम कार्यक्रम में वापस आते हैं। तो हर दिन कोई ना कोई जानकारियों वाला होता है। आज के दिन की श्रोताओ बात करें तो आज का दिन भी जानकारियों वाला है और आज के दिन को हम मना रहे हैं राष्ट्रीय चाकू दिवस। श्रोताओ, आप सोच रहे होंगे कि दिवस भी कैसे कैसे आते हैं। नहीं श्रोताओ, बहुत अच्छी जानकारी वाला ये दिन है। इस दिन हमारे दैनिक जीवन, खाना पकाने और विभिन्न शिल्प में इस्तेमाल होने वाले सबसे पुराने और महत्वपूर्ण औजार चाकू के इतिहास, उपयोगिता और उसकी कला का जश्न मनाने के लिए समर्पित है ये दिन। चाकू दिवस के इतिहास और महत्व की बात करें तो 24 अगस्त की तारीख प्रसिद्ध बॉबी चाकू के इतिहास से जुड़ी हुई है, जब 1838 में इस आविष्कार के दावों को लेकर चर्चा हुई थी। शिल्प कौशल की बात करें तो इस दिन पुराने समय के पत्थरों से बने औजारों से लेकर आज की आधुनिक स्टील के चाकू तक के विकास को याद किया जाता है। इसकी उपयोगिता की श्रोताओ थोड़ी सी हम बात कर लें तो रसोई के काम में, शिकार या अन्य ज़रूरी काम में चाकू मानव सभ्यता की शुरुआती और अहम उपकरणों में से एक माना जाता है। तो श्रोताओ, ये तो थी चाकू दिवस की जानकारी। इस जानकारी के साथ साथ फिर से आपको लिए चलते हैं गीत संगीत की दुनिया में। तो आइए इंजॉय करते हैं कार्यक्रम का ये अगला प्यारा सा गीत। तो आप सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

श्रोताओं, इस प्यारे से गीत के बाद कार्यक्रम में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला अपनी दोस्त सुमन के साथ। तो श्रोताओं, कार्यक्रम में थोड़ी सी हम बात करते हैं राष्ट्रीय बफल दिवस के बारे में। ये दिन बफल नाम के स्वादिष्ट और लोकप्रिय व्यंजन को समर्पित है। इस दिन 1849 में अमेरिका आविष्कार कार्नलियस स्वाट बाउस को बफल आयरन का पहला अमेरिकन पेटेंट मिला था। और साथ ही साथ है श्रोताओं, लोग इस दिन अपने पसंदीदा बफल पर मक्खन, मैपल सिरप और चॉकलेट या फल डालकर खाते हैं। और साथ ही साथ बफल पकाने वाला बर्तन बफल आयरन का पेटेंट होता है। हालांकि बफल का इतिहास मध्यकालीन यूरोप और प्राचीन काल से चला आ रहा है। तो श्रोताओं, ये थी हमारी जानकारियाँ। अपनी जानकारियों के साथ फिर से आप सभी का करवाते हैं मनोरंजन कार्यक्रम के अगले प्यारे से गीत के साथ। तो आप सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

तो इस प्यारे से गीत के बाद फिर से हम वापस आ चुके हैं गीत की और तो हम बात कर रहे थे, थोड़ा सा आगे की बात करते हैं। तो शो तो हमारे जो रीति रिवाज होते हैं और परंपरा होती है, किसी भी समाज का और संस्कृति की पहचान होती है। ये हमें जीने का सहारा बनाती है और जीने का तरीका भी बताती है, नैतिक मूल्य और अपनों से जुड़ना सिखाती है। जन्म से लेकर मृत्यु तक हमारे जीवन में हर पड़ाव पर ये नियम और उत्सव हमारे अनमोल धरोहर के रूप में हमारे साथ चलते हैं। जी हाँ श्रोताओं, हमारे जीवन में रीति रिवाज और परंपराओं का अहम रोल रहता है। परंपराएं ये ज्ञान, विचार और मान्यताओं का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक चलना होता है। रीति रिवाज ये परंपराओं के विशेष नियम और गतिविधियां होती हैं जिनके पालन हर किसी खास अवसर पर्व या संस्कार के समय करते हैं। और साथ ही साथ थोड़े से हम परंपरा और रीति रिवाजों की बात कर रहे हैं तो शो तो हम सभी जानते हैं कि आजकल जो है काला महीना चल रहा है, जो भी हमारी नई नवेली दुल्हनें हैं वो अपने मायके जाती हैं एक महीना रहने के लिए। मान्यता ये है कि वो अपनी सास का मुंह नहीं देखती हैं और सबसे बड़ी बात और अच्छी बात ये होती है कि लड़कियों को अपने मायके जाने का मौका मिल जाता है। हर लड़की ये चाहती है कि अपने मायके कुछ समय रह कर आए, बिता कर आए, क्योंकि शादी के बाद उनका पहला फेरा होता है और उसमें लंबे समय तक उन्हें अपने मायके में रहना होता है, लगभग एक महीना तक। तो बहुत खुशी होती है लड़कियों को, क्योंकि एक घर से दूसरे घर जाना यानी अपने ससुराल जाना, तो वहाँ पर थोड़ा सेट होने में उन्हें समय लग जाता है। और जब ससुराल होते हैं और उसी बीच अगर ये महीना चल पड़े काला महीना और उन्हें वापस अपने मायके आना होता है तो उनकी खुशी देखते ही बनती है, क्योंकि हर एक लड़की चाहे वो कितनी भी एज की हो जाए उसे अपने मायके में जाना बहुत अच्छा लगता है। उसकी यादें होती हैं बचपन की वहाँ जुड़ी हुई, अपनों का प्यार होता है, क्योंकि लड़की के तो वैसे भी कहते हैं एक घर नहीं होते हैं, दो दो घर होते हैं। पहले वो पिता के घर रहती है और बाद में वो ससुराल जाती है, और ससुराल जब चली जाती है उसके बाद वो एक गेस्ट के जैसे अपने घर पर आती है, एक मेहमान बनकर आती है। सभी से प्यार मिलता है, सभी से स्नेह मिलता है और सभी घर परिवार वाले उसके इंतज़ार में आंखें बिछाए बैठते हैं और ढेर सारे पकवान बनते हैं। उन पकवानों के बीच में वो अपने मायके जाती है। तो शोधो कार्यक्रम में हम और भी रीति रिवाजों की बातें करेंगे, फिलहाल कार्यक्रम में रुकते हैं और आप सभी तक पहुंचाते हैं कार्यक्रम के अगला प्यारा सा गीत। तो सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

श्रोताओ, इस प्यारे से गीत के बाद कार्यक्रम में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो इसी स्वागत के साथ श्रोताओ, कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। और गीत से पहले हमारी बातचीत हो रही थी काले महीने के बारे में। ज़्यादातर हमारे श्रोता इस महीने के बारे में जानते ही हैं कि ये क्यों मनाया जाता है। अगर हम अपने देवभूमि हिमाचल की बात करें तो हमारा हिमाचल सुंदर और अद्भुत है। यहाँ के प्राकृतिक आकर्षण सभी को अपनी ओर आकर्षित करते हैं और यहाँ की धरती पर उगते हैं बहुत सारी हरियाली। यहाँ के रीति रिवाज भी सबसे अनोखे हैं। और हिमाचल प्रदेश की संस्कृति की बात श्रोताओ हम करें तो यहाँ की संस्कृति प्रसिद्ध है। सावन माह के अंत में जब भादोपद आरंभ होता है तो इस परंपरा के अनुसार, जैसे हम गीत से पहले बात कर रहे थे, नवविवाहित हमारी दुल्हने जो है अपने मायके में चली जाती है और एक महीने तक वो अपने ससुराल से दूर रहती है, अपने पति और अपने सास से दूर रहती है। मान्यता ये है कि रीति रिवाजों के अनुसार इनका दूर रहना सही रहता है और ये अशुभ माना जाता है अगर ये साथ रहें तो। बहुत सारे रीति रिवाज हैं जिन्हें हमें कई बार पता भी नहीं होता है, लेकिन अगर हम बात करें लोकल लोगों की, गांव वाले लोगों की, बहुत सारी जानकारियां उन्हें होती हैं। और ऐसी भी मान्यता ये है कि काले महीने में हम अपने पितरों को जो है खाना रखते हैं। कुछ लोगों की ये मान्यता होती है कि वो 3 टाइम का खाना रखते हैं और कुछ लोग रात को जो भोजन बना होता है वो गाय को ज़रूर खिलाते हैं और उसमें थोड़े से रंग बिरंगे पकवान भी बनाए जाते हैं। उन पकवानों को वो बनाकर कद्दू का जो पत्ता होता है उसमें रखते हैं और गाय को वो देते हैं। और सुबह की पहली जो रोटी होती है उसे भी बनाया जाता है और उसे भी गाय को दिया जाता है। इसके साथ साथ श्रोता, बहुत सारी मान्यता हमारे देश में, हमारे समाज में है। दिया भी जलाया जाता है शाम के समय। कहा जाता है ये दिया हम अपने पितरों के लिए रखते हैं और हर घर की ये मान्यता है कि संध्या के समय जो है हम दिया धूप बाती करते हैं और ज्योत भी जलाते हैं कुछ घरों पर। सबकी अपनी अपनी परंपराएं होती हैं, अपने अपने परंपराओं के हिसाब से हम लोग ये काम करते हैं। और रही बात बेटियों के घर जाने की, तो वो खुशी तो हर बेटी को होती है और जब बेटियों के वापस आने का समय होता है तब भी ढेर सारे पकवान हमारे जो है हिमाचली रीति रिवाज के अनुसार बनाए जाते हैं। इनकी वापसी जो है जो सैर होती है, सैर के त्यौहार पर होती है। और कुछ बेटियां जो है, कुछ जो नवविवाहित हैं वो उनकी वापसी जो है नवरात्रों के आसपास होती है। सबका अपना अपना तरीका होता है, अपने अपने तरीके से काले महीने को मनाते हैं। और खासकर ये एक बार फिर से बता दें कि ये महीना नवविवाहित दुल्हनों के लिए बहुत ही अच्छा और शुभ माना जाता है क्योंकि उन्हें अपने मायके में रहने का, अपनी सखी सहेलियों के साथ मिलने का और सावन के झूले झूलने का मौका मिलता है। सभी रिश्तेदारों के घर जाती हैं और सभी रिश्तेदार उन्हें बड़े चाव से अपने घर बुलाते हैं, खाने पर बुलाते हैं, ढेर सारा प्यार देते हैं और एक गेस्ट के जैसे मेहमान नवाजी उन बेटियों की जाती है। तो श्रोताओ, ये हैं हमारे रीति रिवाज। इनके साथ ज़िंदगी कब बीती है पता ही नहीं चलता है। इन्हीं रीति रिवाजों के साथ कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आप तक पहुंचाते हैं कार्यक्रम का ये अगला प्यारा सा गीत।

और हम बातचीत थोड़ी सी रीति रिवाजों की कर रहे थे गीत से पहले। तो शो तो रीति रिवाज तो जीवन में बेहद मायने रखते हैं, और रीति रिवाजों से हमें याद आ गया कि भाई एक और हमारा त्यौहार है जो हमारे पास आ रहा है, और वो है प्रेम का पवित्र त्यौहार। इस त्यौहार पर ये त्यौहार जो है सावन महीने की पूर्णिमा को मनाया जाता है। इस दिन भाई बहन का ये खास दिन माना जाता है। और बात करें आजकल के दिनों में बाज़ारों की, तो बाज़ारों में खूब सारी रौनक है, पूरे बाज़ार राखियों से भरे पड़े हैं। और हमारी जो भी बहनें हैं वो अपने भाइयों के लिए जो है राखियां खरीदती नज़र आ रही हैं, क्योंकि बहनों के कई भाई जो हैं बहुत दूर है, कोई फौज में है, कई अपने अपने काम काज के सिलसिले में उनके घरों से दूर रहते हैं, या यूँ कह सकते हैं कि बहनें भी दूर रहती हैं, तो वही पहले ही राखियाँ लेकर उन्हें भेजनी पड़ती हैं, और बाई पोस्ट भेजने में भी समय लग जाता है। इसलिए हमारी जो जिन बहनों के भाई दूर रहते हैं उन्हें तो लगभग हफ्ता 10 दिन 15 दिन पहले ही राखियां भेजनी पड़ती हैं, ताकि समय से उनके भाइयों तक राखियां पहुंच जाए। और दोस्तों ये त्यौहार बड़ा ही प्यारा सा होता है, भाई बहन का प्यार इससे झलकता है, और साथ में इस दिन बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधती हैं, और भाई उपहार के रूप में उन्हें पैसे या फिर गिफ्ट देता है। तो बहुत ही प्यारा सा त्यौहार है। इससे त्यौहार के आने पर बहुत सी रौनक लगती है, बहुत सारी बेटियां अपने मायके जाती हैं, बहनें अपने भाइयों के पास जाती हैं राखी बांधने के लिए। जिस घर वो जाती हैं उस घर में काफ़ी सारी रौनक होती है, और इंतज़ार रहता है कि आज हमारी बहन घर पर आएगी और राखी बांधेगी। जी हाँ श्रोताओं, इस त्यौहार का इंतज़ार कुछ ही पलों का है, कुछ ही दिनों का है, उसके बाद राखी आ जाएगी और इस त्यौहार को हम मनाएंगे रीति रिवाजों से। श्रोताओं हमारी बात शुरू हो रही थी, और बातों का सिलसिला जब शुरू होता है तो कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है पता ही नहीं चलता है। तो श्रोताओं जितना समय हमें मिलता है मन करता है अपने श्रोताओं के साथ, अपने दोस्तों के साथ बातचीत कर ली जाए। तो श्रोताओं ये तो थी हमारी जानकारी। अपनी जानकारियों के साथ फिर से आपको लिए चलते हैं गीत संगीत की ओर। तो आप जुड़े रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ।

श्रोताओ, इस समय आप जुड़े हुए हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ और कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला अपने दोस्त सुमन के साथ। तो श्रोताओ, कार्यक्रम में हम आगे बढ़ते हैं और थोड़ी सी बात हम छोटे से यंत्र जो आजकल हम सभी की जेब पे होता है, हम सभी के हाथ में होता है और हम सभी का उसके बिना गुजारा नहीं होता है। घर से हम कोई चीज़ ले जाना भूल जाएं लेकिन अपना मोबाइल फ़ोन ले जाना नहीं भूलते हैं। जी हाँ श्रोता, इसी छोटे से यंत्र की हम बात कर रहे हैं जिसे लेकर हम हर जगह जाते हैं और बहुत सारे फ़ायदे इसके हमारे जीवन में हैं और फ़ायदों के साथ नुकसान भी है। कहते हैं कोई भी चीज़ हमारे लिए अच्छी होती है तो वो कहीं ना कहीं नुकसान भी पहुंचाती है, चाहे वो चीज़ खाने की हो, पहनने की हो या फिर इस्तेमाल करने की हो। मोबाइल फ़ोन की अगर हम बात करें तो मोबाइल से हम अपने परिवार, दोस्तों और रिश्तेदारों से कहीं ना कहीं जुड़े रहते हैं। वीडियो कॉल के ज़रिए एक दूसरे को देख सकते हैं, उनसे बातचीत कर सकते हैं और आजकल के समय में मोबाइल फ़ोन का इतना फ़ायदा है कि कहीं भी दूर बैठा व्यक्ति दूर लगता ही नहीं है, ऐसा लगता है कि हमारे पास ही बैठा है। जी हाँ बिल्कुल श्रोताओ, इसी तरह से होता है ना आप सभी के साथ भी। जी हाँ, और मोबाइल के ज़रिए अगर हम पढ़ाई की बात करें तो मोबाइल के माध्यम से बहुत सारे कामकाज किए जा सकते हैं, ऑनलाइन क्लासेस लगाई जा सकती है, इसके साथ साथ शॉपिंग हम कर सकते हैं, कोई भी बिल पे करना हो वो कर सकते हैं, पैसों का लेन देन करना हो वो कर सकते हैं, अपने व्यापार को बढ़ाना हो वो भी हम फ़ोन के ज़रिए कर सकते हैं। पल में एक बटन दबाने से बहुत सारे काम हमारे हो जाते हैं। कहीं भी जाना हो, कोई बीमार हो गया हो तो एम्बुलेंस मंगवानी हो तो बस एक कॉल करने की ज़रूरत होती है और एम्बुलेंस हमारे दरवाज़े पर आ जाती है। इसके साथ साथ और भी बहुत सारे फ़ायदे हमारे जीवन में हैं, तो श्रोताओं हम और भी जानकारियाँ आपके साथ साझा करेंगे। फिलहाल कार्यक्रम में रुकते हैं और आप तक पहुंचाते हैं कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत। तो आप सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

फ्रीक्वेंसी 90.2 पर श्रोता इस समय आप जुड़ चुके हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ और कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला। गुड मॉर्निंग धर्मशाला कार्यक्रम में श्रोताओं आज मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त सुमन लेकर हाजिर हुई हूं इस प्यारे से कार्यक्रम को। तो श्रोताओं कार्यक्रम में हम मोबाइल फ़ोन के फ़ायदों की बात कर रहे थे। तो श्रोताओं आपातकाल में बहुत उपयोगी होता है ये फ़ोन। दुर्घटना बीमारी या किसी अन्य आपात स्थिति में मोबाइल से तुरंत मदद के लिए कहीं भी संपर्क किया जा सकता है और एकदम से हमें सहायता भी मिल जाती है। इसके साथ साथ अगर जानकारियों की श्रोताओं बात करें तो समाचार, मौसम, यातायात, सरकारी योजनाओं और देश विदेश की घटनाओं की जानकारी मोबाइल पर तुरंत मिल जाती है। हुए ना श्रोताओं कितने सारे फ़ायदे इस मोबाइल फ़ोन के। और इसके साथ साथ हम बैंकिंग की भी बात कर रहे थे। बैंकिंग और भुगतान की बात करें तो मोबाइल से ऑनलाइन बैंकिंग, बिल भुगतान और डिजिटल पेमेंट करना आसान हो गया है। इससे समय और मेहनत दोनों बचते हैं और लोग भी सब स्मार्ट हो गए हैं, स्मार्ट वर्क कर रहे हैं। साथ ही साथ थोड़ी सी हम रोज़गार को भी डिटेल में बात कर लेते हैं कि मोबाइल के माध्यम से ऑनलाइन काम, नौकरी की जानकारी, व्यापार का प्रचार और ग्राहकों से संपर्क किया जा सकता है। इसके साथ साथ श्रोताओं मनोरंजन को हम कैसे भूल सकते हैं। संगीत, फिल्में देखना, खेल, अन्य मनोरंजन के साधन मोबाइल पर उपलब्ध हैं। इसके साथ साथ अगर हम अपनी सखियों की बात करें, अपनी श्रोता बहनों की बात करें तो उन्हें खाना बनाने में कहीं कोई दिक्कत आ रही है, कोई चीज़ उन्हें बनाना नहीं आ रही है, तब वो फ़ोन का सहारा ले सकती हैं, फ़ोन का इस्तेमाल कर सकती है। फ़ोन से देखकर कोई भी चीज़ बना सकती है। ऐसा नहीं है कि 30 त्योहारों का इंतज़ार हमें करना पड़ेगा। जब मन करे बना लीजिए और तुरंत खा लीजिए। तो श्रोता इन्हीं बातों और जानकारियों के साथ आपको फिर से लिए चलते हैं गीत संगीत की ओर। तो आइए सुनते हैं मिलकर कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत। तो सुनते रहिए रेडियो गुंजन।

श्रोताओ, इस समय आप बने हुए हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ और कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला। श्रोताओ, फ़ोन की हम बात कर रहे थे तो आजकल का समय ऐसा है कि हम में से बहुत सारे पेरेंट्स, बहुत सारे अभिभावक ऐसे हैं कि अपने बच्चों के हाथ में फ़ोन खुद ब खुद थमाते हैं। छोटे बच्चों की श्रोताओ हम बात कर रहे हैं कि छोटे बच्चे अगर रोते हो तो हम फटाफट से उसमें कोई भी वीडियो गेम या फिर कोई भी पोइम लगाकर बच्चों के हाथ में दे देते हैं ताकि बच्चे रोना बंद कर दे। कहीं ना कहीं देखा जाए श्रोताओं, पल भर के लिए हम उनका रोना तो बंद कर देते हैं लेकिन उनकी जो आते बिगड़ती हैं उसके लिए जिम्मेदार कहीं ना कहीं हम माता पिता, हम अभिभावक ही रहते हैं। आए दिन हम लोग श्रोताओं न्यूज़पेपर पर या टीवी पर इस तरह की दिल दहला देने वाली खबरें सुनते रहते हैं जिन्हें सुनकर कहीं ना कहीं रोंगटे भी खड़े हो जाते हैं। अभी हाल ही की बात, हम अपने हिमाचल के, अपने धर्मशाला के आसपास की बात करें खन्यारा की, तो आप सभी ने सुन रखा होगा कि मोबाइल फ़ोन पर गेम खेलने से रोकने पर 14 वर्षीय बच्चा जो है जिसने आत्महत्या कर ली थी की दुर्घटना भी हम सभी के सामने आई है और हम सभी ने उसकी ये खबर सुनी है। और वो फ्री फायर गेम खेल रहा था और परिवारजनों द्वारा फ़ोन लेकर पढ़ाई करने की हिदायत दी जाने के बाद ये खौफनाक कदम उस बच्चे ने उठाया था। और ये घटना जो है खन्यारा रक्कड़ रोड धर्मशाला की है और ज़्यादा समय भी नहीं बीता है, ये 19 अगस्त 2026 की शाम की बात है। किशोर मोबाइल पर गेम खेल रहा था जिस पर परिजनों ने उसे टोकते हुए मोबाइल रख कर पढ़ाई करने को कहा। बस इसी बात को लेकर वो नाराज़ हो गया और नाराज़ होकर किशोर ने रसोई में जाकर कथित तौर पर फांसी लगा ली। परिवार के सदस्यों द्वारा उसे तुरंत अस्पताल भी लिया गया था लेकिन जब प्राण ही निकल गए श्रोता तो अस्पताल जाने का भी कोई फ़ायदा नहीं था। उसकी सांसें रुक चुकी थी, थम चुकी थी। तो छोटी छोटी चीज़ों के लिए बच्चे आए दिन आजकल जो है मौत के करीब जा रहे हैं और खुद को, अपनी जान को जो है नुकसान पहुंचा रहे हैं। कहीं ना कहीं वो तो खत्म हो जाते हैं, खुद को ख़त्म कर लेते हैं लेकिन परिवारजनों के लिए बहुत ही दुखद और बहुत ही परेशानी वाली बात होती है जिससे उभर पाना भी परिवार के लिए मुश्किल हो जाता है। लेकिन श्रोताओं, इन बातों से हमें थोड़ा सा दूर रहना है, मोबाइल का इस्तेमाल उतना करना है जितनी ज़रूरत है। इसी के साथ साथ थोड़ा सा हम फिर से कार्यक्रम में आपको लिए चलते हैं।

0: चांदनी।
1: तो इस प्यारे से गीत के बाद कार्यक्रम में फिर से हम लौटते हैं और हमारी बातचीत हो रही थी मोबाइल फ़ोन को लेकर। तो बहुत सारे हम समाचार पत्रों के माध्यम से हमें खबरें मिलती रहती हैं कि फ़ोन को लेकर बच्चे जो है इतना ज़्यादा गुस्सा करते हैं कि कहीं ना कहीं अपनी जान ही गवा बैठते हैं। अब हम महाराष्ट्र की बात करें तो हाल ही में पिछले दिनों में यूँ कह सकते हैं कि अगस्त महीने की बात है कि महाराष्ट्र के छत्रपति भाजीनगर जिले में भी मोबाइल फ़ोन को लेकर एक पारिवारिक विवाद में एक ही परिवार के 3 सदस्य माता पिता और उनका 19 वर्षीय बेटे की पहाड़ी से खाई में गिरने से दर्दनाक मौत हो गई। तो शो तो देखिए ना, एक फ़ोन को लेकर कितनी परेशानियां सामने आ रही हैं। तभी कहा जाता है कि किसी भी चीज़ का इस्तेमाल लिमिट से ज़्यादा की जाए तो कहीं ना कहीं वो परेशानी ही देती है। हर चीज़ का इस्तेमाल हमें लिमिट में करना है तो वो हमारे लिए फ़ायदेमंद रहती है। तो श्रोता, इन्हीं जानकारियों के साथ फिर से थोड़ा सा कार्यक्रम में रुकते हैं और आप सभी को सुनवाते हैं कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत। तो सुनते रहिए

तो इसी गीत के साथ हम पहुंच चुके हैं कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर। तो अब चलते चलते आपको सुनवा देते हैं कार्यक्रम का आखिरी प्यारा सा गीत। तो आइए सुनते हैं इस गीत को।

0: गोरिया
1: गोरिया
2: गोरिया।
3: प्लास्टिक गोरिया जैसे नादान जानवरों की जान ले सकता है। आप भी छोटी सी शुरुआत कीजिए, प्लास्टिक को अलग डस्टबिन में डाल के शुरू करें एक छोटी सी अच्छाई।
4: बैठिए मैडम बैठिए। देखो इनको, इनकी नाक देखो, बिल्कुल अपने पिताजी से मिलती है। देखो इसकी आंखें देखो। पता है तेरे पिताजी ने हमें हंसाया है, रुलाया है, मनोरंजन दिया है। मतलब कौन सा गाना था, एक चतुर नार बड़ी होशियार, क्या गाना था वो।
5: अरे बेटो तू यहाँ क्या कर रहा है, और ये दोनों लड़कियां कौन है?
4: देखिए भाई साहब आप कौन है?
5: जी मैं इसका बाप हूँ।
4: आप इसके बाप हूँ? महमूद का बेटा नहीं तू? अरे हास्य कलाकार महमूद, ये तेरे बाप का रोड नहीं है?
6: जी नहीं।
4: तो फिर बिना हेलमेट के दो लड़कियों को बिठा के रूम रूम करते शर्म नहीं आती तुम्हें?
1: तो कटेगा भैया तेरा,
4: और अभी उतर के लेके जाओ। आपकी और सबकी सुरक्षा के लिए कृपया ट्रैफिक नियम का पालन कीजिए, क्योंकि
6: रोड किसी के बाप का नहीं।
4: शाबाश, सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा।
3: नमस्कार दोस्तों, प्रेम विश्वास और भाई बहन के अटूट रिश्ते का ये पावन पर्व रक्षाबंधन आप सभी के जीवन में ढेर सारी खुशियां लेकर आ रहा है। राखी का ये पवित्र धागा सिर्फ कलाई पर बंधा एक धागा नहीं, बल्कि प्यार विश्वास सुरक्षा और जीवन भर साथ निभाने के वचन का प्रतीक है।

रिश्तों में मिठास रहे, अपनों का साथ रहे। रिश्तों में मिठास रहे, अपनों का साथ रहे। हर कलाई पर सजे प्यार का धागा और हर चेहरे पर मुस्कान रहे। इन्हीं खूबसूरत भावनाओं के साथ रेडियो वंचन धर्मशाला की ओर से आ रहे

0: नमस्ते भैया, कैसे हो भाभी जी?
1: अभी शादी का लहंगा सिलवाना था।
0: हाँ हाँ, बहुत सारे डिजाइन है, ये देखिए कौन सा स्टाइल चाहिए आपको। ये देखिए, पिछले महीने मिश्रा जी की बेटी की शादी के लिए सिया था।
1: ये तो स्लीवलेस है, हमें फुल स्लीव्स वाला चाहिए, थोड़ा सिंपल दिखाइए।
0: सिंपल में तो फिर, अरे पर किसके लिए बनाना है?
1: चुन्नी के लिए।
0: ये अपनी चुन्नी?
1: हाँ, अच्छा रिश्ता मिला है।
0: बेटा चुन्नी, कितने साल के हो आप?
2: अगले महीने 12 साल की हो जाएगी। पंडित जी ने इसी इतवार का मुहूर्त निकाला है, तो हो तो जाएगा ना तब तक।
0: अच्छा, 12 साल की है तो आपको प्रॉब्लम नहीं है?
2: नहीं, क्यों?
0: और आपको भी प्रॉब्लम नहीं है? पर मुझे प्रॉब्लम है, मैं नहीं सीऊंगा।
2: चलो छोड़ो उसे, किसी और से सिलवा लेंगे।
0: अरे भैया जी, एक मिनट। अरे बिरजू, वो कौन सा नंबर है, निकलवाओ तो जरा।
3: मास्टर जी, टोल फ्री नंबर है 1098, कभी भी कॉल करके कंप्लेन कर सकते हैं।
0: ना हम सीएंगे, ना किसी को सीने देंगे।
4: जीवन की हर उलझन का हल मिलेगा मित्र, बस अपने मन को थोड़ा शांत करके देखो। जो तुम्हारा है वो कहीं नहीं जाएगा, और जो चला गया वो कभी तुम्हारा था ही नहीं। हर परिस्थिति में मुस्कुराना सीखो, क्योंकि मुस्कान ही हर दर्द की सबसे बड़ी दवा है। भरोसा उस ईश्वर पर पूरा रखो, वो तुम्हें वही देगा जो तुम्हारे लिए सही है। तुम्हारी सरलता ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है, और तुम्हारी खामोशी में ही ईश्वर का वास।
5: मम्मी जी क्या कह रहे हैं, बचपन में आपका बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ था।
2: हाँ, जब मैं 12 साल का था ना, तो मैं पापा को बिना बताए उनकी बाइक लेके घर से बाहर निकल गया, और मैं बाइक इतनी तेज चला रहा था कि सामने से एकदम से ट्रक आ गया। तो ट्रक को बचाने के चक्कर में मैंने एकदम से लेफ्ट ले लिया। तो जैसे ही लेफ्ट लिया, सामने से गाड़ी आ रही थी, और गाड़ी में जाके बाइक लगी और बाइक पूरी खत्म हो गई।
5: बेबी बाइक को छोड़ो, आप बताओ आप बचे थे कि नहीं?
2: तब तो बच गया था, लगता है अब नहीं बचूंगा।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और हाजिर हो गई हूँ कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने लेकर। तो श्रोताओं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम का सबसे पहला प्यारा सा गीत। आप यूं ही बने रहिए 91.2 मेगाहर्ट्ज रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और कार्यक्रम सुन रहे हैं आप गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

गीत सुहाने नए पुराने इस समय श्रोता सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत।

आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ 91.2 मेगाहर्ट्ज पर कार्यक्रम सुन रहे हैं। गीत सुहाने नए पुराने, लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

आप बने हुए हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

गीत सुहाने नए पुराने आप सुन रहे हैं 91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी। आइए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

श्रोताओ, इस समय आप हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

0: गोरिया
1: गोरिया
2: गोरिया।
3: प्लास्टिक गोरिया जैसे नादान जानवरों की जान ले सकता है। आप भी छोटी सी शुरुआत कीजिए, प्लास्टिक को अलग डस्टबिन में डाल के शुरू करें एक छोटी सी अच्छाई।
4: बैठिए मैडम बैठिए।
5: अरे देखो इनको, इनकी नाक देखो, बिल्कुल अपने पिताजी से मिलती है। देखो इसकी आंखें देखो। पता है तेरे पिताजी ने हमें हंसाया है, रुलाया है, मनोरंजन दिया है। मतलब कौन सा गाना था, एक चतुर नार बड़ी होशियार है, क्या गाना था वो।
6: अरे बेटो तू यहाँ क्या कर रहा है, और ये दोनों लड़कियां कौन है?
5: लेकिन भाई साहब आप कौन है?
6: जी मैं इसका बाप हूँ।
5: आप इसके बाप हूँ? महमूद का बेटा नहीं तू? अरे हास्य कलाकार महमूद, ये तेरे बाप का रोड नहीं है?
7: जी नहीं।
5: तो फिर बिना हेलमेट के दो लड़कियों को बिठा के रूम रूम करते शर्म नहीं आती तुम्हें?
1: चालान तो कटेगा भैया तेरे।
5: और अभी उतर के लेके जाओ। आपकी और सबकी सुरक्षा के लिए कृपया ट्रैफिक नियमों का पालन कीजिए, क्योंकि
7: रोड किसी के बाप का नहीं।
5: शाबाश, सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा।
8: नमस्कार दोस्तों, प्रेम विश्वास और भाई बहन के अटूट रिश्ते का ये पावन पर्व रक्षाबंधन आप सभी के जीवन में ढेर सारी खुशियाँ लेकर आ रहा है। राखी का ये पवित्र धागा सिर्फ कलाई पर बंधा एक धागा नहीं, बल्कि प्यार विश्वास सुरक्षा और जीवन भर साथ निभाने के वचन का प्रतीक है।

रिश्तों में मिठास रहे, अपनों का साथ रहे। रिश्तों में मिठास रहे, अपनों का साथ रहे। हर कलाई पर सजे प्यार का धागा और हर चेहरे पर मुस्कान रहे। इन्हीं खूबसूरत भावनाओं के साथ रेडियो गुंजन धर्मशाला की ओर से आ रहे।

0: नमस्ते भैया, कैसे हो भाभी जी?
1: अभी शादी का लहंगा सिलवाना था।
0: हाँ हाँ, बहुत सारे डिजाइन है, ये देखिए कौन सा स्टाइल चाहिए आपको। ये देखिए, पिछले महीने मिश्रा जी की बेटी की शादी के लिए सिया था।
1: ये तो स्लीवलेस है, हमें फुल स्लीव्स वाला चाहिए, थोड़ा सिंपल दिखाइए।
0: सिंपल में तो फिर, अरे पर किसके लिए बनाना है?
1: चुन्नी के लिए।
0: ये अपनी चुन्नी?
1: हाँ, अच्छा रिश्ता मिला है।
0: बेटा चुन्नी, कितने साल के हो आप?
2: अगले महीने 12 साल की हो जाएगी। पंडित जी ने इसी इतवार का मुहूर्त निकाला है, तो हो तो जाएगा ना तब तक।
0: अच्छा, 12 साल की है तो आपको प्रॉब्लम नहीं है?
2: नहीं, क्यों?
0: और आपको भी प्रॉब्लम नहीं है? पर मुझे प्रॉब्लम है, मैं नहीं सीऊंगा।
2: चलो छोड़ो उसे, किसी और से सिलवा लेंगे।
0: अरे भैया जी, एक मिनट। अरे बिरजू, वो कौन सा नंबर है, निकलवाओ तो जरा।
3: मास्टर जी, टोल फ्री नंबर है 1098, कभी भी कॉल करके कंप्लेन कर सकते हैं।
0: ना हम सीएंगे, ना किसी को सीने देंगे।
4: जीवन की हर उलझन का हल मिलेगा मित्र, बस अपने मन को थोड़ा शांत करके देखो। जो तुम्हारा है वो कहीं नहीं जाएगा, और जो चला गया वो कभी तुम्हारा था ही नहीं। हर परिस्थिति में मुस्कुराना सीखो, क्योंकि मुस्कान ही हर दर्द की सबसे बड़ी दवा है। भरोसा उस ईश्वर पर पूरा रखो, वो तुम्हें वही देगा जो तुम्हारे लिए सही है। तुम्हारी सरलता ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है, और तुम्हारी खामोशी में ही ईश्वर का वास।
5: मम्मी जी क्या कह रहे हैं, बचपन में आपका बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ था।
6: हाँ, जब मैं 12 साल का था ना, तो मैं पापा को बिना बताए उनकी बाइक लेके घर से बाहर निकल गया, और मैं बाइक इतनी तेज चला रहा था कि सामने से एकदम से ट्रक आ गया। ट्रक को बचाने के चक्कर में मैंने एकदम से लेफ्ट ले लिया। जैसे ही लेफ्ट लिया, सामने से गाड़ी आ रही थी, और गाड़ी में जाके बाइक लगी और बाइक पूरी खत्म हो गई।
5: बेबी, बाइक को छोड़ो, आप बताओ आप बचे थे कि नहीं?
6: तब तो बच गया था, लगता है अब नहीं बचूंगा।

नमस्कार दोस्तों, 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और अब समय है दोस्तों कार्यक्रम हमारी सेहत का। तो दोस्तों ये कार्यक्रम हमारी सहयोगी संस्था ऑर्गन इंडिया द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है, जीवन एक अनमोल उपहार। ये कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला से 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर।

0: जीवन एक अनमोल उपहार है। अपने जाने के बाद किसी और के जीवन में उम्मीद भरें। अंगदान का संकल्प लें। अंगदान, जीवन दान।
1: मेरा नाम है पायल और हम सब ये आशा करते हैं कि आपका दिन बहुत अच्छे से गुजर रहा है। ऑर्गन इंडिया एक गैर सरकारी सामाजिक संस्थान पराशर फाउंडेशन की पहल है और हम हर कार्यक्रम में आपके लिए अंगदान, नेत्रदान और देहदान से जुड़ी हुई सूचना और अनोखी कहानियाँ लेकर आएंगे। आज एक ऐसी ही दिलचस्प कार्यक्रम के साथ हम फिर लौटे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सफर। आज के कार्यक्रम में ऑर्गन इंडिया से डॉक्टर सौरभ शर्मा हमारे साथ हैं और आज हम एक बार फिर से एक और प्रेरणा से भरी हुई कहानी लेकर आए हैं और वो हमें बहुत ही खास मेहमान से रूबरू करवाने वाले हैं। तो चलिए डॉक्टर शर्मा से बात करते हैं।
2: नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर सौरभ और मैं आप सभी का ऑर्गन इंडिया की तरफ से फिर से एक बार स्वागत करता हूँ हमारे इस खास कार्यक्रम जिसका नाम है जीवन एक अनमोल उपहार। दोस्तों, ये चीजें हम ऑर्गन डोनेशन के बारे में भी कई सालों से सुनते आ रहे हैं कि जब भी किसी घर की महिला को किसी अंग की जरूरत होती है, किडनी या लिवर जैसे अंग की जरूरत होती है, तो जो घर के मेल मेंबर्स होते हैं वो बहुत ही हिचकिचाते हैं उन्हें डोनेट करने में, और जब किसी मेल मेंबर को जरूरत होती है तो फीमेल्स नहीं हिचकिचाती, मतलब घर की महिलाएं जो होती है वो हमेशा रेडी रहती है अपने अंग दान करने के लिए। तो दोस्तों, आज का जो हमारी कहानी है वो इसी चीज पर बेस्ड है और आज की जो हमारे मेहमान है वो इस मिथ को बिल्कुल तोड़ते हुए नजर आते हैं, क्योंकि इन्होंने अपनी डॉटर को बचाने के लिए अपनी एक किडनी अपनी डॉटर को डोनेट करी थी। चलिए तो हम आज इनसे बात करते हैं। इनका नाम है संजीव छाबरा, ये गुड़गांव के रहने वाले हैं। तो हम इनसे बात करके इनकी कहानी को जानते हैं और पता लगाते हैं कैसे ये चीजें उनके लिए टफ बनी, कैसे उन्होंने डिसाइड किया, कितनी मुश्किल आई, कितना आसान रहा ये सफर, एंड अब चीजें कैसी हैं। तो संजीव जी, हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं हमारे इस कार्यक्रम में।
3: गुड इवनिंग
2: संजीव जी। जैसा कि मैंने श्रोताओं को आपके इंट्रोडक्शन में बताया कि आपने अपनी यंगर डॉटर को अपनी किडनी डोनेट करी, तो आप थोड़ा सा हमारे श्रोताओं को इस के बैकग्राउंड के बारे में बताइए कि कैसे ये प्रॉब्लम चालू हुई आपकी यंगर डॉटर में और कितने साल की थी वो जब से ये प्रॉब्लम स्टार्ट हुई, कितने साल तक उन्हें सफर करना पड़ा एंड उसके बाद ये किडनी का ऑपरेशन हुआ, आपने किडनी डोनेट करने का फैसला किया।
3: तो अगर मैं गेस करता हूँ तो शायद ये 10-11 साल की थी जब उनको प्रॉब्लम स्टार्ट हुई, लेकिन कोई डायग्नोस नहीं कर पाया। हम दिल्ली के टॉप चाइल्ड किडनी स्पेशलिस्ट के पास गए थे कुछ के पास, लेकिन शायद दो के पास नहीं गए जिन्होंने अल्टीमेटली 2000 से प्रॉब्लम बंद हो गई थी। जब डिटेक्ट हुई तो सिर्फ छोटी सी प्रॉब्लम थी कि हर महीने 2-3 दिन का 100-90 दिन का बुखार होता था, स्कूल मिस करना पड़ता था, तो हमने थोड़े और टेस्ट कराए, फिर एक डॉक्टर ने बोला सब ठीक है, बट हम लगे रहे पीछे। अल्टीमेटली एक और डॉक्टर मिले और डायग्नोज हुआ, एंड ऑफकोर्स जैसे कि आज इस जमाने में होता है पेपर्स हमने US भेजे किसी जान पहचान के पास, उन्होंने भी कंफर्म किया कि ये रेयर केस है लेकिन 40% किडनी जा चुकी है, ऑटो इम्यून डिजीज है।
2: तो सिम्टम्स क्या थे उन्हें, सिर्फ फीवर आता था या कुछ और?
3: फीवर था लेकिन अल्टीमेटली जो आउटवर्ड सिम्टम्स थे फीवर के अलावा कुछ नहीं था। पहले UTI होता था लेकिन UTI बंद हो गया था, लेकिन UTI की लिटरेचर पढ़ते पढ़ते ही मैंने नहीं सुना था कि UTI किडनी से होता है। सब लोग सोचते UTI डर्टी टॉयलेट से होता है लेकिन किडनी से भी होता है, तो इसलिए मेरे दिमाग में ये बात बैठ गई। तो देर से ही लेकिन पहले हम पीछे पड़े रहे, फिर किडनी का वो हमने एक बड़े से अस्पताल में साउथ दिल्ली में गए भी थे, हम काफी मतलब लर्नड डॉक्टर हैं इस चीज के, बट उन्होंने कुछ नहीं है, उन्होंने जो देखा उनके सामने कुछ नहीं था। हमने 24 आवर यूरिन टेस्ट कराया, उसमें फाइनली पकड़ में आया, और एक और डॉक्टर ने फाइनली इनको पकड़ा और ट्रीट किया। शुरू में कीमो हुई थी, कीमो इज नॉट ओनली फॉर कैंसर, मेनी अदर डिजीजेस।
2: जी बिल्कुल। सो जब ये पहले प्रॉब्लम शुरू हुई और तब से जब डायग्नोस हुआ वो कितना टाइम आपको लग गया है सिर्फ डायग्नोसिस करने में इस चीज का, या डायग्नोसिस होने में?
3: आप कह सकते हो कि इसको 6 साल लगे, अगर मैं गेस कर रहा हूँ।
2: 6 साल सिर्फ डिसीज डायग्नोस ही नहीं हो पाई और अल्टीमेटली 40% किडनी डैमेज हो गई है, और ये शुरू में डायग्नोस हो जाती तो बहुत चीजों को बचाया जा सकता था।
3: बिल्कुल
2: जी। बट जैसा कि आपने बताया कि सिम्टम्स भी नहीं थे, तो फीवर को लेके अब डॉक्टर के पास जाते तो डॉक्टर सीजनल समझते हैं या फिर कुछ और, एंड UTI इज वेरी कॉमन। आपने बिल्कुल सही कहा कि UTI लोग समझते हैं कि सिर्फ डर्टी टॉयलेट से होता है या नॉन हाइजीनिक प्रैक्टिसेस से होता है, बट अल्टीमेटली इसके और भी कारण हो सकते हैं। तो अब हमेशा अपना डायग्नोस के साथ साथ डॉक्टर को जरूर चेक करवाया जाना चाहिए इन चीजों का।
3: हमने कैलकुलेट किया इसका, क्योंकि UTI जरूरत था फिर हमने घर भी शिफ्ट किया जिसमें मतलब ज्यादा फैसिलिटी थी, अलग से टॉयलेट के लिए था, तो वो सब भी किया, बट ऑब्वियसली दैट वाज नॉट द कॉस्ट।
2: जी छाबरा जी, आप दर्शकों को ये भी बताइए कि जब ये प्रॉब्लम डायग्नोस हुई और जब डॉक्टर्स ने बोला कि 40% किडनी फ्री बची है, 60% डैमेज हो चुकी है, तो आपके पास क्या क्या ऑप्शन आपको बताए गए, एंड ट्रांसप्लांट का डिसीजन कब आया?
3: 2016 में ये हुआ था, तब कहा था कि वील टेक इट एज वी सी इट, तब ट्रांसप्लांट की बात भी हुई थी। फिर तब तो सिर्फ 6 कीमो हुई, तो 6 महीने उसमें निकल गए, उसके बाद दवाइयों के बेसिस पे काफी ठीक चलता रहा। फिर इसने हॉस्टल ज्वाइन किया, इस लड़की में भी हिम्मत है, मतलब इस बीमारी इसके जो हुई तो 10th के बोर्ड इसके कभी कभी हो चुके थे, और इसके 12th के बोर्ड में इसने एक सब्जेक्ट में टॉप भी किया CBSE में। तो कॉलेज हॉस्टल जाने के बाद सडनली इसके कुछ सिम्टम्स फिर से बढ़ गए, वही बुखार और यूटीआई और कुछ और चीजें, नौजिया वोजिया कुछ चीजें थी। तो फिर डॉक्टर ने बोला कि ये शायद बढ़ गया है 2018 में, तो तब फिर सितंबर 2018 में फाइनली हम एम्स गए। एम्स में बहुत ही एक बढ़िया डॉक्टर है, मतलब इवन तो हमारी बच्ची पीडियाट्रिक्स निकल चुकी थी, फिर भी उन्होंने स्पेशल केस में विदाउट एनी अप्रोच नथिंग, सिर्फ हमने उनको ईमेल किया था नेट पे देख के, उन्होंने अलग से बुलाया हमको, इतना अच्छा समझाया, उन्होंने कहा था ट्रांसप्लांट के लिए प्लान कीजिए साल दो साल में। फाइनली हमने प्री एम्प्टिव ट्रांसप्लांट किया था, विच इज मींस बिफोर डायलिसिस बिगिंस।
2: जी, एंड उस केस में फिर आपको ऑब्वियसली ऑप्शन आपके पास यही था कि फैमिली में से कोई डोनेट कर दे।
3: हाँ, तो उसमें मेरी वाइफ काफी ज्यादा मतलब ये डिटेल ओरिएंटेड है, तो वो ज्यादा काफी चीजों में घुसी, वो ज्यादा उसने पढ़ाई करी हुई गूगल में, और उसने देखा कि जीन से भी होता है, ऑटोइम्यून का सोर्स क्या है उसको, तो अल्टीमेटली सब कुछ स्टडी करके एक ये थॉट आया कि हो सकता है किडनी रिजेक्ट भी हो जाए। बीच में मेरा किसी और फ्रेंड से बात कराई जिसने अपनी वाइफ को किडनी डोनेट की थी, विच वॉज अ थर्ड किडनी फॉर दैट हिज वाइफ इन 20 years or समथिंग, मतलब एक किडनी 15 साल चली, एक किडनी 4 साल चली, ऐसे कुछ। तो ये दिमाग में था कि वन किडनी माइट नॉट
2: रिपीट हो सकती है ये चीज।
3: हाँ, वी डोंट नो, जिस बीमारी ने मेरी किडनी को खाया हो वो नेक्स्ट किडनी को भी खा सकती है, खासकर क्योंकि सेम DNA है। तो फिर मैंने सबको चुप कराया, मैंने बोला आई एम दी ओल्डेस्ट इन द लाइन ऑफ डोनर्स, इट्स बेस्ट दैट आई डू इट, एंड आई वाज आल्सो एन एथलीट, माय हेल्थ आल्सो वाज द बेस्ट अमंग ऑल द पीपल ऑफरिंग द किडनी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। तो
2: बट उस टाइम पर जब आपने डिसाइड किया, एंड देन कई बार बच्चे होते हैं जो नहीं इतना कष्ट देना चाहते अपने माँ बाप को, तो कई बार वो मना करते हैं, कभी कभी बच्चों के केस में माँ बाप बोलते हैं कि नहीं हम बच्चों से नहीं ले सकते, तो आपके केस में भी ऐसा कुछ था कि आपकी जो डॉक्टर
3: थी? ऐसा कभी मेरे ख्याल से जहाँ तक मुझे याद है कभी ऐसा डिस्कशन नहीं हुआ, सो वी हैव अ स्मूथ रिलेशनशिप।
2: मैंने आपके डॉक्टर का नाम नहीं पूछा, आप क्या बताने का उनका नाम बताएंगे?
3: मेरी डॉक्टर का नाम है ईशिता,
2: ईशिता,
3: उसको प्यार से हम ईशिता कहते हैं।
2: कई बार होता है सर, जैसे आपने बोला कि आई एम द ओल्डेस्ट एंड आई एम फिट एंड फाइन एथलीट है, हेल्थ भी काफ़ी अच्छी है, तो इसके बावजूद भी कई बार जो हमारे रिलेटिव्स होते हैं या फिर जो दूर के रिश्तेदार होते हैं, इन लोगों को इतनी नॉलेज नहीं होती, वो लोग कई तरह की बातें करते हैं, कई तरह का हमें नेगेटिव चीज़ें बताते हैं इन चीज़ों के बारे में। तो आपके केस में ऐसा कुछ हुआ था किसी ने इस चीज़ को अपोज किया हो कि तुम मत दो या फिर ऐसा देना सही नहीं होगा?
3: नहीं, हमारे यहाँ तो उल्टा हुआ, मतलब किडनी देने के बाद बहुत से लोग मुझे सेलिब्रेट करते थे, मैंने बड़ा काम किया, बड़ा काम किया, मुझे तो 4 साल हो गए, मुझे अभी तक समझ नहीं आया कि क्या बड़ा काम किया। मतलब हमने बच्चे के लिए तो
2: यार माँ बाप करते हैं, इसलिए फिर भी कुछ लोग होते हैं जो नहीं समझते इन चीज़ों को। तो अब जब किडनी डोनेशन हो चुका है, किडनी ट्रांसप्लांट हो चुका है, तो आपकी तबीयत और डॉटर इशिता की तबीयत कैसी है, अब वो कैसी है?
3: काफ़ी अच्छा है, मतलब फंक्शनिंग है, उसने अपना कॉलेज से डिग्री खत्म किया, बिकॉज ऑफ ट्रांसप्लांट उसने सेफ्टी के कारण 1 साल ड्रॉप किया, एंड वी बोथ हैव सर्वाइव्ड 2 years ऑफ कोविड। तो सोचिए कि 2019 अक्टूबर 25, तो दिवाली के 2 दिन पहले हमारा सर्जरी हुआ, और नवंबर दिसंबर जनवरी 4 महीने के बाद कोविड का लॉकडाउन शुरू हो गया, तो हम दोनों ने उसको अच्छे भले भांति सर्वाइव किया है। बल्कि मैंने तो कोविड के हर महीने में 2020 ऑलमोस्ट हर महीने मैंने एक हाफ मैराथन दौड़ी है वर्चुअल, उस टाइम भी वर्चुअली होती है
2: जी। तो सरदार जी हम यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद वापस आकर अपनी चर्चा को जारी रखेंगे और वापस आकर नई जानकारी हासिल करेंगे आपसे।
3: ओके,
1: ब्रेक से पहले आइए सुनते हैं भजन सम्राट अनूप जलोटा जी का अंग दान से जुड़ा अपना व्यक्तिगत अनुभव।
4: कहते हैं जान है तो जहान है, बात सच है, लेकिन जब जान नहीं रही तो क्या हम किसी और को जिंदगी दे सकते हैं? जी हाँ, हम जाने के बाद अपनी आंखें किसी को दे सकते हैं, तो हमारी आंखों से वो दुनिया को देख सकता है, हम अपने दूसरे ऑर्गन दे सकते हैं, दिल दे सकते हैं, और किसी और को जिंदगी मिल जाएगी। मेरी वाइफ मेधा, उसका हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ और 13 साल उसने जिंदगी और गुजारी। ये तभी हो पाया कि जिसने हार्ट डोनेट किया था उसको ये अवेयरनेस थी कि मेरे जाने के बाद मैं किसी और को एक्स्ट्रा जिंदगी दे सकता हूँ। अगर ये चीज़ हम आप सब समझ जाएं तो ना जाने कितने लोगों का संसार खूबसूरत हो सकता है हमारे जाने के बाद। हिंदुस्तान में हर साल करीब 5 लाख लोग इसलिए मर जाते हैं कि उनको वो ऑर्गन नहीं मिलते जिससे कि उनकी ज़िंदगी बच सकती है। आप ऑर्गन डोनेट करके हीरो बन सकते हैं। हीरो बनने के बहुत से तरीके हैं, ये भी एक तरीका है हीरो बनने का कि ज़िंदगी भर कोई आपकी बातें करेगा। एक व्यक्ति 8 लोगों की ज़िंदगी बचा सकता है। 8 लोगों को आप ऑर्गन डोनेट करते हैं केवल एक बॉडी से, और यदि आप ऐसा करते हैं तो वो सब लोगों के तो आप हीरो हो गए। तो कितना अच्छा होगा कि इस बात को समझें और लोगों को समझाएं। हमारा मकसद यही है कि ये खबर सब तक पहुंचाएं, सब इस बात को जानें कि एक आदमी 8 लोगों की जान बचा सकता है, उन 8 लोगों के आप हीरो बन जाएंगे। तो आज ही प्लेश करिए और हमारा साथ दीजिए।

0: दोस्तों आप सुन रहे हैं ऑर्गन इंडिया का कार्यक्रम जीवन एक अनमोल उपहार।
1: नमस्कार दोस्तों, हम वापस आ गए हैं छोटे से ब्रेक के बाद। हम बात कर रहे थे संजीव छाबड़ा जी से, जिन्होंने अपनी एक किडनी अपनी डॉटर को इश्ता को डोनेट करी और उनकी जान बचाई। छाबड़ा जी, ब्रेक में जाने से पहले आप बता रहे थे कि सर्जरी के थोड़े थोड़े महीनों बाद ही कोविड आ गया था, अभी आप दोनों बिल्कुल फिट है, तो आपको कोई स्पेशल मेडिसिन लेनी पड़ती है डोनेशन के बाद? बिकॉज कई लोग सोचते हैं कि हम डोनेट करेंगे तो हमारी खुद की तबीयत खराब हो जाएगी, तो अब आप अगर हेल्थ वाइज देखा जाए तो आप अपनी समस्याओं के बारे में बताएं, अगर कुछ आपने फेस किया हो तो।
2: मुझे वैसे कोई समस्या नहीं हुई, बल्कि अगेन जब ट्रांसप्लांट की डेट डिसाइड हो रही थी तो मैंने एक ही चीज पूछी। मैंने कहा बॉम्बे मैराथन के अभी जो है रजिस्ट्रेशन खुल गए हैं, एक आध दिन में खत्म हो जाएंगे। मैं नॉर्मली फुल मैराथन के लिए दौड़ता हूँ, लेकिन बिकॉज ऑफ ट्रांसप्लांट क्या मैं फुल मैराथन दौड़ सकता हूँ? लोग बोले क्या पागल आदमी है, यहाँ क्या ऑपरेशन की बात हो रही है? फिर उन्होंने जवाब नहीं दिया। बाद में मेरे दूसरे डॉक्टर ने बोला हाफ मैराथन दौड़ लेगी, मैंने हाफ मैराथन दौड़ी थी। बट खैर, तो अदरवाइज एक जो चीज़

0: मुझे नहीं मालूम थी कि किडनी डोनर के लिए जो ऑपरेशन इज लाइक सिजेरियन सेक्शन, बेबी निकालने के लिए एक कट होता है पेट में, तो दैट कैन लिटिल बिट जो सिजेरियन के बाद वेट गेन का जो चांस है उसके लिए आपको प्रिकॉशन करनी थी, तो बस वही प्रिकॉशन करनी होती है, थोड़ा सा डाइट में, थोड़ा सा एक्सरसाइज में, मतलब योगा करके वो स्टमक के मसल्स को ठीक ठाक करो. So that was the only precaution which I didn't wear, wasn't aware of. थोड़ा सा मतलब मेरा एक बड़ा, मैं उसको मतलब almost naked कर चुका हूँ, लेकिन उससे मेरे fitness पर फर्क नहीं पड़ा. मैं दौड़ता वोड़ता हूँ, सब कुछ करता हूँ. And
1: बाकी आपको किसी
0: डॉक्टर से, डॉक्टर हमारा common था, बेटी और मेरा, बेटी को तो सब precautions ने बता दिए कि ये सब वो सब, और खाने में ये precaution, और हर रोज इतने बजे ये दवाई. मैंने कहा मेरे लिए क्या है, तुम्हारे लिए कुछ नहीं है, यू आर ए नॉर्मल पर्सन, जस्ट कम फॉर मंथली एनुअल रिव्यू, दैट इज ऑल. और मैंने कहा मैं ना स्पीड डॉग्स को बहुत फीड करता हूँ, तो कोई इंफेक्शन का डर, तो आपको उतना ही इंफेक्शन कटा है जो नॉर्मल आदमी को है. अब ये भूल जाइए कि आपकी एक किडनी दो किडनी, तो मैं वैसे ही जिया हूँ अपना, जो खाता था पहले मीठा, अब नहीं खाता हूँ, अभी तक कहा नहीं, बट
1: अब ज्यादा कॉन्शियस हो गए हैं उस अपनी हेल्थ को लेकर एंड प्लस वेट गेन को लेकर.
0: ऑपरेशन हुआ था उस टाइम मैं प्री डायबिटिक था, मेरी हेरिडिटी है, फादर उनके सारे भाई डायबिटिक रह चुके थे, सभी कंट्रोल किया एक्सरसाइज और डाइट से, पर सबका था. तो मैं ऑलरेडी मेरा 5.9 HbA1c में मैं ऑपरेट हुआ हूँ, और तो 2019 में धीरे धीरे वो जो बढ़ता है, 2022 में क्योंकि मेरा एनुअल चेकअप होता है किडनी का, पूरा स्कैन होता है और सारे ब्लड टेस्ट होते हैं, इसलिए मेरा डायबिटीज स्टार्टिंग में पकड़ में आ गया 2022 में, तो कंट्रोल में है. अगर मेरा एनुअल चेकअप नहीं होता बिकॉज ऑफ किडनी, तो जैसे बाकी लोगों का होता है 400-500 की शुगर के बाद पकड़ में आता है, तो आई एम स्टिल रनिंग, आई एम स्टिल एंजॉयिंग माय लाइफ.
1: एंड अगर बेटी की बात करें तो उनकी हेल्थ कैसी है किडनी ट्रांसप्लांट के बाद?
0: He's having a normal life. उसने पूरा एक साल ड्रॉप किया था उसने सर्जरी के लिए, वो भी मतलब ज्यादा प्रिकॉशन करते हैं ना पेरेंट्स. डॉक्टर ने कहा था ये आपने आपका ट्रांसप्लांट कर दिया आप नॉर्मल हो, पर फिर भी सबने प्रिकॉशन किया, तो एक साल उसका ड्रॉप किया कॉलेज में, बाकी उसने पूरे किए. अब वो फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली उसके कॉलेज का 1.5 साल तो कोविड में निकल गया, और लेकिन उसने आखिरी 3 महीने उसने हॉस्टल में निकाले. उसमें थोड़ी मेरी वाइफ को थोड़ा डर था कि फ्रेश फूड बहुत जरूरी है मेरी बेटी के लिए, तो मेरी वाइफ ने मेरी डॉटर के हॉस्टल के पास ही घर ले लिया और डेली फ्रेश फूड बना के उसको, मतलब ऑफिस से छुट्टी ले ली थी और उसको देती थी, मतलब फूड भेजती थी.
1: तो छाबरा जी, अगर हम लोगों को देखें हमारे समाज में ऐसी चीजों को लेके, अंगदान को लेकर या फिर किडनी डोनेशन को लेकर बहुत सारे मिथ्स, बहुत सारी भ्रांतियां फैली हुई हैं, ऐसे लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे?
0: एक्चुअली मैं तो अपना कुछ एग्जांपल एक दूंगा कि मैं शायद 31 साल का था, तो मेरे ऑफिस में एक लड़का था, उसका मोटा चश्मा था, मुझे मालूम पड़ा कि उसकी एक आंख है नहीं, पर मुझे उससे मिलने के 4-5 साल बाद मालूम पड़ा कि उसकी एक पत्थर की आंख है. बट दिस ही वाज नॉर्मल, ही वाज वन ऑफ द ब्राइटेस्ट बॉयज इन आवर ऑफिस, मोस्ट इंटेलिजेंट एंड आई एवर न्यू दैट ही डिडंट हैव वन आई. तो कुछ सालों के बाद, समझो कि 2004-5 के बाद के आसपास की बात है, तो मेरे फादर का एक आंख चली गई थी बिकॉज ऑफ एज रिलेटेड मैक्रो डिजनरेशन. मैं डॉक्टर को पूछा था, क्योंकि मेरा एक वो दोस्त है उसकी वो एक आंख से काम चला रहा था, मैं भी मेरी एक आंख जा सकती हूँ पिताजी के साथ, तो कहते नहीं इनकी आंख नहीं, इनकी ऑप्टिक नर्व डैमेज हुई, कोई नथिंग इज पॉसिबल. सो ऑलरेडी मेरे दिमाग का रास्ता तो क्लियर हो चुका था. एंड अगर कोई डाउट भी होता है, तो मैंने एक्चुअली एक फेसबुक पे ग्रुप ज्वाइन किया हुआ किडनी डोनर्स, देखो बात करते करते वो फेसबुक पे जो भी है, मतलब किडनी लाइफ किडनी डोनर्स
1: रिलेटेड,
0: इसमें ज्यादा यूएस के लोग हैं. बहुत से लोग ऐसे हैं जो मतलब अल्ट्रुइस्टिक डोनर है, मतलब कोई मतलब अपने फैमिली मेंबर को नहीं दे रहे हैं, और बहुत से नॉन डाइटेड डोनर्स भी हैं जो मतलब आज उन्होंने किसी और को दिया और एक साल बाद उनके फैमिली मेंबर को मिलेगा. तो सब एकदम मस्त है, बल्कि अभी तो शायद इस महीने या अगले महीने तो पर्थ में ट्रांसप्लांट गेम्स भी है, मैं जाना चाह रहा था, जा नहीं पाया.
1: बिल्कुल
0: अगली बार जाऊंगा, ओलंपिक्स होती है ट्रांसप्लांट की,
1: बिल्कुल, आप भी जा सकते हैं, इवन आपकी डॉटर भी पार्टिसिपेट कर सकती है उसमें। नेक्स्ट टाइम 2025 में जर्मनी होने वाले हैं।
0: बहुत बढ़िया
1: जी। सो संजय जी, यहाँ पर हम फिर से एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद अपने शो को कंक्लूजन की तरफ ले जाएंगे।
0: ओके।

0: दोस्तों आप सुन रहे हैं ऑर्गन इंडिया का कार्यक्रम जीवन एक अनमोल उपहार।
1: नमस्कार दोस्तों, हम वापस आ गए हैं अपने इस अंतराल के बाद और हम बात कर रहे हैं सावरा जी से जिन्होंने अपनी किडनी अपनी डॉटर को डोनेट करी थी। ब्रेक में जाने से पहले हमने कई सतहों के बारे में जाना और कंडीशन की कैसे उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी डायग्नोज करने में अंदर हो। तो आइए हम इस चर्चा को जारी रखते हैं और उनसे नई जानकारी हासिल करते करते हैं। सावरा जी, हमारे देश में अंगदान की जो दर है वो बहुत कम है और जो जितने अंग प्रत्यारोपण हमारे देश में होते हैं उनमें से ज्यादातर अंग प्रत्यारोपण उन लोगों के होते हैं जिन लोगों ने अपने फैमिली मेंबर्स को अपनी एक किडनी या फिर लिवर का कुछ भाग डोनेट किया है। बट डिसीज्ड ऑर्गन डोनेशन मतलब मृत्यु के बाद अंगदान को लेकर बहुत कम जागरूकता हमारे देश में है और हमारे देश में इतने लोगों की मृत्यु तो होती है, ज्यादातर रोड एक्सीडेंट्स होते हैं, करीब 1.5 लाख लोग हर साल मृत्यु का शिकार होते हैं रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट की वजह से, लेकिन उनके ऑर्गन डोनेट नहीं किए जाते क्योंकि जागरूकता की बहुत कमी है। तो आपने तो अपनी डॉटर को डोनेट किया है लेकिन आप इस डिसीज्ड ऑर्गन डोनेशन प्रोग्राम को मतलब मृत्यु के बाद अंगदान को कैसे किस तरह से देखते हैं और अगर हमारे देश में भ्रांतियों को देखें अगर इस तरह से तो आप उन लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं अंगदान के ऊपर कि ज़्यादा से ज़्यादा अंगदान के ऊपर जागरूकता बढ़े और लोग ज़्यादा से ज़्यादा अंगदान के लिए सामने आए क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स हैं हमारे देश में जिनकी फैमिली में कोई डोनर अवेलेबल ही नहीं है या फिर कोई मैच नहीं हो रहा फैमिली मेंबर का ब्लड ग्रुप या फिर ऑर्गन, तो उनके पास सिर्फ एक ही सहारा है कि मृत्यु के बाद जो लोग अपने अंगदान करें वो अंग अवेलेबल है।
2: तो इस मामले में तो एक्चुअली हमारे फ्रेंड सर्कल में एक है मेरे से मेरे कॉलेज का एक जूनियर है कभी जैन, जब उसके फादर की डेथ हुई थी आज से 10-12 साल पहले तो हम उसके घर गए उसी दिन तक इन्फॉर्मेशन कब है कहते लोग क्यों कहते हिज बॉडी हैज बीन डोनेटेड टू एम्स एंड विद इन आवर्स ऑल दी डिफरेंट जो आइस के डोनेशन लेने वाले हैं वगैरह वगैरह वो पहले आ जाते हैं। थोड़ा बिजी रहता है वो फाउंडेशन स्टार्ट करता है फिर कर नहीं पाता या कर चुका है उसके वो झटके में चलते जाए बट अब ऑलमोस्ट हमारे फ्रेंड सर्कल में सब उसी के पास अप्रोच करते हैं जब किसी के मतलब फैमिली मेम्बर की डेथ होती है, अगर उसकी फैमिली मेम्बर की मर्जी हो या नियरेस्ट की मर्जी हो तो हम उसको बोलते हैं कि हमारी हेल्प करते हैं, हम भी चाहते हैं। और हम सब लोगों ने तो उसको बोल रखा है हम लोग पेपर वर्क में वीक हैं लेकिन हमारा भी कर देना अभी वो सब बस वेरी वीक इन यू नो एक्चुअली अप्लाइंग फॉर ऑर्गन डोनेशन दैट इज माय प्रॉब्लम आल्सो मैंने भी सिर्फ लाइसेंस भरने के टाइम में अप्लाई किया और
1: जी। तो आपने लाइसेंस की बात करी तो ये मैं अपने श्रोताओं को भी बताना चाहूंगा कि आजकल ऑर्गन डोनेशन के ऊपर आपकी जो सहमति है वो आपके ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के टाइम पर भी पूछी जाती है। जब भी आप अपने ड्राइविंग लाइसेंस का फॉर्म भरते हैं या फिर रिन्यूअल का फॉर्म भरते हैं तो उसमें एक ऑप्शन आता है कि किसी दुर्घटना की स्थिति में क्या आप अपने अंगदान करना चाहेंगे। तो मेरा आप सभी श्रोताओं से एक अनुरोध है कि आप प्लीज उसे यस जरूर करें। जरूरी नहीं है आपका डोनेशन हो ही जाएगा लेकिन आप अपनी इच्छा तो जाहिर कर ही सकते हैं और आपकी एक हाँ से एक इच्छा से करीब 8 लोगों की जिंदगी बचाई जा सकती है। एक इंसान जब मृत्यु को प्राप्त होता है तो अपने सिर्फ किडनी ही नहीं 8 ऑर्गन्स ऐसे डोनेट कर सकता है जिनसे 8 अलग अलग लोगों की जान बचाई जा सकती है। तो ये पूरे परिवार की जान बचती है जब किसी एक इंसान की जान बचाई जाती है अंगदान से, तो एक्चुअली उसके पूरे परिवार की जान बचती है। बिकॉज आपने कभी अगर देखा हो किसी पेशेंट को जो डायलिसिस पर है तो आपको रियलाइज होगा कि सिर्फ वो पेशेंट ही सफर नहीं कर रहा है, उसकी पूरी फैमिली सफर करती है। हर रोज आना जाना हॉस्पिटल में, अपने स्कूल कॉलेज या अपने ऑफिस से छुट्टी लेना, देन उस पीड़ा को सहना, ऑफिस मतलब इलाज के खर्चे, इन सब चीजों से फैमिली पूरी टूट जाती है। तो जब एक इंसान की जान बचती है तो उसके पूरे परिवार की जान बचती है। एंड ट्रांसप्लांट आपकी पूरी लाइफ बिल्कुल नॉर्मल कर देता है, बस आपको कुछ मेडिसिन कुछ चीज़ों का परहेज रखने की जरूरत है, अदरवाइज आप बिल्कुल नॉर्मल हो, आप किसी से भी कम नहीं हो, आप दौड़ सकते हो, भाग सकते हो, वजन उठा सकते हो। जैसा सर का एग्जांपल देखें तो सर आज भी अपनी रनिंग करते हैं, उन्होंने अपनी एक किडनी दे दी है और लोग ये भी मानते हैं कि मैंने अगर अपनी एक किडनी दे दी तो मुझमें कमी आ जाएगी, मुझमें कमजोरी आ जाएगी, मुझे बच के रहना पड़ेगा। तो सब कुछ भी नहीं है, आप पूरी तरह से नॉर्मल हो, आप हर वो काम कर सकते हो जो एक नॉर्मल इंसान करता है।
2: मैं एक और छोटा सा ऑर्गन डोनेशन भी बता सकता हूँ आपको जो कि लाइफ सेविंग नहीं है, ऑर्गन भी नहीं है, बट इट इज एस्टीम सेविंग जो हम मुझे एक्चुअली मिलन सोमन ने बताया था, मैंने एक बार किया है, इट इज हेयर डोनेशन. आई वेंट थ्रू दैट. इट्स माइट साउंड लिटिल बिट फ्रिवोलस ऑन द फेस ऑफ इट, बट मैंने बाल अपने काफी लंबे अस्त किए थे, काफी मतलब मेरा अच्छा सा पर्सनैलिटी हो गई थी लोगों के बीच में. तो जब मैंने पढ़ा कि आप अगर अपने बाल डोनेट कीजिए तो कैंसर पेशेंट्स के लिए विक बदली हुई, कैंसर पेशेंट्स कैन नॉट टेक केमिकल विक्स जो आर्टिफिशियल होते हैं, तो उसमें मुझको 3 महीने लग गए जब विलन सोमन ने कैंपेन चलाया था और एक्चुअली मतलब ये डोनेट करने में, क्योंकि मेरी सेल्फ एस्टीम बनी हुई थी मेरे बालों के बालों से. मैंने सोचा मैं तो आदमी हूँ, जो औरतें हैं जिनके लिए बाल बहुत बड़ा पार्ट है सेल्फ एस्टीम का और उनकी कीमो होती है, उनके लिए कितनी बड़ी बात है ये. एंड इफ दे फॉर सम मेडिकल रीजन कैन नॉट टेक एन आर्टिफिशियल विक, तो देन दैट मेड मी. उस टाइम मेरे इतने लंबे बाल नहीं थे कि मैं चोटी से काट के डोनेट कर दूं, मुझे पूरा एक गंजा होना पड़ा. तो मैं एक साल गंजा रहा पूरे कोविड में. सो दैट समबडी आस्क्ड मी आई कैन टेल द स्टोरी.
1: बिल्कुल आपने सही कहा कि जब कीमो चलती है तो बालों को नुकसान होता है और हमें अपने बाल देने पड़ते हैं, और जो फीमेल्स हैं उनका तो सबसे बड़ा गहना माना जाता है उनके जो केश हैं, बाल हैं. और जब ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो कॉन्फिडेंस जो एक लाइफ को जीने का एक अंदाज है वो बदल जाता है. जब आपके बाल नहीं रहते आप दुनिया के सामने से जाने से कतराते हैं, तो ऐसे लोगों की इन छोटी छोटी चीज़ों से बहुत बड़ी हेल्प हो जाती है. तो उनको कॉन्फिडेंस वापस मिलता है दुनिया के सामने जाने का, अपनी बीमारी के रहते हुए अपने नॉर्मल जो डेली रूटीन के काम है, अपनी अर्निंग है, अपने ऑफिस है, अपने कॉलेज स्कूल जो भी है, तो ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं. बोलने में बहुत आसान लगती हैं लेकिन ऑब्वियसली करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन उनके लिए बहुत मैटर करता है और उनकी पूरी लाइफ पूरा दिन उस बात से चेंज हो सकता है. जी बिल्कुल, हेयर डोनेशन एक चीज़ है, बहुत सारी ऐसी चीज़

0: होती हैं जो नॉन एसेंशियल है लेकिन स्टिल वो बहुत इम्पैक्टफुल रहती हैं किसी की लाइफ में। जी साबरा जी, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आपने इतने शॉर्ट नोटिस पर हमें समय दिया और इतनी अच्छी अच्छी बातें हमारे श्रोताओं को बताएं। एंड श्रोताओं से भी मैं आग्रह करना चाहूँगा कि जैसे छाबरा जी ने किसी की जान बचाई और हमेशा वो ये ट्राई कर रहे हैं कि लोगों को जागरूक बनाया जाए किसी ना किसी
1: तरह से।
0: मैंने आपकी इसलिए एज नहीं पूछी क्योंकि जनरली एज पूछना मुझे ऑड सा लगता है, मैं किसी की भी एज नहीं पूछता।
1: डोनेशन में ये वाला पॉइंट भी आता है ना।
0: यस बिल्कुल बिल्कुल, कई लोग सोचते हैं कि मेरी एज ज्यादा इसलिए, जी कई लोग सोचते हैं कि मेरी एज ज्यादा है इसलिए मैं डोनेट नहीं कर सकता, बट मैं आपको बताना चाहूंगा कि एज बिल्कुल भी मैटर नहीं करती। आप कितने ही बुजुर्ग हैं या आप कितने ही यंग हैं लेकिन अगर आपका जो डोनेट आप जो पार्ट कर रहे हैं जो ऑर्गन कर रहे हैं वो हेल्दी है तो आप बिल्कुल डोनर बन सकते हैं। एज मैटर नहीं करती, उस ऑर्गन की हेल्थ मैटर करती है।
1: एक थे मतलब तो उनको क्वालिफाई नहीं हो रहे थे तो उन्होंने डॉक्टर से पूछ के बैरियाट्रिक सर्जरी कर ली। बैरियाट्रिक के थ्रू अपना वेट कम कराया और फिर किडनी डोनेट कर। दैट मींस अब बैरियाट्रिक सर्जरी के बाद भी आप किडनी डोनेट कर सकते हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं बिल्कुल। इवन मैं भी एक पर्सन को जानता हूँ, सर गंगाराम हॉस्पिटल के चेयरमैन थे वो, श्री तेजराम जी, उन्होंने 88 ईयर्स की एज में अपनी किडनी अपना हार्ट और लिवर डोनेट किया था। ऑलमोस्ट 90 ईयर्स उनकी एज हो गई थी, 88 क्रॉस हो गए थे। तो एज बिल्कुल भी मैटर नहीं करती, मैटर सिर्फ उस ऑर्गन की हेल्थ करती है जो आप डोनेट करने जा रहे हैं। चलिए छाबरा जी, हम यहाँ पर आपसे विदा लेते हैं और अपने श्रोताओं से भी हम विदा लेते हैं। अगले एपिसोड में हम किसी और हस्ती के साथ जल्दी ही हाजिर होंगे और नई चर्चा हम जारी करेंगे, नई जानकारी हासिल करेंगे।
1: थैंक यू सो मच। ओके
0: थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच।
2: आओ मिलके एक दिया जलाएं, अंतरतम के विश्वास संग बाती नेह की सजाएं। आओ मिलके एक दिया जलाएं, एकता का परचम चम ओर फहराएं। आओ मिलके एक दिया जलाएं, अंतरतम के विश्वास संग बाती नेह की सजाएं। आओ मिलके एक दिया जलाएं, दिया है हौसलों की उड़ान का, दिया है उत्सर्ग के सम्मान का, दिया है राम का रहमान का, दिया है समग्र हिंदुस्तान का। जीवन संगीत बजाएं, आओ मिलके एक दिया जलाएं, अंतरतम के विश्वास संग बाती नेह की सजाएं। आओ मिलके एक दिया जलाएं।
3: आज का ये विशेष कार्यक्रम हम यहीं समाप्त करते हैं और आपसे इसी संदेश के साथ विदा लेते हैं कि अगर हम अंग दान या नेत्र दान करें या अपने जाने के बाद किसी के जीवन में खुशियां भर सकते हैं तो हमें ये जरूर करना चाहिए। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800120 3648 पर फोन कर सकते हैं या info@organindia.org पर ईमेल भी कर सकते हैं। यदि आप अंगदान का संकल्प लेना चाहें तो आप हमारी वेबसाइट www.organindia.org पर जाकर ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। हमारी तरफ से आपको एक ऑर्गन डोनर कार्ड और एक सर्टिफिकेट ईमेल किया जाएगा। इसके बारे में आप अपने परिवार को जरूर बताएं और अपने आसपास सभी को प्रेरणा दें। अगले कार्यक्रम में फिर मिलेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।
2: आओ मिलके एक दिया जलाएं, अंतरतम के विश्वास संग बाती नेह की सजाएं। आओ मिलके एक दिया जलाएं, एकता का परचम चम ओर फहराएं। आओ मिलके एक दिया जलाएं, अंतरतम के विश्वास संग बाती नेह की सजाएं। आओ मिलके एक दिया जलाएं, दिया है हौसलों की उड़ान का, दिया है उत्सर्ग के सम्मान का, दिया है राम का रहमान का, दिया है समग्र हिंदुस्तान का। जीवन संगीत बजाएं, आओ मिलके एक दिया जलाई। अंतरतम के विश्वास संग बाती नेहे की सजाएं, आओ मिलके एक दिया जलाएं।
3: आज का ये विशेष कार्यक्रम हम यहीं समाप्त करते हैं और आपसे इसी संदेश के साथ विदा लेते हैं कि अगर हम अंग दान या नेत्र दान करें या अपने जाने के बाद किसी के जीवन में खुशियां भर सकते हैं तो हमें ये जरूर करना चाहिए। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800120 3648 पर फोन कर सकते हैं या info@organindia.org पर ईमेल भी कर सकते हैं। यदि आप अंगदान का संकल्प लेना चाहें तो आप हमारी वेबसाइट www.organindia.org पर जाकर ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। हमारी तरफ से आपको एक ऑर्गन डोनर कार्ड और एक सर्टिफिकेट ईमेल किया जाएगा। इसके बारे में आप अपने परिवार को जरूर बताएं और अपने आसपास सभी को प्रेरणा दें। अगले कार्यक्रम में फिर मिलेंगे। धन्यवाद। नमस्कार।

0: जीवन एक अनमोल उपहार है। अपने जाने के बाद किसी और के जीवन में उम्मीद भरें। अंगदान का संकल्प लें। अंगदान, जीवन दान।
1: रेडियो कार्यक्रम संबंधी अस्वीकरण द ऑर्गन ऑर्गन रिसीविंग एंड गिविंग अवेयरनेस नेटवर्क पराशर फाउंडेशन तथा रेडियो स्टेशन उसके मालिक कर्मचारी प्रबंधन प्रायोजक एवं सहयोगी जिन्हें यहां सामूहिक रूप से हम कहा गया है वार्ता कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ताओं या उनके अतिथियों द्वारा दी गई किसी राय अथवा वक्तव्य की कोई जिम्मेदारी नहीं लेते। वार्ता कार्यक्रम के दौरान उसमें उपस्थित अतिथियों समेत दिए गए कोई भी बयान या मत या विषय का हम किसी भी प्रकार से समर्थन नहीं करते हैं। हम इसे सत्य कहकर इसका समर्थन नहीं कर रहे। इसका निर्णय आप स्वयं करें। यद्यपि हमारी कोशिश ईमानदारी से सच कहने की ही रहेगी तथा यदि कोई अपेक्षित सत्य हो तो उस पर सवाल करने का अधिकार हमारे पास रहेगा। हमारा इरादा किसी को बदनाम करना, किसी से भेदभाव करना, नफरत फैलाना या किसी को दुख पहुंचाने का नहीं है। इसके अलावा ये कोई चिकित्सा सलाह नहीं है और प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी चिकित्सा उपचार से संबंधित नहीं है। हमारा विश्वास है कि ये हमारे बुनियादी अधिकारों का हिस्सा है और साथ ही हमारा कर्तव्य है कि हम इस जानकारी या राय का प्रसार करें। हालांकि हम अन्य लोगों की लिखित बोली गई या सांकेतिक राय की जिम्मेदारी नहीं ले सकते।

राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन में भाग लेंगे। 2 दिवसीय ये सम्मेलन वर्चुअली भी आयोजित किया जाएगा। देश भर के विभिन्न सुरक्षा बलों और पुलिस बलों के 850 से अधिक अधिकारी सम्मेलन के दौरान राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित विभिन्न समकालीन मुद्दों और चुनौतियों पर विचार विमर्श करेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज मॉस्को में रूस के उप प्रधानमंत्री देनिस मांतुरोव के साथ व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग पर 27वें भारत रूस अंतर सरकारी आयोग की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। श्री जयशंकर रूस के विदेश मंत्री सर्गे लावरोव से क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर अपने विचार भी साझा करेंगे। ब्रिक्स शेरपा और विदेश मंत्रालय में आर्थिक मामलों के सचिव सुधाकर दलेला ने कहा है कि भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता मानवता प्रथम के सिद्धांत पर आधारित जन केंद्रित दृष्टिकोण से प्रेरित है। लखनऊ में 18वें ब्रिक्स अकादमिक मंच के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए श्री दलेला ने कहा कि भारत ने ब्रिक्स की अध्यक्षता के दौरान समायोजन, नवाचार, सहयोग और सतत विकास पर ध्यान केंद्रित किया है। ये फोरम लखनऊ में 23 से 25 अगस्त तक आयोजित किया जा रहा है। प्रवर्तन निदेशालय ईडी के लखनऊ क्षेत्रीय कार्यालय ने आज उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर और गाजियाबाद तथा हरियाणा के फरीदाबाद में 9 ठिकानों पर तलाशी अभियान चलाया। ये कार्रवाई फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट ITC लेन देन के मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत की गई। ईरान ने अपने मित्र देशों के जहाजों को हुर्मुज जलडमरु मध्य से गुजरने की अनुमति दे दी है, पर इसके लिए उन्हें शुल्क देना होगा। ईरान के राष्ट्रीय सुरक्षा आयोग के प्रवक्ता इब्राहिम रेजाई ने बताया कि ये शुल्क समुद्री, पर्यावरणीय और लॉजिस्टिक संबंधी कई सेवाओं को सम्मिलित करेगा। इससे पहले ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव मोहसेन रेजाई ने कहा था कि हुर्मुज जलडमरु मध्य बंद रहेगा और तब तक नहीं खुलेगा जब तक अमेरिका अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा नहीं करता। उन्होंने कहा कि ईरान के खिलाफ अमेरिका की आर्थिक कार्रवाई का समर्थन करने वाले किसी भी देश के कदम को युद्ध माना जाएगा। दूसरी ओर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हुर्मुज जलडमरु मध्य को नए अमेरिकी क्षेत्र के रूप में दर्शाने वाली एक तस्वीर साझा करके इस महत्वपूर्ण जलमार्ग पर अमेरिकी नियंत्रण के अपने दावे को दोहराया है। रेलवे ने रेल नेटवर्क में विशेष स्वच्छता अभियान शुरू किया है। इसका उद्देश्य रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों को लगातार स्वच्छ और सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना है। इसके अंतर्गत पेयजल टैंक और फिल्ट्रेशन सिस्टम की सफाई की जाएगी। रेल मंत्रालय ने बताया कि इस अभियान के दौरान जोनल रेलवे जल स्रोत, जल शोधन और फिल्ट्रेशन संयंत्र तथा पेयजल वितरण केंद्रों का व्यापक निरीक्षण किया जाएगा। केंद्रीय वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत कम से कम 8-9 और देशों के समूहों तथा अलग अलग देशों के साथ बातचीत कर रहा है। इन देशों का संयुक्त रूप से सकल घरेलू उत्पाद 15 ट्रिलियन अमरीकी डॉलर के बराबर है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में भारत के मुक्त व्यापार समझौते वैश्विक व्यापार के लगभग 75% हिस्से को कवर करेंगे। भारतीय वाणिज्य दूतावास ने न्यूयॉर्क स्थित ब्रुकलिन में हुई गोलीबारी की घटना में एक भारतीय नागरिक की मृत्यु पर शोक व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में वाणिज्य दूतावास ने शोक संतप्त परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की। बिहार में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से पटना, वैशाली, भोजपुर, बक्सर, भागलपुर, मुंगेर, समस्तीपुर और बेगूसराय जिलों के निचले इलाकों में बाढ़ की स्थिति बन गई है। कोलंबो में भारत और श्रीलंका के बीच दूसरा और अंतिम टेस्ट मैच जारी है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 7 विकेट पर 437 रन बना लिए हैं। ऋषभ पंत ने इतिहास रचते हुए भारत के लिए विदेशी सरजमी पर बतौर विकेटकीपर बल्लेबाज के रूप में सबसे अधिक रन बनाए। श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: गोरिया
1: गोरिया
2: गोरिया।
3: प्लास्टिक गोरिया जैसे नादान जानवरों की जान ले सकता है। आप भी छोटी सी शुरुआत कीजिए, प्लास्टिक को अलग डस्टबिन में डाल के शुरू करें एक छोटी सी अच्छाई।
4: बैठिए मैडम बैठिए। देखो इनको, इनकी नाक देखो, बिल्कुल अपने पिताजी से मिलती है। देखो इसकी आंखें देखो। पता है तेरे पिताजी ने हमें हंसाया है, रुलाया है, मनोरंजन दिया है। मतलब कौन सा गाना था, एक चतुर नार बड़ी होशियार, क्या गाना था वो?
5: अरे बेटो तू यहाँ क्या कर रहा है, और ये दोनों लड़कियों कौन है?
4: लेकिन भाई साहब आप कौन है?
5: जी मैं इसका बाप हूँ।
4: आप इसके बाप हूँ? महमूद का बेटा नहीं तू? अरे हास्य कलाकार महमूद, ये तेरे बाप का रोड नहीं है?
6: जी नहीं।
4: तो फिर बिना हेलमेट के दो लड़कियों को बिठा के रूम रूम करते शर्म नहीं आती तुम्हें?
1: चलान तो कटेगा भैया तेरा,
4: और अभी उतर के लेके जाओ। आपकी और सबकी सुरक्षा के लिए।

नमस्कार दोस्तों, प्रेम, विश्वास और भाई बहन के अटूट रिश्ते का ये पावन पर्व रक्षाबंधन आप सभी के जीवन में ढेर सारी खुशियाँ लेकर आ रहा है। राखी का ये पवित्र धागा सिर्फ कलाई पर बंधा एक धागा नहीं, बल्कि प्यार, विश्वास, सुरक्षा और जीवन भर साथ निभाने के वचन का प्रतीक है।

रिश्तों में मिठास रहे, अपनों का साथ रहे। रिश्तों में मिठास रहे, अपनों का साथ रहे। हर कलाई पर सजे प्यार का धागा और हर चेहरे पर मुस्कान रहे। इन्हीं खूबसूरत भावनाओं के साथ रेडियो वंचन धर्मशाला की ओर से आ रहे इस रक्षाबंधन पर्व

0: नमस्ते भैया, कैसे हो भाभी जी?
1: अभी शादी का लहंगा सिलवाना था।
0: हाँ हाँ, बहुत सारे डिजाइन है, ये देखिए। कौन सा स्टाइल चाहिए आपको? ये देखिए, पिछले महीने मिश्रा जी की बेटी की शादी के लिए सिया था।
1: ये तो स्लीवलेस है, हमें फुल स्लीव्स वाला चाहिए। थोड़ा सिंपल दिखाइए।
0: सिंपल में तो फिर, अरे पर किसके लिए बनाना है?
1: चुन्नी के लिए।
0: ये अपनी चुन्नी?
1: हाँ, अच्छा रिश्ता मिला है।
0: बेटा चुन्नी, कितने साल के हो आप?
2: अगले महीने 12 साल की हो जाएगी। पंडित जी ने इसी इतवार का मुहूर्त निकाला है, तो हो तो जाएगा ना तब तक।
0: अच्छा, 12 साल की है तो आपको प्रॉब्लम नहीं है?
2: नहीं, क्यों?
0: और आपको भी प्रॉब्लम नहीं है? पर मुझे प्रॉब्लम है, मैं नहीं सीऊंगा।
2: चलो छोड़ो उसे, किसी और से सिलवा लेंगे।
0: अरे भैया जी, एक मिनट। अरे बिरजू, वो कौन सा नंबर है, निकलवाओ तो जरा।
3: मास्टर जी, टोल फ्री नंबर है 1098, कभी भी कॉल करके कंप्लेन कर सकते हैं।
0: ना हम सिएंगे, ना किसी को सीने देंगे।
4: जीवन की हर उलझन का हल मिलेगा मित्र, बस अपने मन को थोड़ा शांत करके देखो। जो तुम्हारा है वो कहीं नहीं जाएगा, और जो चला गया वो कभी तुम्हारा था ही नहीं। हर परिस्थिति में मुस्कुराना सीखो, क्योंकि मुस्कान ही हर दर्द की सबसे बड़ी दवा है। भरोसा उस ईश्वर पर पूरा रखो, वो तुम्हें वही देगा जो तुम्हारे लिए सही है। तुम्हारी सरलता ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है, और तुम्हारी खामोशी में ही ईश्वर का वास।
5: मम्मी जी क्या कह रहे हैं, बचपन में आपका बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ था।
6: हाँ, जब मैं 12 साल का था ना, तो मैं पापा को बिना बताए उनकी बाइक लेके घर से बाहर निकल गया, और मैं बाइक इतनी तेज चला रहा था कि सामने से एकदम से ट्रक आ गया। तो ट्रक को बचाने के चक्कर में मैंने एकदम से लेफ्ट ले लिया। तो जैसे ही लेफ्ट लिया, सामने से गाड़ी आ रही थी, और गाड़ी में जाके बाइक लगी और बाइक पूरी खत्म हो गई।
5: बेबी बाइक को छोड़ो, आप बताओ आप बचे थे कि नहीं?
6: तब तो बच गया था, लगता है अब नहीं बचूंगा।

0: दोस्तों मैं हूं आपकी अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका, हाजिर हो गई हूं आप सभी के लिए कार्यक्रम लेकर पंजाबी गीतों का ये प्यारा सा सफर। बिल्कुल दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस प्यारे से सफर में। तो आइए बढ़ते हैं इस सफर में आगे और आप सभी को लेकर चलते हैं एक खूबसूरत से पंजाबी म्यूजिकल ट्रैक के सफर में।
1: वो तो चिट्ठे चल रहा है
2: मम्मी, जरा मैं मार्केट तक होके आया।

दोस्तों आप सभी कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं पंजाबी गीतों का। आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और कार्यक्रम में सुनाते हैं आप सभी को ये प्यारा सा पंजाबी गीत।

291.2 MHz पर ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन कार्यशाला और आप सभी पंजाबी गीतों का कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिता के साथ। तो आइए श्रोताओ बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और एंजॉय करते हैं ये प्यारा सा म्यूजिकल ट्रैक।

दोस्तों आप सभी अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ जुड़े हुए हैं 91.9 MHz पर। और आज का ये कार्यक्रम यानी कि पंजाबी गीतों का ये कार्यक्रम आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ।

दोस्तों पंजाबी गीतों का ये कार्यक्रम आप सभी एंजॉय कर रहे हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला से। बिल्कुल आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला खूबसूरत सा पंजाबी म्यूजिकल ट्रैक।

दोस्तों पंजाबी गीतों का कार्यक्रम आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी आज की दोस्त रुचिका के साथ। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला पंजाबी गीत।

दोस्तों बहुत ही खूबसूरत सा गीत आप सभी ने एंजॉय किया बिल्कुल, और आप सभी एंजॉय कर रहे हैं पंजाबी गीतों का कार्यक्रम अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला से। तो आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और फिर से लेकर चलते हैं आपको एक और पंजाबी गीत की तरफ। इसी तरह से एंजॉय करते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला, गूंज अपने पन की।

91 दशमलव ओमेगा हर्ट्ज पर ये है आप सभी का अपना रेडियो रिंगटोन धर्मशाला और आप सभी इस समय जुड़े हुए हैं पंजाबी गीतों के कार्यक्रम में। बिल्कुल कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ। तो आइए दोस्तों बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं अगला ये प्यारा सा खूबसूरत सा पंजाबी गीत।

दोस्तों आप सभी एंजॉय कर रहे थे पंजाबी गीतों का ये प्यारा सा सफर अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ। तो आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। इसी तरह से एंजॉय करते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला, गूंज अपने पन की।

0: गोरिया
1: गोरिया आकर गोरिया
0: गोरिया
1: गोरिया आकर आ
0: गोरिया
2: हटो हटो हटो हटो एले गोरिया।
3: प्लास्टिक गोरिया जैसे नादान जानवरों की जान ले सकता है। आप भी छोटी सी शुरुआत कीजिए, प्लास्टिक को अलग डस्टबिन में डाल के शुरू करें एक छोटी सी अच्छाई।
4: बैठिए मैडम बैठिए।
5: देखो इनको, इनकी नाक देखो, बिल्कुल अपने पिताजी से मिलती है। देखो इसकी आंखें देखो।
4: पता है तेरे पिताजी ने हमें हंसाया है, रुलाया है, मनोरंजन दिया है। मतलब कौन सा गाना था, एक चतुर नार बड़ी होशियार, क्या गाना था वो?
6: ओए बेटो तू यहाँ क्या कर रहा है, और ये दोनों लड़कियों कौन है?
4: लेकिन भाई साहब आप कौन है?
6: जी मैं इसका बाप हूँ।
4: आप इसके बाप हूँ? महमूद का बेटा नहीं तू? अरे हास्य कलाकार महमूद, ये तेरे बाप का रोड नहीं है?
7: जी नहीं।
4: तो फिर बिना हेलमेट के दो लड़कियों को बिठा के रूम रूम करते शर्म नहीं आती तुम्हें?
8: चलान तो कटेगा भैया तेरे,
4: और अभी उतर के लेके जाओ। आपकी और सबकी सुरक्षा के लिए।

नमस्कार दोस्तों, प्रेम विश्वास और भाई बहन के अटूट रिश्ते का ये पावन पर्व रक्षाबंधन आप सभी के जीवन में ढेर सारी खुशियाँ लेकर आ रहा है। राखी का ये पवित्र धागा सिर्फ कलाई पर बंधा एक धागा नहीं, बल्कि प्यार, विश्वास, सुरक्षा और जीवन भर साथ निभाने के वचन का प्रतीक है।

रिश्तों में मिठास रहे, अपनों का साथ रहे। रिश्तों में मिठास रहे, अपनों का साथ रहे। हर कलाई पर सजे प्यार का धागा और हर चेहरे पर मुस्कान रहे। इन्हीं खूबसूरत भावनाओं के साथ रेडियो गुंजन धर्मशाला की ओर से आ रहे

0: नमस्ते भैया, कैसे हो भाभी जी?
1: अभी शादी का लहंगा सिलवाना था।
0: हाँ हाँ, बहुत सारे डिजाइन है, ये देखिए। कौन सा स्टाइल चाहिए आपको? ये देखिए, पिछले महीने मिश्रा जी की बेटी की शादी के लिए सिया था।
1: ये तो स्लीवलेस है, हमें फुल स्लीव्स वाला चाहिए। थोड़ा सिंपल दिखाइए।
0: सिंपल में तो फिर, अरे पर किसके लिए बनाना है?
1: चुन्नी के लिए।
0: ये अपनी चुन्नी?
1: हाँ, अच्छा रिश्ता मिला है।
0: बेटा चुन्नी, कितने साल के हो आप?
2: अगले महीने 12 साल की हो जाएगी। पंडित जी ने इसी इतवार का मुहूर्त निकाला है, तो हो तो जाएगा ना तब तक।
0: अच्छा, 12 साल की है तो आपको प्रॉब्लम नहीं है?
2: नहीं, क्यों?
0: और आपको भी प्रॉब्लम नहीं है? पर मुझे प्रॉब्लम है, मैं नहीं सीऊंगा।
2: चलो छोड़ो उसे, किसी और से सिलवा लेंगे।
0: अरे भैया जी, एक मिनट। अरे बिरजू, वो कौन सा नंबर है, निकलवाओ तो जरा।
3: मास्टर जी, टोल फ्री नंबर है 1098, कभी भी कॉल करके कंप्लेन कर सकते हैं।
0: ना हम सीएंगे, ना किसी को सीने देंगे।
4: जीवन की हर उलझन का हल मिलेगा मित्र, बस अपने मन को थोड़ा शांत करके देखो। जो तुम्हारा है वो कहीं नहीं जाएगा, और जो चला गया वो कभी तुम्हारा था ही नहीं। हर परिस्थिति में मुस्कुराना सीखो, क्योंकि मुस्कान ही हर दर्द की सबसे बड़ी दवा है। भरोसा उस ईश्वर पर पूरा रखो, वो तुम्हें वही देगा जो तुम्हारे लिए सही है। तुम्हारी सरलता ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है, और तुम्हारी खामोशी में ही ईश्वर का वास।
5: मम्मी जी क्या कह रहे हैं, बचपन में आपका बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ था।
6: हाँ, जब मैं 12 साल का था ना, तो मैं पापा को बिना बताए उनकी बाइक लेके घर से बाहर निकल गया, और मैं बाइक इतनी तेज चला रहा था कि सामने से एकदम से ट्रक आ गया। तो ट्रक को बचाने के चक्कर में मैंने एकदम से लेफ्ट ले लिया। तो जैसे ही लेफ्ट लिया, सामने से गाड़ी आ रही थी, और गाड़ी में जाके बाइक लगी और बाइक पूरी खत्म हो गई।
5: बेबी, बाइक को छोड़ो, आप बताओ आप बचे थे कि नहीं?
6: तब तो बच गया था, लगता है अब नहीं बचूंगा।

कानू देश मिलब दो मेगा हर्ट्स पर ये तो हाँ सारे अंदर अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला कने मैं शशि हाजिर हुई हूँ कार्यक्रम लेकरी माटी दी महक तशो तो माटी दी महक कार्यक्रम दे सफर च तो हाँ सारे अंदर ही प्यार भरा स्वागत है, प्यार भरा नमस्ते है। इसी नमस्ते कने हाँ अपने कार्यक्रम दी जेड़ा शुरुआत है से जरूर करी थी है कने तो हाँ सारे भी शुरुआत कन्ने जुड़ी सकदे जुड़ने वास्ते जेड़ा हंदा नंबर है से तुहां तक पहुँचाई दे ना क्योंकि नंबर तुहां तक पुजेगा ताई तो तुहां इस नंबर पर कॉल करी सकदे या टेक्स्ट मैसेज करी सकदे या व्हाट्सएप मैसेज जेड़ा है से जरूर करी सकदे। नंबर जेड़ा है से जल्दी जल्दी नोट करा, नंबर है 7018117091। नंबर तुहां तक पहुँचाई ते कने बाकी जेड़ा काम मैं तो हुंदा है तां जरूर हाँ अपने कार्यक्रम दी जिहड़ा शुरुआत है से करदे ना क्योंकि शुरुआत एक प्यारे दे गीत कन्ने होई आ क्योंकि ये सफर जिहड़ा है से तुहां तक रहना है 2 ते 3 बजे तक। तो जरूर जल्दी जल्दी तुहां सारे भी इस कार्यक्रम दे सफर च हाँ कन्ने जुड़िया कन्ने हाँ कन्ने गलबात जिहड़ा है से जरूर करा। शुरुआत करदे ना इस गीत कन्ने तुहां सारे भी इंजॉय करा।

0: ये तो हाँ सारे दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला तो हाँ सारे ही सुनिया ये प्यारा दिया गीत प्यारी दई शुरुआत तो जरूर शुरुआत अहाँ करी थी है इस गीत कन्ने कन्ने अहाँ दे जेड़ा पहली श्रोता न से अहाँ कन्ने जुड़ चुके हैं न कर दें तिना कन्ने गल बात। हेलो
1: हाँ जी, नमस्कार जी मैडम जी।
0: नमस्ते जी, स्वागत है जी तुहां दा रेडियो गुंजन धर्मशाला च। ठीक ठाक है न?
1: हाँ जी, मैं अखनोटे से थी
0: जी।
1: रिंकू संजय रवि गुड्डू रिंकू
0: जी
1: रिम बोल रही हूँ जी।
0: जी जी तक दिया मौसम है जी तो हंदी साइड
1: मौसम ता धुप लग गई
0: जी। अच्छा धुप लग गई हां
1: जी।
0: तो आज कना जेड़ा दिन ने दिने दी शुरुआत कदे गई कना बाकी जेड़ा दिन ने से कदे आ की चलया तो हुंदा। हेलो
1: हां जी, मैडम जी आवाज थोड़ी जरा कटोई हो दी
0: जी। उन ठीक हो दी आवाज?
1: हां जी
0: जी जी। तो मैं ये बोला दी कि दिने दी जेड़ा शुरुआत है से किस तरीके ने हुई जी कने आज कना जेड़ा दिन ने से कदे आ चलया तो हुंदा।
1: शुरुआत तो मैडम जी ठीक हो बढ़िया
0: जी बढ़िया ही चाहिए ना जी। जी जी
1: दिन भी अद्धा तो ठीक निकली जी निकली
0: जी जी जी। तो आज तू हाँ कुंदिया जिड़ा गीत ऐसे सुनना पसंद करेगी जी?
1: ए जालियां बुनी लिया जाल
0: जी। अच्छा जालियां बुनी लिया जाल, जाले बिच रोवे मछली ना जी?
1: हाँ जी हाँ जी हाँ जी
0: जी जी। जरूर ये फरमाइश तुह तक पहुँचा दें जी, जुड़ने वास्ते बड़ा बड़ा धन्यवाद जी तुहंदा।
1: तुहंदा भी धन्यवाद
0: जी। तो शुरू तो तुह सारे इस वक्त कार्यक्रम सुना देना अपनी रेडियो दो शशि कन्ने। तुह सारे भी इस कार्यक्रम दे सफर चाह कन्ने जुड़ी सकते कन्ने हाँ कन्ने गलबात जिड़े से जरूर करी सकते। अज कने दिने दी गलबात करिए तो 24 अगस्त 2026 दा ये दिन जिड़े से तुहां जरूर इंजॉय करा दे होने न कने सी कन्ने त्योहारां दी गल करिए तो हर दिन या कोई ना कोई जिड़ा त्योहार है से अहां मनांदे भी हैं कने आज जिड़ा सावन दा लास्ट सोमवार है तो तुहां जिड़े से व्रत भी रखे होने कने श्रद्धा भाव ने जिड़ा पूजा पाठ है से भी करा दे होने न। तो जरूर ये त्यौहार जेड़ा ना कुथी अहां जो क्या सिखांदे न तो आज अहां जेड़ा गलबात करनी है से दे उपर ही करनी है कि त्यौहारां दा जेड़ा महत्व है से अहां दे जीवन च कितना की है। ये त्यौहार ही जेड़ा है से अहां जो ये दसदे न कि अहां आज कने दौर दी गल करिए तो अहां ले समय जेड़ा है से नहीं है। अहां हमेशा ये सोची करी चलदे न कि अहां जेड़ा है से समय नहीं है या अहां हर कुसी जो यही बोलते न कि अजकना जेड़ा दिन है या जेड़ा आने वाला समय है या त्योहारां दी अहां गल करिए तो कई बार अहां आपस च गलबात करते न तो जेड़ा भाई बहन हैं या कोई भी अहां दे रिश्तेदार हैं अहां तिना ने गलबात करते न तो कई बार अहां ये भी बोलते न कि अहां जेड़ा समय नहीं है। तो शो तो समय जेड़ा है से निकालना अहां वास्ते बड़ा ही ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि समय जेड़ा है से अहां दी जिंदगी च बड़ी अहम भूमिका अदा करता है कने इसी कन्ने अहां अपने कार्यक्रम दा जेड़ा सफर है सभी अग्गे बढ़ाना है कने अगली जेड़ा फरमाइश अहां तक पहुंची होवे ते हजो भी जरूर तुहां तक पहुंचांदे न से व्हाट्सएप दे माध्यम ने अहां तक पहुंची होवे कने तिना दा नाम है ओम प्रकाश जी कने से रहने वाले न अरनी ते तो जरूर तिना तक अहां ये भजन ये फरमाइश पहुंचा देना तुहां सारे भी इंजॉय करा।

श्रोताओं तो सारे सुनिया ये गीत ये भजन फिर ते हाँ वापिस जड़े से अपनी गलबात उपर आई हो न तो हाँ सारे भी जरूर मेरी जड़ा गलबात कने जुड़ी होने न कने अगर नहीं जुड़े हो न तो जल्दी जल्दी जुड़िया कने अपना अपना रेडियो सेट जड़े से ऑन करी लिया क्योंकि इंतजार तो जो रेंदे कि कलू दिया दो बजते न पर कार्यक्रम च दो बजी करी 19 मिनट जड़ा न से न तो इसी कने तो सारे भी इस कार्यक्रम दे सफर चाह कने जुड़ी सकते दर्शो तो गलबात आज हाँ जड़ा करा देन से करा देन कि त्योहारा दा क्या महत्व है। त्योहार जड़ा न से जो हमेशा कुछ नया जड़ा एहसास है से देख करी जानते हैं क्योंकि त्योहार ही जड़ा न से जो आपस जहाँ का जड़ा भाईचारा है से या जड़ा कई बार होता ना कि अगर अहल समय नहीं है कने कोई भी त्यौहार जड़े से ओदा है या ओने आला है कने वैसे भी त्यौहार जड़े से रक्षाबंधन का जड़ा त्यौहार है से ओदा है तो हम सारे जो भी बेसब्री ते जड़ा इंतजार है कि कालू दिया जड़ा रक्षाबंधन का त्यौहार है कने अहाँ तिस जो बड़े ही धूमधाम ने जड़े से बनाना है कने जितनी भी भाई बहन हैं तिना वास्ते तो एक खास पल है खास लम्हा अहाँ बोली सकते क्योंकि त्यौहार जड़ा न से अहाँ जो हमेशा एक ही दुए ने जोड़ी करी रख देना या अहाँ जो अपनी संस्कृति कन्ने जोड़ी करी रख देना या अहाँ दे जड़ा रीति रिवाज हैं तिना की गल करिए या अहाँ दे जड़ा परंपराएं न तिना कन्ने हमेशा अहाँ जो जोड़ी करी रख देना। पर कई बार होंगे ना कि अहाँ जड़ा से समय तालू निकाल लेंदे न पर इना हाँ बोल कि अहाँ इन्ना हाँ हमेशा यही बोलते हैं कि अहल जरा समय है से नहीं है

तुहां बोला दिन रेडियो गुंजन धर्मशाला ते अने तुहां सारे इस वक्त कार्यक्रम सुना दिन अपनी रेडियो दो शशि कन्ने तशो तो कार्यक्रम चाहां जिड़ा गलबात करा दिन से करा दिन त्योहारां दा महत्व कन्ने अगर मौसम उपर नज़र दौड़ा दिन तो मौसम भी अपनी जिड़ा करवट है से जरूर बदला दे तो मौसम के अनुसार चलना भी यहाँ वास्ते जरूरी है कन्ने अपना जिड़ा ख्याल है से रखना भी जरूरी है क्योंकि मौसम के अनुसार अगर अहाँ चलिए ताई अहाँ अपना जिड़ा ख्याल है से रखी सकते तो बारिश का जिड़ा दौर है कई बार होंदा ना कि अहाँ घूमने फिरने का जिड़ा प्लान है से भी बनाया होंदा पर कई बार अहाँ मौसम की ओर जिड़ा से ध्यान नहीं दिंदे न कने तो मौसम की ओर ध्यान देना भी जरूरी है कने ताई जिड़ा से घरे ते बाहर निकलने क्योंकि कई बार होंदा ना कि मौसम जिड़ा से यहाँ जो बड़ी सारी जिड़ा दस्तक है से देना शुरू हो जाता है तो इसी कने गलबात अहाँ दी जिड़ा चली हो है से चली हो है त्योहारां दा महत्व अज कने दौर दी गल करिए तो हमेशा अहाँ क्या करदे न जलो अहाँ दिने दी शुरुआत करदे न तो सबसे पहले अहाँ क्या अपने आसपास ढूंढते न या क्या अहाँ सोचते न कि अगर अहाँ से चीज़ अहाँ जो ना मिले तो अहाँ कुथी ना कुथी परेशान जड़े से ज़रूर आते न थोड़ा दिया तो हाँ भी नज़र दौड़ा कि अहाँ क्या जड़ा ऐसी चीज़ है तिहा जो ढूंढते न क्योंकि हर दिन दिने दी शुरुआत ही अहाँ तिस कन्ने करदे न समझी होने तो हाँ मोबाइल फ़ोन कन्ने क्योंकि हर कोई इतना ज़्यादा मोबाइल फ़ोन दा आदि है या मोबाइल फ़ोन जितना ज़्यादा दिने दी शुरुआत ही अहाँ पहले सबसे पहले मोबाइल फ़ोन चाहिए फिर ही जिड़ा बाकी काम मन से अहाँ दे चलते न तो प्यार भावना बिल्कुल ख़त्म है कने आए दिन तो हाँ कोई ना कोई जड़ा न्यूज़ है से सुनते रहते न मोबाइल फ़ोन दे पिछे या मोबाइल फ़ोन दी जिद पर दशो तो मोबाइल फ़ोन जड़े से ठीक है फ़ायदे भी बड़े न नुकसान भी बड़े न पर मोबाइल फ़ोन दा हाँ किस तरीके ने यूज़ करा देन या अपनी जिद जो अगे रखी गई यहाँ कुछ ही ना कुछ अपने पेरेंट्स का जड़ा अपमान जड़ा है से ज़रूर करा देना या बच्चा छोटा है तालू ते तो हाँ बच्चे जो जड़ा से समझा देना या कई बार होंगे ना कि यहाँ अपने जड़ा काम मन से करा देना कने काम दे चक्कर चाहाँ कुछ ना कुछ मोबाइल फ़ोन जड़ा से बच्चे ल दे देना तो तिथु अहाँ दी जड़ा गलती है से बिल्कुल है तो शो तो गलबात अहाँ दी जड़ा त्योहारां दी चली हुए कने रक्षाबंधन का जिहड़ा त्यौहार है सभी ओद है तो तुह सारे जो ही एडवांस ही रक्षाबंधन दिया बड़िया सारिया मुबारक हो शुभकामनाएं हो क्योंकि त्यौहार जिहड़ा ने से हमेशा अहाँ जो एक दूए ने जोड़ी के रखते न कने जिहड़ा भाई बहन तिना वास्ते ताई स्पेशल दिन है खास दिन है कने तुह सारे भी इंतजार करा दौने कने जिहड़ा खरीदारी है बोली सकते हाँ क्योंकि शुरू हुई है बाजारा की अहाँ गल करिए रौनक वाला जिहड़ा माहौल है से शुरू हुई है कने रौनक वाला जिहड़ा माहौल है से कुथी ना कुथी जलो अहाँ दिखते न तो चेहरे पर जिहड़ा स्माइल है से जरूर आई जाती है तो तुहांदे चेहरे पर भी जरूर स्माइल जिहड़ा से आई होनी है कने तुहां भी यही सोच विचार करा दे होने ने कि हुण कुण दे जिहड़ा रखड़ी है से अहाँ खरीदन या खरीदने की जिहड़ा तैयारी है से करा दे होने न या त्यौहारां दा जिहड़ा इंतजार है से जरूर करा दे होने न कने भाई भी यही सोच पर होना है कि कालू दी या मैं अपने घर है पहुँच दे या क्योंकि इंतजार तो सारे जो होंदा चाहे बहन है चाहे भाई है तो ये जिहड़ा त्यौहार हैं से कुथी ना कुथी हाँ जो एक ही दूए ने हमेशा जोड़ी के रखते हैं त्यौहार अहाँ जो ये सिखाते न कि अहाँ कितना कि आपस प्रेम भाव रखते न या कोई भी रिश्ते से हमेशा प्यार भावना ने ही चलता है से होना जरूरी है प्यार भावना एक दूए अंदर होना जरूरी है कने अगर अहाँ हमेशा प्यार भावना नहीं रखते न या बड़ों का मान सम्मान नहीं करते न या अपने जिहड़ा संस्कार सभी
हाँ जो यही सिखाते हैं कि यहाँ किस प्रकार अपना जेड़ा व्यवहार है से रखते हैं। तो शो तो सारे भी इस कार्यक्रम के सफर चाह कहने जुड़ी सकते क्योंकि इस कार्यक्रम की जेड़ा सफर की रफ्तार है सभी धीरे धीरे अगे बढ़ा दी है। तो सारे भी जल्दी जल्दी इस कार्यक्रम कने जुड़िया जुड़ने वास्ते जेड़ा अहां दा नंबर है से एक बारी फिर दे तुहां तक पहुँचाइंदे न नंबर है 701-811-7091 नंबर तुहां तक पहुँचाई तय कने अहां भी अपने कार्यक्रम दे सफर जो अगे बढ़ाते न कने तुहां जो अगली फरमाइश की ओर लेकर चलते न सुनते नहीं सब प्यारी दिया फरमाइशा जो प्यारे दे भजने जो तो सारे भी इंजॉय करा।

0: तशुतों तो सारे सुनिया ये प्यारा दिया भजन। इस भजन की फरमाई शाह जो आई हुए पवना जी की कने से रहने आए न कांगड़े ते कने अगले जड़ा श्रोता ने सभी जरूर अहाँ कने जुड़े थे पर डिसकनेक्टेड हो तशुतों फिर तो तुहां जड़ा कोशिश है से जरूर करी सकते कने श्रोता जड़ा ने से कॉल करा दे न कर दिन तिना कने गल बात। हेलो
1: हेलो
0: हेलो नमस्ते जी। हेलो
1: हेलो जी
0: जी स्वागत है जी तो हंदा रेडियो गुंजन धर्मशाला च। ठीक ठाक है ना?
1: ठीक ठाक जी। हां होंदा तो ठीक ठाक
0: जी। हां बिल्कुल ठीक ठाक है जी। तोहा कुथु दे रहने वाले ने कने तोहंदा ना के जी?
1: मैं सुकड़े ते बोलदा भी माया
0: जी। माया जी सुकड़े दा मौसम कदे है इस साइन इस टाइम जी? मौसम कदे है?
1: मौसम कभी धूप निकला दी कभी बदल आई आला
0: जी। अच्छा कभी धूप निकली पौधी तो कभी बदल आई आता ना जी?
1: हां जी
0: जी। ता माया जी गल बात आहा करा दे न कि त्योहारा दा जेड़ा महत्व है से कितना की है? हेलो
1: आवाज क्लियर नहीं हो रही है ना?
0: जी जी उन मेरी आवाज जेड़ा से क्लियर हो दी तो मत। हेलो
1: थोड़ी आवाज क्लियर नहीं आ रही
0: जी। बिल्कुल नहीं हो दी जी जी। मैं बोला दी कि यहाँ जिड़ा आज गल बात करा दिन से करा दिन त्योहारा दा महत्व जितने भी यहाँ दे त्योहार
1: गल बात तो थोड़ी मुझे अच्छी समझ आउंदी कोई ये नहीं पर
0: जी जी
1: मैं कभी आज आ रही गल बात तो मैं समझ दी थोड़ी
0: जी जी।
1: अच्छी गल
0: जी जी जी। अच्छा फोन ने नेटवर्क इशू होना ना जी क्योंकि नेटवर्क भी कई बार नहीं होता ना जी।
1: चलो सिग्नल की गल है कि क्या हो आवाज निकले रहो जी। आवाज दसमा दिया पर गल निकले तो मुझे वाली
0: जी जी ना कि रक्षाबंधन होता ना जी।
1: हां जी हां जी
0: हां जी जी। त्योहारा दी यहां गल करा दे आज।
1: हां जी
0: जी। तो सही कि त्योहार जेड़ा ने सहां दे जीवन च कितना महत्व रख दे ना जी।
1: बड़े अच्छे साले बाद त्योहार चले होंगे बड़े अच्छे बड़े खुशियां दे किन्ने बेचारे खुशियां दे ना किन्ने
0: जी
1: दुखे दे भी है ना
0: जी जी। चलो जिंदगी दा दौर ही है ना जी।
1: हां जी हां जी हां जी।
0: कदी दुख है तो कदी सुख है ना जी जी। माया जी आज तुहा कुंदिया गीत सुनना पसंद करके
1: मुझे सुनाए जी। गोरा प्यारी लाडली
0: जी। गोरा प्यारी लाडली है
1: जी।
0: जरूर ये गीत तुहा तक पहुंचा दे जी। चुनने वास्ते बड़ा बड़ा धन्यवाद जी तुहा दा
1: जी। धन्यवाद जी तुहाडा भी बड़ा बड़ा धन्यवाद
0: जी। तशुतों हाँ फिर ते अपने कार्यक्रम दे सफर जो अगे बढ़ाते न कने तुह जो लेकर चलते न अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश अहाँ जो अहाँ तक पहुँची हुए पठियार ते कने तिना दा ना वे जीतो जी तो जरूर तिना तक अहाँ ये फरमाइश पहुँचा देन।

ये तो हाँ सार यदा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला दर्शकों फिर ते हाँ इस गीत के बाद अपनी गलबात ऊपर वापिस जड़े से जरूर आई न कने तो हाँ गलबात भी इंजॉय करा देने न कने जेड़ा तो हाँ दिया फरमाइशा न तिना जो भी इंजॉय जड़े से करा देने न कने अपना जेड़ा काम कार है सभी करा देने न क्योंकि काम कार करना भी यहाँ वास्ते जरूरी है। काम कार अहाँ करते रहते न तहाँ का जेड़ा मन है सभी लगे रहता कने रेडियो कने तो हाँ दिल लगे होगा ताता और भी अच्छी गल है क्योंकि काम भी जड़े से रेडियो सुना देना तो काम भी अहाँ का चले रहता कने इसी कने अहाँ अपने काम भी करते रहते कने मनोरंजन कने भी जुड़े रहते कने सबसे बड़ी जड़ा खास गल है सह है कि तुम अपन जड़ा प्यारिया प्यारिया फरमाइशा न सभी जरूर इस कार्यक्रम के सफर च सुनते हैं तो समय जड़ा इस अहम जो बार बार हूँ यही इशारा करा दे कि कार्यक्रम के सफर जो अगे जड़ा इसे बढ़ाई लिया तो जरूर अगे अहाँ बढ़ना है पर गलबात जड़ा इसे अहाँ करा दे त्यौहार की तो जरूर समाज एकता जड़ा इसे अहम जो ये जड़ा त्यौहार है अहम दे रंग भरे जड़ा त्यौहार है हर त्यौहार अहम जो यही सिखाता है कि जड़ा समाज एकता है या अहम की जड़ा संस्कृति है या बुराई पर अच्छाई की जड़ा जीत है क्योंकि हर त्यौहार अहम जो कोई ना कोई संदेश जड़ा इसे जरूर देखी जाता है कने आर्थिक मजबूती ये त्यौहार जड़ा न से अहम के जीवन च रौनक रौनक वाला जड़ा माहौल है से बनाई देन तो जरूर इन त्यौहारा जो इंजॉय करा कने जिंदगी का जड़ा लम्हा है या जिंदगी का जड़ा सफर है उसको भी जरूर इंजॉय करा कल पर निर्भर ना विकरी अजकना जड़ा दिन है उसको जरूर इंजॉय करा अपने कने अपने जो जड़ा प्यार भावना या मान सम्मान से जरूर दिया क्योंकि समय जड़ा से हमेशा चलता रहता है समय जड़ा इसे किसी वास्ते नहीं रुकता पर हाँ समय की जड़ा कदर है या रिश्तों की जड़ा कदर है उस जो जरूर समझी सकते से यहाँ पर निर्भर करता है तो जरूर इसी प्रकार हाँ अपने कार्यक्रम के सफर जो भी अगर बढ़ाते न कने अगली जड़ा फरमाइश है से तुह तक पहुँचाते न ये फरमाइश अह तक पहुँची हुए व्हाट्सएप के माध्यम ने तिना का नाम है राधा कश्यप जी कने से रहने वाले न कांगड़ा से

92.2 मेगाहर्ट्स पर ये तोहा सारे दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला तो सारे इस वक्त कार्यक्रम सुना दे थे अपनी रेडियो दो शशि कन्ने तशोता तो सारे जो ही पता है कि इस कार्यक्रम दा जेड़ा सफ़र है से तोह तक रेंद है 2 से 3 बजे तक तो उन्हें ये सफ़र हाँ जो बोला था कि तो अनुमति जेड़ा है से ज़रूर ले लिया अनुमति भी जरूर लेनी है जाते जाते ये फरमाइश भी तुह तक पहुँचानी है। ये फरमाइश अह जो आई हुए सुकड़े ते कने तिना दा ना वे माया जी तो माया जी तक आएगी ते फरमाइश पहुँचा देन कने जितने भी बाकी श्रोता न तिना तक भी तो हमेशा खुश रहा कने जेड़ा त्यौहार हैं तिना दा जेड़ा महत्व है सभी जरूर समझा कने अपने जो जेड़ा समय है सभी जरूर दिया।

0: गोरिया
1: गोरिया आकर गोरिया गोरिया आकर आ
0: गोरिया
2: हटो हटो हटो हटो एले गोरिया।
3: प्लास्टिक गोरिया जैसे नादान जानवरों की जान ले सकता है। आप भी छोटी सी शुरुआत कीजिए, प्लास्टिक को अलग डस्टबिन में डाल के शुरू करें एक छोटी सी अच्छाई।
4: बैठिए मैडम बैठिए। देखो इनको, इनकी नाक देखो, बिल्कुल अपने पिताजी से मिलती है। देखो इसकी आंखें देखो। पता है तेरे पिताजी ने हमें हंसाया है, रुलाया है, मनोरंजन दिया है। मतलब कौन सा गाना था, एक चतुर नार बड़ी होशियार है, क्या गाना था वो।
5: अरे बेटो तू यहाँ क्या कर रहा है, और ये दोनों लड़कियों कौन है?
4: लेकिन भाई साहब आप कौन है?
5: जी मैं इसका बाप हूँ।
4: आप इसके बाप हूँ? महमूद का बेटा नहीं तू? अरे हास्य कलाकार महमूद, ये तेरे बाप का रोड नहीं है?
6: जी नहीं।
4: तो फिर बिना हेलमेट के दो लड़कियों को बिठा के रूम रूम करते शर्म नहीं आती तुम्हें?
1: तो कटेगा भैया तेरे,
4: और अभी उतर के लेके जाओ आपकी और सबकी।

नमस्कार दोस्तों, प्रेम विश्वास और भाई बहन के अटूट रिश्ते का ये पावन पर्व रक्षाबंधन आप सभी के जीवन में ढेर सारी खुशियाँ लेकर आ रहा है। राखी का ये पवित्र धागा सिर्फ कलाई पर बंधा एक धागा नहीं, बल्कि प्यार, विश्वास, सुरक्षा और जीवन भर साथ निभाने के वचन का प्रतीक है।

रिश्तों में मिठास रहे, अपनों का साथ रहे। रिश्तों में मिठास रहे, अपनों का साथ रहे। हर कलाई पर सजे प्यार का धागा और हर चेहरे पर मुस्कान रहे। इन्हीं खूबसूरत भावनाओं के साथ रेडियो वंचन धर्मशाला की ओर से आ रहे।

0: नमस्ते भैया, कैसे हो भाभी जी?
1: अभी शादी का लहंगा सिलवाना था।
0: हाँ हाँ, बहुत सारे डिजाइन है, ये देखिए कौन सा स्टाइल चाहिए आपको। ये देखिए, पिछले महीने मिश्रा जी की बेटी की शादी के लिए सिया था।
1: ये तो स्लीवलेस है, हमें फुल स्लीव्स वाला चाहिए, थोड़ा सिंपल दिखाइए।
0: सिंपल में तो फिर, अरे पर किसके लिए बनाना है?
1: चुन्नी के लिए।
0: ये अपनी चुन्नी?
1: हाँ, अच्छा रिश्ता मिला है
0: बेटा। चुन्नी, कितने साल के हो आप?

0: अगले महीने 12 साल की हो जाएगी। पंडित जी ने इसी इतवार का मुहूर्त निकाला है तो हो तो जाएगा ना तब तक।
1: अच्छा 12 साल की है तो आपको प्रॉब्लम नहीं है?
0: नहीं, क्यों?
1: और आपको भी प्रॉब्लम नहीं है? पर मुझे प्रॉब्लम है, मैं नहीं सीऊंगा।
0: चलो छोड़ो उसे, किसी और से सिलवा लेंगे।
1: अरे भैया जी एक मिनट, अरे बिरजू वो कौन सा नंबर है निकलवाओ तो जरा।
2: मास्टर जी टोल फ्री नंबर है 1098, कभी भी कॉल करके कंप्लेन कर सकते हैं।
1: ना हम सीएंगे ना किसी को सीने देंगे।
3: जीवन की हर उलझन का हल मिलेगा मित्र, बस अपने मन को थोड़ा शांत करके देखो। जो तुम्हारा है वो कहीं नहीं जाएगा, और जो चला गया वो कभी तुम्हारा था ही नहीं। हर परिस्थिति में मुस्कुराना सीखो, क्योंकि मुस्कान ही हर दर्द की सबसे बड़ी दवा है। भरोसा उस ईश्वर पर पूरा रखो, वो तुम्हें वही देगा जो तुम्हारे लिए सही है। तुम्हारी सरलता ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है, और तुम्हारी खामोशी में ही ईश्वर का वास।
4: मम्मी जी क्या कह रहे हैं, बचपन में आपका बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ था?
5: हाँ, जब मैं 12 साल का था ना, तो मैं पापा को बिना बताए उनकी बाइक लेके घर से बाहर निकल गया, और मैं बाइक इतनी तेज चला रहा था कि सामने से एकदम से ट्रक आ गया। तो ट्रक को बचाने के चक्कर में मैंने एकदम से लेफ्ट ले लिया। जैसे ही लेफ्ट लिया सामने से गाड़ी आ रही थी, और गाड़ी में जाके बाइक लगी और बाइक पूरी खत्म हो गई।
4: बेबी बाइक को छोड़ो, आप बताओ आप बचे थे कि नहीं?
5: तब तो बच गया था, लगता है अब नहीं बचूंगा।

मेरे प्यारे दोस्तों, 91.2 मेगाहर्ट्ज रेडियो गुंजन धर्मशाला से शुरू हो गया है कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने। मैं आज के इस कार्यक्रम में आपके साथ हूँ, आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया। तो लीजिए कार्यक्रम का पहला गीत प्रस्तुत करते हैं आपकी नजर।

गीत सुहाने नई पुरानी, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं हूँ आपके साथ आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया।

श्रोताओं, रेडियो गुंजन धर्मशाला से गीत सुहाने नए पुराने कार्यक्रम का ये सफर हमारा और आपका यूं ही बना रहे, तो लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम में एक और मधुर सा गीत।

91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ आप बने हुए हैं और सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने अपनी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया के साथ।

श्रोताओं, ये है रेडियो गुंजन धर्मशाला और कार्यक्रम है गीत सुहाने नए पुराने। फ्रीक्वेंसी 91.2 एफएम पर आप हैं और इस कार्यक्रम में आपकी हम सफर हूँ मैं, आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया। लीजिए कार्यक्रम में अगला नगमा आपके रेडियो सेट्स पर।

गीत सुहाने नई पुरानी, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं हूँ आपके साथ आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया।

श्रोताओं, रेडियो गुंजन धर्मशाला से गीत सुहाने नए पुराने कार्यक्रम का ये सफर हमारा और आपका यूं ही बना रहे, तो लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम में एक और मधुर सा गीत।

91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ आप बने हुए हैं और सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने अपनी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया के साथ।

श्रोताओं, ये है रेडियो गुंजन धर्मशाला और कार्यक्रम है गीत सुहाने नई पुरानी। फ्रीक्वेंसी 91.2 एफएम पर आप हैं और इस कार्यक्रम में आपकी हम सफर हूँ मैं, आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया। लीजिए कार्यक्रम में अगला नगमा आपके रेडियो सेट्स पर।

0: गोरिया
1: गोरिया
2: प्लास्टिक गोरिया जैसे नादान जानवरों की जान ले सकता है। आप भी छोटी सी शुरुआत कीजिए, प्लास्टिक को अलग डस्टबिन में डाल के शुरू करें एक छोटी सी अच्छाई।
3: बैठिए मैडम बैठिए। अरे देखो इनको, इनकी नाक देखो, बिल्कुल अपने पिताजी से मिलती है। देखो इसकी आंखें देखो। पता है तेरे पिताजी ने हमें हंसाया है, रुलाया है, मनोरंजन दिया है। मतलब कौन सा गाना था, एक चतुर नार बड़ी होशियार है, क्या गाना था वो।
4: अरे बेटो तू यहाँ क्या कर रहा है, और ये दोनों लड़कियों कौन है?
3: देखिए भाई साहब आप कौन है?
4: जी मैं इसका बाप हूँ।
3: आप इसके बाप हूँ? महमूद का बेटा नहीं तू? अरे हास्य कलाकार महमूद, ये तेरे बाप का रोड नहीं है?
5: जी नहीं।
3: तो फिर बिना हेलमेट के दो लड़कियों को बिठा के रूम रूम करते शर्म नहीं आती तुम्हें?
1: चलान तो कटेगा भैया तेरा,
3: और अभी उतर के लेके जाओ। आपकी और सबकी सुरक्षा के लिए कृपया ट्रैफिक नियम का पालन कीजिए, क्योंकि
5: रोड किसी के बाप का नहीं।
3: शाबाश, सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा।
6: नमस्कार दोस्तों, प्रेम विश्वास और भाई बहन के अटूट रिश्ते का ये पावन पर्व रक्षाबंधन आप सभी के जीवन में ढेर सारी खुशियां लेकर आ रहा है। राखी का ये पवित्र धागा सिर्फ कलाई पर बंधा एक धागा नहीं, बल्कि प्यार विश्वास सुरक्षा और जीवन भर साथ निभाने के वचन का प्रतीक है।

रिश्तों में मिठास रहे, अपनों का साथ रहे। रिश्तों में मिठास रहे, अपनों का साथ रहे। हर कलाई पर सजे प्यार का धागा और हर चेहरे पर मुस्कान रहे। इन्हीं खूबसूरत भावनाओं के साथ रेडियो मंचन धर्मशाला की ओर से।

0: नमस्ते भैया, कैसे हो भाभी जी?
1: अभी शादी का लहंगा सिलवाना था।
0: हाँ हाँ, बहुत सारे डिजाइन है, ये देखिए। कौन सा स्टाइल चाहिए आपको? ये देखिए, पिछले महीने मिश्रा जी की बेटी की शादी के लिए सिया था।
1: ये तो स्लीवलेस है, हमें फुल स्लीव्स वाला चाहिए। थोड़ा सिंपल दिखाइए।
0: सिंपल में तो फिर, अरे पर किसके लिए बनाना है?
1: चुन्नी के लिए।
0: ये अपनी चुन्नी?
1: हाँ, अच्छा रिश्ता मिला है।
0: बेटा चुन्नी, कितने साल के हो आप?
2: अगले महीने 12 साल की हो जाएगी। पंडित जी ने इसी इतवार का मुहूर्त निकाला है, तो हो तो जाएगा ना तब तक।
0: अच्छा, 12 साल की है तो आपको प्रॉब्लम नहीं है?
2: नहीं, क्यों?
0: और आपको भी प्रॉब्लम नहीं है? पर मुझे प्रॉब्लम है, मैं नहीं सीऊंगा।
2: चलो छोड़ो उसे, किसी और से सिलवा लेंगे।
0: अरे भैया जी, एक मिनट। अरे बिरजू, वो कौन सा नंबर है, निकलवाओ तो जरा।
3: मास्टर जी, टोल फ्री नंबर है 1098, कभी भी कॉल करके कंप्लेन कर सकते हैं।
0: ना हम सीएंगे, ना किसी को सीने देंगे।
4: जीवन की हर उलझन का हल मिलेगा मित्र, बस अपने मन को थोड़ा शांत करके देखो। जो तुम्हारा है वो कहीं नहीं जाएगा, और जो चला गया वो कभी तुम्हारा था ही नहीं। हर परिस्थिति में मुस्कुराना सीखो, क्योंकि मुस्कान ही हर दर्द की सबसे बड़ी दवा है। भरोसा उस ईश्वर पर पूरा रखो, वो तुम्हें वही देगा जो तुम्हारे लिए सही है। तुम्हारी सरलता ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है, और तुम्हारी खामोशी में ही ईश्वर का वास।
5: मम्मी जी क्या कह रहे हैं, बचपन में आपका बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ था।
6: हाँ, जब मैं 12 साल का था ना, तो मैं पापा को बिना बताए उनकी बाइक लेके घर से बाहर निकल गया, और मैं बाइक इतनी तेज चला रहा था कि सामने से एकदम से ट्रक आ गया। तो ट्रक को बचाने के चक्कर में मैंने एकदम से लेफ्ट ले लिया। तो जैसे ही लेफ्ट लिया, सामने से गाड़ी आ रही थी, और गाड़ी में जाके बाइक लगी और बाइक पूरी खत्म हो गई।
5: बेबी बाइक को छोड़ो, आप बताओ आप बचे थे कि नहीं?
6: तब तो बच गया था, लगता है अब नहीं बचूंगा।

0: नमस्कार श्रोताओं, 4 बजे गया इंतज़ार ख़त्म हुआ। 4 बजे के 1 मिनट के सो बुझे गए हैं और कार्यक्रम तंद अपना पसंदीदा कार्यक्रम आऊँ सचिन कपूर लेकर के असो हाजिर हुआ है तुंद सभी रेडियो सेट में 91.2 MHz पर। बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है सभी होने वाले रहा सभी श्रोतागण रहा। कैसे हैं तो सब उम्मीद भैया और है चाहते उनकी इन श्रोतागण सो ठीक रहन खड़े रहन है ना, तंदुरुस्त रहन हंस द खेलते रहन और ज़िंदगी की असो हंस द खेलते ही व्यतीत भुआ श्रोता हूँ ताही की असो मजा इंदा जिंदगी जीने रहा है ना। तो जनाब तो सब श्रोता सो की कनेक्ट हो सकते हैं 7018 8179 पर कॉल करे करे नंबर अक मुके फिर आऊँ शेयर करना चाहूँ तू होगी 7018 8179 पर तो है सब श्रोता ज़रूर कॉल कर सकते हैं और अपना पसंदीदा गीत होने सकते हैं। सो तो मिठी चाह चा पीना की सो छाड़ी दे मेरे साथ हो गया ना, चीनी की सो फिक्की नज़र इच्छू कर दे अब कजो की दुकान मंच सीधा 5 रुपये मतलब सोचा हूँ रेलटी बल्लू हूँ मतलब रेल ही बल्लू करता कि मैं ही किया सो 50 रुपये तक खरीद रही थी चीनी जन जन में जो टाइम लगता मतलब है ना कि कभी गरी मंगाई लैनी अगर खगाना बहुत हाँ चलो मेनली कभी बंदा नहीं तो हर को मतलब ये बंदा कि कहले वासन किया सो पवाई लेंदे था 70 रुपये चीनी पुछ गया तब चीनी फिक्की लगू कर दिया त्योहार कर खनगर खा फिक्के नजर इच्छू कर दिन फेस्टिवल सीजन थो पहले दाम बढ़ने थो उपभोक्ता माँ महंगाई रहा झटका की ऐसो लगो और आऊँ तो सो बोलना चाहता है जो बारले देश माँ सिंपल भाषा माँ बल्लू लड़ाई चल रही हीन इतने टाइम थो ठेर आसर की ऐसो 2027 में हो जाना लगी पैना हाशो तो चीनी रेले पैंट थो सीधा 70 रुपये किलो की ऐसो बुझ गए हा अब तो मनु सोचना तूने 70 रुपये रे चीनी देने सुहागे देने सोगी 20-50 रुपये पाना तूने मनु सोचना कि डोल 200 रुपये गाड़ा पाए कर देखो तुम गंदा है ना सीधा शॉर्टकट मैथड की असो बचाना है वह और यही बुना हा शो कसो कि 70 रुपये चीनी की असो बुच गया। हालांकि शायद मनु मतलब बहुत सारे इन श्रोता है ना कुछ मातड़ भाई भी कुछ मतलब तरह रहे लिसनर की सुना बंदा है ना अलग अलग तरह रहे लिसनर के अंसो हिन तो कस की सोचना रहा 70 रुपये भी तो गल आज कनी डेट में मतलब 1000-2000 रुपये किया मतलब 5000 रुपये किया 70 रुपये के मायने रख दे। हाँ मायने रख दे हिन जो इंसान महीने रहा 8000 रुपये कमंदा 10000 रुपये कमंदा या 12 कमंदा हा तसी मायने रख दे 70 रुपये क्योंकि तस अपना पूरा टब्बर के सो चलाना बंदा हा श्रोता हूँ और हर कसी मायने रख दे। मुझे लगता है हिमाचल प्रदेश में अगर विदाउट गवर्नमेंट जॉब रहा है गल कर हिमाचल प्रदेश में जाए तो है करा भी ले लिया था आई थिंक चलो 10-15 हज़ार मैक्सिमम बंदा के सो ये मतलब कमाई लेंदा है ना ता 15000 में भी घर चलाना बच्चे पालना परिवार जो संभालना थोड़ा करी मुश्किल के सो जरूर रहता है श्रोतो। बहरहाल तो सब श्रोता अह दसीता नंबर मंच कॉल कर सकते हैं इन दे पहले श्रोता असू की कनेक्टेड हैं पूछ दिन कौन बल्लू दिन और कड़ी थो बल्लू कर दिन। नमस्ते जी।
1: हेलो भाई नमस्ते।
0: नमस्ते जी नमस्ते।
1: क्या हाल चाल ना?
0: बहुत बढ़िया जी तो है बल्ले तुम क्या हाल चाल ना?
1: ठीक है भाई ठीक है।
0: अच्छा जी कौन बोल लंदन और कड़ी थो बोल लंदन?
1: हां शाहपुरा बोल रहे भाई जी।
0: अच्छा शाहपुरा हूं। कदे मौसम शाहपुरा रा अब जो?
1: अच्छा ठीक है भाई पूरा दिन धूप का देती है।
0: अच्छा खरा रहे हो ना जी? तो जद आई बरसात बरसाले जहने धूप बहुत दिल करदा कि क्या हुकाई क्या हुकना पाई है ना लाल चलगदा है ना जी।
1: हां जी आज कर लियो हुकन हटाण अपना सन।
0: अच्छा हुकन हकन कर लियो आज?
1: हां जी आज धूप अच्छी लग रही है मतलब।
0: अच्छा अच्छा हां जी तो दसो करदा ना कि रहंदा ना थोड़ा करे जो गरे बंदी महिलाएं दी माताएं बहनी है ना तिन्यो रहंदा कि क्या क्या हुकाई क्या हुकाई आज मतलब धूपा खरी धूपा था
1: बस जरा कर धूप निकली ना तो फिर लग बंदा है कुछ तो करना क्या करिए वो करिए सो करिए कम कर लिए।
0: हाँ बिल्कुल बिल्कुल। चलिए जी कुंडन गीत सुनना पसंद कर ले जी
1: भाई। मैं जो दादी माता का भजन किया
0: दादी माता का भजन सुनना
1: जी
0: ठीक है जी, ज़रूर होना ले।
1: ठीक है भाई, धन्यवाद।
0: धन्यवाद जी। श्रोता इंद अगले श्रोता भी असूगे कनेक्टेड हैं, ज़रूर कनेक्ट कर ले सभी जो है। लेकिन आइए जी आगाज कर लें दिन कार्यक्रम रे श्रोताओं। शंकर महाराज जी रहे गजो के सोमवार आज है ना। बिल्कुल। तो भोले शंकर जी रहे, बजना होगी क्या? आंसू आंसू आगाज करना है श्रोताओं कार्यक्रम रा। और भोलेनाथ जी री कृपा की आंसू आंसू पर सभी पर की आंसू जरूर बने रहे। और सब के ना सो सुखी रहन, तंदुरुस्त रहन, खुश रहन और खरे कर्म किया सो जरूर करना जी श्रोताओं। खरे कर्म ही किया सो अच्छे फल रहा, नतीजा किया सो बंदे इन श्रोताओं। अगर तो ये जिंदगी मंच खरे कर्म किया सो करें इन श्रोताओं तो सब कुछ फ्री तुंदा है ना। यानी कि खरे कर्मा करी करी किया सो सब कुछ अपना बचेगंदा है श्रोताओं। तो आइया बहरहाल आगाज कर लें दिन कार्यक्रम रहा श्रोताओं। ईशांत भारद्वाज जी इस भजना सोगी और वेड़ी गुंजन धर्मशाला तो सब हूणू कर देन 91.2 MHz पर लेके चलते श्रोताओं। तू सब भी जो आगाज कर देन

श्रोतों वीडी गुंजन धर्मशाला और आऊँ सचिन कपूर कार्यक्रम हिंदी अपनी गप्पा जो होस्ट करूँ करता हाँ तो सब श्रोता सुखी जरूर बने सकते हैं 7081807 09 पर नंबर आक मौके फिर आऊँ शेयर करनो हाँ 7081807 09 पर तुम्हें कॉल कर ही सकते हैं। तो श्रोतों चोर बड़े प्यो करते ले अपने घर जो कि असो संभाल कर ही जरूर रखा और घर में जो थोड़ा माता खजाना के तो है खटेरुआ तथियो भी संभाल कर ही जरूर रखा। अक व्यक्ति की असो हमेशा तुम्हें घर पर 24x7 के असो भूना छींदा हा। श्रोतों सोना चांदी सहित अक लख नकद वखू रथो सो भी चोर के असो ले करेगो। ज्वाली भी हालांकि ये घटना की ऐसा ज्वाली भी आ लेकिन ज्वाली कोई बहुत दूर नहीं आ है ना। इनके बहुत सारे सभी पहले श्रोता शाहपुर थो दासू के कनेक्ट हुए थे श्रोता तो सोचा कि कितने करी और इनके नगरोटा में भी इतनी सारी चोरी हुई बड़ोल श्याम नगर इतनी ज़्यादा चोरी की नसो बुच्चू कर दिन आए दिन ही और ये चोरी सो ही करूँ कर दिन। श्रोता कुछ नौजवान युवा के असोईती में शामिल हैं जो मेहनत ना करना चाहते हैं जो सिर्फ चाहते हैं कि पैसा की असोइया ही चली या सो और हज़ारों लाख रुपये की असोइया चली या सो कुछ एक और दो ही गल जो नशे व चंगुल में बुंदे युवा सो युवा के असो इस प्रकार की हरकत करते हैं और पेशे हो गए जो कि हेरा ना इड़ी इड़ी अगर चोरी बुच्चू कर दिन रेडे रेडे शोतों तो सोचा कि बंदा एनालाइज करू करता है ना ता तीनों पता बुंदा कसेरे घरे कौना कहने कौना जो नज़दीकी बुंदा सो जानदा बुंदा सब चीज़ा तो करकन अगर कह गया सो अपने घरे ही रेव करा शोतों। हालांकि ये ज्वाली री वारदात था जड़ी शातिर की सो की घर ताला तोड़ी करी गया सो वारदात जो अंजाम दितुरा हा सोना चांदी समेत गया सो अक लख रुपया भी लेकर गया सोचो चली छू रहा शो तो। बहरहाल कार्यक्रम हिंदी अपनी गप्पा चल रही बन रहे तो ये सब सचिन कपूर सोगी और कार्यक्रम होने कर दिन हिंदी अपनी गप्पा इसी सोगी श्रोता हूँ। अगर जहने भी इस प्रकार री जानकारी आए तो वो कि शेयर कर दें। अगली जानकारी जो हम शेयर करूँ करता हाँ कि गगल में दो ही कार चालक के बीच के सो विवाद और चाकू तो हमला करने वा आरोप शो तो पुलिस है कि सो दोनों पक्ष पर मामला दर्ज कर ही देता है और जांच की सो शुरू कर देती है शो तो पूरी जानकारियाँ है तुझो की ज़रूर शेयर कर ले साझा कर ले दस ले लेकिन अय्या इन अगले श्रोता री फरमाइश किए पहले सो कर लें देन पूरी बनी रही है तो ये सब बाहर जे सचिन कपूर सो की गूंज अपने पन रही और गूंज प्यारे प्यारे श्रोता रही।

0: श्रोतों कार्यक्रम हिंदी अपनी गप्पा चल रही हैं और तो सब सचिन कपूर सो की कार्यक्रम हूँ कर दिन वेड़ी गुंजन धर्मशाला मंच 91.2 मेगाहर्ट्ज पर ता लगी तपियाँ सजना दिया भाड़ा हो गीत तो हुनो हाई बो तो मेरे जंगला ढलिया रहो कार्यक्रम जो आगो बढ़ेंदे इन श्रोतों इसी गीत सोगी और इन श्रोतगण सोगी कनेक्टेड हैं तो सब भी कॉल कर सकते हैं 708-8-7-0-9 आक पर नंबर आग मौके फिर आऊँ तो वो गी शेयर करें श्रोतों 708-8-7-0-9 आग पर तो सब श्रोता कॉल कर सकते हैं और अपना पसंदीदा गीत की सो होने सकते हैं अपने क्षेत्र की जानकारी अब वो गी साझा कर सकते हैं श्रोतों एक गलारा विशेष ध्यान रहे खास ध्यान रहे कि जानकारी किया आसो साझा करने लायक जरूर भुआ बराल इंदे अगले श्रोता आसो की कनेक्टेड हैं उस दिन कौन बल्लू दिन नमस्ते जी।
1: नमस्ते जी क्या हाल है?
0: हाँ जी नमस्ते जी ठीक न तो बल्ला
1: बस बढ़िया
0: जी कौन बल्लू दिन और कड़ी थम बल्लू दिन
1: सनी बल्लू कर
0: सनी जी कड़ियों बल्लू दिन
1: पलनी हूँ पलनी हेडुआ
0: पलनी थम बल्लू दिन
1: ਸਲੇਟ ਗਦਾਮ ਹੂੰ
0: ਅੱਛਾ ਸਲੇਟ ਗਦਾਮ ਪਲਣੀ ਹੂੰ ਠੀਕ ਠਾਕ ਨੇ ਜੀ
1: ਇੱਕ ਵਧੀਆ
0: ਅੱਛਾ ਕਰੇ ਲਗਰਨ ਕੈਲੂਰਾ ਕਰਨਾ ਸਨੀ ਜੀ ਤੋਂ ਹੈ
1: ਆਉ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਧਾਰ
0: ਧਾਰਾ ਮੰਜ ਨਾ
1: ਹਾਂ ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਸਟਾਰ ਹੂੰ
0: ਅੱਛਾ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ
1: ਤਾਂ ਬਰਕਾ ਲਗੂਗੀ
0: ਸੰਜਾ ਚਲੀ ਨੇ ਤੋਂ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ
1: ਅੱਜ ਛੁੱਟੀ ਹੀ ਜਾਰ ਬੰਦ ਹੀ
0: आज छुट्टी थी
1: तुम बाहर है ना आज हम दिया यूली काम करता
0: अच्छा सनी जी हाँ जी हाँ जी वाइट कलर है पैचे
1: हाँ
0: क्या बात है सनी जी धारा मंच ने जिंदगी रे नजारे तो है लेव कर दे असली था
1: हाँ
0: जी सनी जी कौन दिन है आगे थोड़ा ना पहले अपनी फरमाइश दस दिया तो है
1: बस अपनी
0: सनी जी आवाज सुन दी घटे कर दिया
1: सिग्नल ना भाई
0: हाँ जी हाँ जी कुंडली गीत होना चाहते हैं भोले शंकर जी रा सोमवार
1: हेलो
0: हाँ जी हाँ जी
1: कोई भी गाना लाइव
0: ठीक है जी महाराज जी रा गीत होने दें भोले शंकर जी रा
1: ठीक है जी
0: ठीक है सनी जी धन्यवाद कॉल करने वास्ते और प्रकृति भी गोद में हिंद तो है बड़ा नजारा लियो कर दे हुणे
1: हाँ जी हाँ जी
0: ठीक है सनी जी धन्यवाद
1: एक
0: श्रोतों FM बैंड 91.2 MHz पर रेडियो गुंजन धर्मशाला तो है सभी ट्यून कर रो और एक कार्यक्रम हिंदी अपनी गप अगेन सो चल रही और वाकई मई श्रोतों धौलाधार पर्वत बिल्कुल सामने वाइजिंग स्टार इन द बिल्कुल सामने है श्रोतों और इडिया का नज़ारा ही बहुत अद्भुत है बहुत ही प्यारा है इडिया का वातावरण किया सो अपने आप में बहुत कुछ दर्शनदा है श्रोतों लेकिन इस वातावरण जो साफ सुथरा रखना भी किया सो इंदा ही दायित्व बनेगंदा है इंदा ही कर्तव्य किया सो बनता है श्रोतों की अपने वातावरण जो एज इट इज़ है रखन पल्यू तड़ी गंद के सो ना फैलान है ना प्लास्टिक ना फेंकने तड़ी ये कुछ जाने वे कुछ खाने व सामान लेकर गंद है तस प्रकार तड़ी किया सो गंद ना फैलान है ना धारा अंदर इंदे दने देवते भी कहना सो निवास कर देन है ना और धार तो अपने आप में खैर है पता है अहम है कि सो छड़ी भी दितुरी हीन लेकिन हल्ले भी बहुत सारी जगह के ना सो इन स्याणे कहते हैं कुछ नौजवान के ना सो भी कहते हैं सनी हटे नौजवान के ना सो भी गंदे रहते हैं है ना तो चलिए सनी जी तो है धौलाधार राइजिंग स्टार री धारा मंच हैं तो है तुसु तो गुजारिश ही करते हैं कि इति जो इं ही नीट एंड क्लीन और पर्यावरण भी गोद में तो है इन तो इस आशियाने जो कि असोइया ही तो है बरकरार रखन साफ सुथरा रखन और हरियाली भरा किया सो जरूर रखन तो चल दिन हगू और सनी जी ये फरमाइश करिया जो कि आज सोमवार और है सब भोले शंकर जी रे भक्त हैं भोलेनाथ जी रे भक्त हैं तो सनी जी री फरमाइश में हूँ लेते हैं श्रोतों ये प्यारा दया गीत बने रही है तो सब वेड़ी गुंजन धर्म शालास होगी और बिल्कुल बिल्कुल गीता री फरमाइश असू जरूर पूरी करने हाँ सनी जी री। लेकिन छोतों चलिए हुणन दिन तू सभी जो है प्यारे दिया गीत शंकर महाराज जी रा वेड़ी गुंजन धर्मशाला तो ये सभी ट्यून कर रहा और हिंदी अपनी गप इस समय बिल्कुल लाइव चल रही हैं। इस लाइव कार्यक्रम का आनंद तो है रेडी गुंजन 91.2 FM फ्रिक्वेंसी में भी लो करते हैं और ऐप रे जरिए कि आशोदों सो अपने फ़ोन ना मंच भी लो करते हैं। तो अभी किसी करी प्ले स्टोर में किसी करी कि आसो ऐप डाउनलोड कर सकते हैं गुंजन इंडिया रेडियो अगर तो है लिख दें तो ऐप डाउनलोड बुझ गाने। बहरहाल आइए जी सनी जी इंदे सलेड गोदाम पलन रहे निवासी हिन योल बाजार में अपने अपने अपनी सेवाएं कहने सो योल बाजार में मार्केटा मार्केट में दुकान हा तड़ी दिन दे हिन अपनी सेवाएं भरपूर दिन देन कमाल दिन देन बा कमाल दिन देन तैयारी फरमाइश में हुन देन शंकर महाराज जी रा एक गुणगान।

0: शतों दो सब जरूर जुड़ी सकते हैं 708-8-8-709 पर कॉल करे करे नंबर एक मौके फिरे 708-8-8-709 पर। ताइए जी सनी जी री फरमाइश में है भोले शंकर जी रा गुणगान किया सो हूँ और गुणगान किया सो सुनील राणा जी द्वारा किया सो इस भजन में अपनी प्यारी दी आवाज़ दे कर किया सो गुणगान कर रहा है शतों। बहरहाल कुछ एक खास जानकारी हा और भी हिन जो है तुस तक साझा करना चाहते हैं। पिछले 25 दिन तो किया सो धर्मशाला अस्पताल में किया सो बीपी भी दवा ना मुड़ो कर दे हा। रिसेंटली मेरे एक जानने वाले हैं जियारी वाइफ डिलीवरी की असो टांडा मंज भुए हा तिन्या गलती करी मैं तिन्यों बल्लू तो कि कुछ एक वीडियोस के अंसो तो है बनाए लेंदे थे असो एविडेंस किया असो भूना तो त्यारा ये बलना हा कि पहले किया सो जो नॉर्मल डिलीवरी है टांडा अंदर सो मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट बुचिगन देते जो बाहर रहने रह खर्चा खाने पीने का खर्चा जो बंदा तो सो ही किया सो बंदा तो है ना। लेकिन इस बार बोलता एटलीस्ट मेरे 8-9 हज़ार रुपया किया सो लगेगा हुआ। अब तुम बोलना 8-9 हज़ार रुपया डजन मैटर है ना, पैसे आ रहे थे बोलना कि डजन मैटर, लेकिन जो बहुत मुश्किल होगी अपना जीवन यापन करूँ कर देन तिन्या वास्ते किया वेरी मच मैटर, मनी इज़ वेरी मच मैटर है ना, पैसा बहुत मैटर है तिन्या वास्ते था 8-9 हज़ार रुपया किया सो अमूमन सो दसू कर देती है कि लगेगा। लेकिन हल्ले भी सो टांडा मंच ही आई थिंक हफ्ता की असो बुची को हुआ शायद मतलब 10-15 हज़ार तक की असो गेम हाए। और ये हाल के सो धर्मशाला अस्पताल में भी पिछले 25 दिन था कि असो बीपी दवा किया और अन्य दवाई के सो ना मोड़ कर दिन मरीज परेशान हिन शोतों और ये बहुत सिस्टम किया सो डगमगाई छू रहा शोतों बहुत ज़्यादा। 370 रुपये पूछ गया हम इंसान कर ला गया जिला था जिला की हम जो लगता इने वाले समय अंदर था ये भूना कि मतलब चोरी डकैती वाकई में ज़्यादा बड़ी गाणी ना, अगर ये हाल की असोरे होता ये हाल ना ये आम जनता रा हाल बेहाल भूने वाला हाल है। बहरहाल इन अगले श्रोता के अनुसोस होगी कनेक्टेड हिन। नमस्ते जी।
1: नमस्कार सचिन भाई।
0: नमस्कार जी। नमस्कार कौन बलुंदेन और कड़ी तो बलुंदेन
1: ਰਣਜੀਤ ਵੱਲਗੁੰਦਾ ਜੀ ਚੈਨਲ ਤੋਂ।
0: ਅੱਛਾ ਰਣਜੀਤ ਜੀ ਠੀਕ ਠਾਕ ਨੇ?
1: ਖਰੇ ਵਧੀਆ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ?
0: ਚੈਤੜ ਤੋਂ ਵੱਲੂ ਗਰਦਨ ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ ਨੇ ਜੀ ਲੁਗਰਨ।
1: ਅੱਛਾ
0: ਜਨ ਸੇਵਾ ਮੰਚ।
1: ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਵਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਨਾ।
0: ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ
1: ਇਹ ਤਾਂ ਕਰਮ ਹੈ ਨਾ,
0: ਇਹ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਮਾਉ ਗਰਦਨ ਹੈ।
1: ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ
0: ਜੀ
1: ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ।
0: ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਅਸਕਣੀ ਰੇਟ ਮਾ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਨਾ ਬੁੰਦੇ ਆਪਣੇ
1: बिल्कुल
0: बिल्कुल मतलब अजकनी जनरेशन जो रंजीत जी आऊं समझे ना पाऊ कर दा कि क्या छीन दा बेचारे माँ बाप है ना कि क्या क्या के कर दे ना वास्ते और फिर मतलब इतनी करीबी तैयारी जो हालात ने सोना समझे पाओ गर्दन तो फिर क्या फायदा।
1: बिल्कुल जी बिल्कुल
0: जी
1: हालात समझ जनेशन पूरी है सर, आजकल जनेशन ऐसे है क्या खान पान ऐसा
0: जी
1: तेरा तीन चीजें रास रहते हो गंदा ना है।
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: पहले कड़ी फोन बंदी है कड़ी वो बंदे थी है
0: बिल्कुल ना बंदे थी
1: है। अब आके घर में चीजें बंदे तो चीजें फोन है
0: चीजें फोन
1: ਫੋਨ ਖਰੀਦਣਾ ਤਾਂ ਮਾਂ ਬੁੜੇ ਖਾਣਾ ਖਾਣਾ ਦਿੰਦਾ
0: ਮਾਂ ਬੁੜੇ ਖਾਣਾ ਖਾਣਾ
1: ਮਾਂ ਬੁੜੇ ਖਾਣਾ ਖਾਣਾ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਖੁਸ਼ ਕਾਰਟੂਨ ਲਾਈਨ ਹੈ ਨਾ ਫੋਨਾਂ ਚ
0: ਜੀ ਜੀ ਜੀ
1: ਜੀ ਅਗਰ ਸੋ ਫੋਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਸੋ ਬੱਚੇ ਕਣੈ ਕਣੈ ਲਾਉਰੀ ਤਾਂ ਸੋ ਨਾ ਦਿੰਦੇ ਖਾਣਾ ਮੋੜ ਕੁੰਦਾ ਸਿੱਧਾ ਕਣੈ ਨਾ ਸੋ ਦੇ ਉਹ ਕਰ ਕੁੰਦਾ
0: ਐਕਚੁਅਲੀ ਕੀ ਬੰਦਾ ਨਾ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਜੀ ਦਸ ਇੰਦੇ ਨਾ ਫੋਨ ਨਾ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਕੀ ਆ ਸੋ ਫੋਨ ਦਸ ਇੰਦੇ ਨਾ ਔਰ ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਕੇ ਸੋ ਐਡਿਕਟ ਬੁਚ ਗੰਦੇ ਹਿੰਟੇ ਰੇ
1: ਬਿਲਕੁਲ
0: ਨਾ ਔਰ
1: ਬਲਜੀ 2.5-3 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕਹਿ ਕਿੰਨੇ ਤਾਂ ਬਸ ਕਾਰਟੂਨ ਜਿਹੇ ਲਗਾਉਣੇ ਕਿੰਨੇ ਫੋਨ ਜੇ ਸੁਬਹ ਕਾਰਟੂਨ ਨਾ ਹੈਰੇ ਕਰੇ ਸੋ ਚੁੰਗ ਚੁੰਗ ਚੁੰਗ ਚੁੰਗ ਬੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਚਤੀ ਨਹੀਂ ਕੁਛ
0: ਔਰ ਫਿਰ ਰਿਐਕਟ ਵੀ ਬਾਅਦ ਅੰਦਰ ਤੀਆਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਾਈਂਡ ਗਰੋਬ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜੀ ਜੋ ਮਾਈਂਡ ਤਸ ਸਮੇਂ ਕੀ ਸੋ ਗਰੋਬ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਤਸ ਸਮੇਂ ਜੋ ਹੈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਇਨਹੈਂਸ ਕਰੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਸੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਦੇ ਮਾਈਂਡ ਮੈਂ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀ ਨੇ ਔਰ ਸੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਰਿਐਕਟ ਕਰਨਾ ਵੀ ਲੱਗੀ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਸੋ ਇਹਦੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਮੈਂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ ਗੰਦਾ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਬੱਚੇ ਦੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਮੈਂ ਵੀ ਸੋ ਹੋ ਜਾ ਪੈਂਦਾ ਫਿਰ ਹੈ ਨਾ
1: ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਗਲਤ ਤਾਂ ਮਾਂ ਬੁੜੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੋ ਪੂਰੀ ਨਾ ਬੁੰਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰੇ ਗਲਤ ਕਦਮ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਹੇਠਾਂ ਉਗਦੇ ਨਾ
0: ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ
1: ਔਰ ਬਾਈ ਜੀ ਗਾਣਾ ਹੁਣ ਨੀਲੀ ਨੀਲੀ ਘੋੜੀ ਵਾਲਾ ਨੀ ਸੋ
0: ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ
1: धन्यवाद
0: वेड़ी गुंजन सोगी जुड़ने वास्ते और इस कार्यक्रम सोगी जुड़ने वास्ते नमस्ते थैंक यू जी कार्यक्रम जो आगू बढ़ेंदे इंदे अगले श्रोता सोगी कनेक्टेड हिन तो सब हूँ करते हैं समय FM बैंड 91.2 MHz पर रेडी गुंजन धर्मशाला और आऊँ सचिन कपूर खास श्रोताओं इंदे अगले श्रोता कनेक्टेड थी है लेकिन डिसकनेक्ट हो चुके हैं इतों अगले श्रोता और कनेक्ट हो चुके हैं तो करी नमस्ते जी
2: नमस्ते भाई
0: नमस्ते जी नमस्ते हाँ जी खरेन जी बिल्कुल ठीक ने तो बल्ले तो ठीक ने
2: हाँ जी मम्मी ठीक ने
0: जी बिल्कुल ठीक ने कौन बल्लुंदे ना और कड़ी तो बल्लुंदे
2: तो मन बल्लुंदे दाढ़ी में
0: अच्छा जी सुमन जी राजीव बाजी कुशल मंगल है सब ठीक ठाक
2: ठीक ठाक
0: अच्छा सुमन जी कौन देने गीत होना पसंद कर ले वेड़ी गुंजन में
2: इंद्र नागा हाँ ये खोल कुंडिया
0: अच्छा नागा खोल कुंडिया
2: जी
0: चलिए ठीक है जी जरूर सुन ले सुमन जी तू सुई गीत ना जी समय रह थोड़ा करे आवा हां जी
2: हां जी धन्यवाद
0: ठीक है जी धन्यवाद इन द गौर श्रोता सु की कनेक्टेड हैं कनेक्ट कर दें समय रह बाबा लेकिन फिर भी कनेक्ट करते हैं नमस्ते जी
3: नमस्कार महाराज जी
0: जी महाराज नमस्ते नमस्ते ठीक ठाक ने
3: भैया मेरा उस माल का दी
0: बिल्कुल मेर तसेंदे उस मालिक रे भोलेनाथ जी रे शंकर रे
3: जी महाराज बने सेवा करू कर दे ना
0: जी जी जी
3: का सेवा का फल मेवा मिलदा जी
0: हां बिल्कुल बिल्कुल जी
3: हां सेवा का फल मेवा मिलदा महाराज का करा सेवा उस माल की दया सेवा करू कर दे श्रीया सेवा
0: चलिए जी करू कर दे ना है कोशिश वंदे इंदी रोजाना और करू कर दे बस कर्म करू कर दे फल रे चिंता ना करू दे जी जीवन यापन करने वास्ते जरूरी भी आ पर फिलहाल कर्म के सो मुझे लगता बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है कि अपना हगुर रस्ता की सब तक क्लियर होना चाहता ना चकाचौंध दुनिया रही था चकाचौंध आ ठीक है लेकिन इतों बाद जो दुनिया तड़ी बड़ा सिस्टम जरूरी रहंदा अपने कर्मारा
3: कर्मा दा बंदे ना कर्म ता बंदे ना हाथ कम करिए तो अच्छा कर्म होगा
0: जी
3: तो परमात्मा जो हर 24 घंटे याद रखदा परमात्मा बंदा मेरा बंदा है मैं से अच्छी जगह लेना तो अच्छे कर्म करदा तो से कोई दुख तकलीफ ना रहंदा जी
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल
3: आज दिन सेवा करनी तो सेवा दा फल मेरा मिलना महाराज
0: मिलना जी जरूर करो कर देना है सेवा
3: ठीक ठीक है महाराज जी
0: ठीक है महाराज जी समय रहा बाबा थोड़ा इजाजत चलता तो सुतो
3: बिल्कुल ठीक है महाराज जी
0: ठीक है जी धन्यवाद नमस्ते
3: धन्यवाद
0: श्रोतों तो सब बन रहे हैं इस समय FM बैंड 91.2 MHz पर वेड़ी गुंजन धर्मशाला सुगी और आओ नाचीज सचिन कपूर इस समय कार्यक्रम जो होस्ट करू कर दें आइए जी फरमाइश और दौर के सो पूरा कर दें हिन और चल दें चैतड़ू कुनारी रंजीत जी री फरमाइश जो पूरा कर दें

चलिए श्रोताओं, समय रहा थोड़ा करे अभाव और अगली फरमाइश भी असू जरूर पूरे करने हैं। महाराज जी री इंदुनाग महाराज जी री ना माफ करा नागा खोल कुंडिया है ना जी। तो फिलहाल आऊँ सचिन कपूर ले लेनो इजाजत। श्रोताओं गंदे गंदे बस यही बोलना चाहूँ तो सब भी जो माता पिता री सेवा के सो जरूर करा, प्रकृति जो साफ सुथरा जरूर रखा, बुझे सका अपनी तरफों तो हर किसी रे भला के सो जरूर करा, और अके चेहरे में जब मुस्कुराहट किया सो दुए मनु जरूर दिया। श्रोताओं अपनी साइड तो कोई दुख किया सो कसी मत दिया, अपने कर्मा जो खरे करा। इन्या शब्द था आऊँ सचिन कपूर ले लेनो अब इजाजत। नमस्ते धर्मशाला।

0: गोरिया
1: गोरिया
2: गोरिया।
3: प्लास्टिक गोरिया जैसे नादान जानवरों की जान ले सकता है। आप भी छोटी सी शुरुआत कीजिए, प्लास्टिक को अलग डस्टबिन में डाल के शुरू करें एक छोटी सी अच्छाई।
4: बैठिए मैडम बैठिए।
5: देखो इनको, इनकी नाक देखो, बिल्कुल अपने पिताजी से मिलती है। देखो इसकी आंखें देखो, पता है तेरे पिताजी ने हमें हंसाया है, रुलाया है, मनोरंजन दिया है। मतलब कौन सा गाना था, एक चतुर नार बड़ी होशियार है, क्या गाना था वो।
6: अरे बेटो तू यहाँ क्या कर रहा है, और ये दोनों लड़कियों कौन है?
5: लेकिन भाई साहब आप कौन है?
6: जी मैं इसका बाप हूँ।
5: आप इसके बाप हूँ? महमूद का बेटा नहीं तू? अरे हास्य कलाकार महमूद, ये तेरे बाप का रोड नहीं है?
7: जी नहीं।
5: तो फिर बिना हेलमेट के दो लड़कियों को बिठा के रूम रूम करते शर्म नहीं आती तुम्हें?
1: चलान तो कटेगा भैया तेरा,
5: और अभी उतर के लेके जाओ आपकी।

नमस्कार दोस्तों, प्रेम विश्वास और भाई बहन के अटूट रिश्ते का ये पावन पर्व रक्षाबंधन आप सभी के जीवन में ढेर सारी खुशियाँ लेकर आ रहा है। राखी का ये पवित्र धागा सिर्फ कलाई पर बंधा एक धागा नहीं, बल्कि प्यार, विश्वास, सुरक्षा और जीवन भर साथ निभाने के वचन का प्रतीक है।

रिश्तों में मिठास रहे, अपनों का साथ रहे। रिश्तों में मिठास रहे, अपनों का साथ रहे। हर कलाई पर सजे प्यार का धागा और हर चेहरे पर मुस्कान रहे। इन्हीं खूबसूरत भावनाओं के साथ रेडियो वंचन धर्मशाला की ओर से आ रहे

0: नमस्ते भैया, कैसे हो भाभी जी?
1: अभी शादी का लहंगा सिलवाना था।
0: हाँ हाँ, बहुत सारे डिजाइन है, ये देखिए। कौन सा स्टाइल चाहिए आपको? ये देखिए, पिछले महीने मिश्रा जी की बेटी की शादी के लिए सिया था।
1: ये तो स्लीवलेस है, हमें फुल स्लीव्स वाला चाहिए। थोड़ा सिंपल दिखाइए।
0: सिंपल में तो फिर, अरे पर किसके लिए बनाना है?
1: चुन्नी के लिए।
0: ये अपनी चुन्नी?
1: हाँ, अच्छा रिश्ता मिला है।
0: बेटा चुन्नी, कितने साल के हो आप?
2: अगले महीने 12 साल की हो जाएगी। पंडित जी ने इसी इतवार का मुहूर्त निकाला है, तो हो तो जाएगा ना तब तक।
0: अच्छा, 12 साल की है तो आपको प्रॉब्लम नहीं है?
2: नहीं, क्यों?
0: और आपको भी प्रॉब्लम नहीं है? पर मुझे प्रॉब्लम है, मैं नहीं सीऊंगा।
2: चलो छोड़ो उसे, किसी और से सिलवा लेंगे।
0: अरे भैया जी, एक मिनट। अरे बिरजू, वो कौन सा नंबर है, निकलवाओ तो जरा।
3: मास्टर जी, टोल फ्री नंबर है 1098, कभी भी कॉल करके कंप्लेन कर सकते हैं।
0: ना हम सीएंगे, ना किसी को सीने देंगे।
4: जीवन की हर उलझन का हल मिलेगा मित्र, बस अपने मन को थोड़ा शांत करके देखो। जो तुम्हारा है वो कहीं नहीं जाएगा, और जो चला गया वो कभी तुम्हारा था ही नहीं। हर परिस्थिति में मुस्कुराना सीखो, क्योंकि मुस्कान ही हर दर्द की सबसे बड़ी दवा है। भरोसा उस ईश्वर पर पूरा रखो, वो तुम्हें वही देगा जो तुम्हारे लिए सही है। तुम्हारी सरलता ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है, और तुम्हारी खामोशी में ही ईश्वर का वास।
5: मम्मी जी क्या कह रहे हैं? बचपन में आपका बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ था।
2: हाँ, जब मैं 12 साल का था ना, तो मैं पापा को बिना बताए उनकी बाइक लेके घर से बाहर निकल गया, और मैं बाइक इतनी तेज चला रहा था कि सामने से एकदम से ट्रक आ गया। तो ट्रक को बचाने के चक्कर में मैंने एकदम से लेफ्ट ले लिया। जैसे ही लेफ्ट लिया, सामने से गाड़ी आ रही थी, और गाड़ी में जाके बाइक लगी और बाइक पूरी खत्म हो गई।
5: बेबी, बाइक को छोड़ो, आप बताओ आप बचे थे कि नहीं?
2: तब तो बच गया था, लगता है अब नहीं बचूंगा।

91.2 मेगाहर्ट्स पर यह है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और श्रोताओं, मैं हूँ आपकी रेडियो दोस्त शशि और हाजिर हो गई हूँ कार्यक्रम लेकर गीत सुहाने नए पुराने। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस प्यारे से गीत के साथ। आप सभी यूं ही सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

तो आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत, गीत सुहाने नए पुराने कार्यक्रम का। तो अपने कार्यक्रम में फिर से हम आगे बढ़ते हैं और आपको ले चलते हैं फिर से एक प्यारे से गीत के सफर में।

91.2 FM पर यह है आप सभी का अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी इस वक्त कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। तो बिल्कुल अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और सुनते हैं एक और गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। तो इसी के साथ अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे।

तो श्रोताओं, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत। फिर से कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आपको फिर से ले चलते हैं एक और गीत की तरफ। तो आप सभी यूं ही सुनते रहिए अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला।

ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत। फिर से आपको ले चलते हैं एक और गीत की तरफ।

91.2 MHz पर यह आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और श्रोताओं, आप सभी इस वक्त कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ, गीत सुहाने नए पुराने। तो फिर से अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

तो श्रोताओं, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत, गीत सुहाने नए पुराने कार्यक्रम का। तो अपने कार्यक्रम में फिर से हम आगे बढ़ते हैं और आपको ले चलते हैं फिर से एक प्यारे से गीत के सफर में।

0: दिन मैंने कसम खाई जब तक मैं 3 अम्बेसडर कार्स नहीं खरीद लेती तब तक शादी नहीं करूंगी।
1: मत पूछो, वो तुम्हारी खानदान की निशानी है।
0: कार फिर ले लेंगे।

91.2 FM पर यह आप सभी का अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी इस वक्त कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। तो बिल्कुल अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और सुनते हैं एक और गीत।

तो श्रोताओं, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत। फिर से कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आपको फिर से ले चलते हैं एक और गीत की तरफ। तो आप सभी यूं ही सुनते रहिए अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर श्रोताओं, आप सभी ने ट्यून किया है आपका अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। रोज़ाना की तरह आज फिर श्रोताओं, कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला में हम हाजिर हो गए हैं। और आज का ये कार्यक्रम श्रोताओं लेकर आई है आपकी रेडियो दोस्त सुषमा। शाम हो गई है और समय हो गया है, 6 बज चुके हैं। और आप सभी जानते हैं कि 6 बजे से लेकर 8 बजे का समय जो है वो रहता है कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला का। जितने भी श्रोता इस कार्यक्रम का इंतज़ार कर रहे थे, उनका इंतज़ार अब हुआ ख़त्म और हम आ पहुँचे हैं फिर से आपके समक्ष। श्रोताओं, जितने भी श्रोता कार्यक्रम के साथ जुड़े हैं, उन सभी का स्वागत है इस कार्यक्रम में। और सभी को सुषमा की प्यार भरी राम राम, नमस्कार और गुड इवनिंग। उम्मीद करती हूँ आपका दिन बहुत अच्छे से गया होगा। और शाम जो है वो हो चुकी है, और शाम जो है श्रोताओं कहीं ना कहीं कई विचारों के साथ खुली मिली रहती है। बहुत सारे विचार और बहुत सारी सोच हमारे दिमाग में रहती है आज दिन में हमारे साथ जो भी हुआ उसे लेकर। लेकिन उन विचारों को एक तरफ रखिए, क्योंकि अब कार्यक्रम के साथ आप जुड़ चुके हैं गुड इवनिंग धर्मशाला के साथ। और इस सफ़र में अब हम आपके साथ करने वाले हैं बहुत सारी बातें और जानकारियां जो हैं वो भी आप तक पहुंचाई जाती हैं श्रोताओं, और प्यारे प्यारे गीत भी हम लेकर आते हैं। तो हमारे जितने भी श्रोता कार्यक्रम के साथ जुड़े हैं उनसे हम यही कहेंगे कि आप जो भी काम कर रहे हैं उसे भी कीजिए, और साथ में कार्यक्रम के साथ जुड़िए, ट्यून इन हो जाइए 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आपके अपने रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। रोज़ाना की तरह श्रोताओं, आज भी हम कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे एक विचार के साथ। दुआएँ रद्द नहीं होती, बस बेहतरीन वक्त पे कबूल होती हैं। बिल्कुल श्रोताओं, और इस विचार के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हमने कर दी है, और आप सभी को इंतज़ार रहता है कि कार्यक्रम में हम सुनेंगे गीत संगीत। तो गीत संगीत के बिना हम कोई भी कार्यक्रम लेकर नहीं आते हैं, और आज भी ज़रूर बहुत प्यारे प्यारे गीत हम लेकर आए हैं। तो चलिए लेते हैं कार्यक्रम का पहला गीत, और सुनिए इस गीत को मेरे साथ यानी कि आपकी अपनी रेडियो दोस्त सुषमा के साथ। गाइड फिल्म का ये गीत श्रोताओं हमने लिया है लता मंगेशकर की आवाज़ में। आप सभी के रेडियो सेट पर आपके लिए ये प्यारा सा गीत।

0: 91.2 मेगा हर्ट्ज पर श्रोताओ, आप सभी ने ट्यून किया है आपका अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला। इस समय आप सभी सुन रहे हैं श्रोताओं, और ये था कार्यक्रम का पहला गीत। श्रोताओं, ये तो थी शुरुआत, लेकिन अभी बहुत सारे गीत कार्यक्रम में बाकी हैं आप तक पहुंचाने के लिए। बहुत सारी बातें हैं जो आपके साथ करनी है और जानकारियां भी आप तक पहुंचानी है, और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे सभी श्रोता कार्यक्रम के साथ जुड़ चुके होंगे। जो नहीं जुड़े हैं उनसे हम यही कहेंगे कि आप भी हमारे साथ जुड़िए, इन बातों के साथ जुड़िए और इस मनोरंजन भरे सफ़र के साथ जुड़िए। श्रोता, आपको बता दें कि 88.4 मेगा हर्ट्स पर हमीरपुर के धजवाल की आवाज़ पर भी आप इस कार्यक्रम को सुन सकते हैं और सुन भी रहे होंगे। तो हमीरपुर के साथ जितने भी श्रोता हमारे साथ जुड़े हैं उन सभी को भी सुषमा की प्यार भरी राम राम नमस्कार। उम्मीद है वो सभी भी ठीक ठाक होंगे। देखिए, हमारे जो श्रोता हैं वो एक ही जगह से नहीं, बहुत दूर दूर से हमारे श्रोता हमारे साथ जुड़े होते हैं, और हमारे लिए हर एक श्रोता बहुत ज़रूरी है, बहुत अहम है। हर श्रोता जिस तक आवाज़ पहुंच रही है उसका प्यार हमें भी मिलता है, और हमारा प्यार आपके लिए हमेशा बना यूं ही रहेगा, ये हम आप सभी से वादा करते हैं। और हम ये भी एक कामना करते हैं कि आप लोगों का प्यार भी हमें इसी तरह से मिलता रहेगा। तो श्रोताओं, कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला जिसका समय आप सभी जानते हैं, लेकिन फिर भी हम कार्यक्रम के माध्यम से बताते रहते हैं कि ये कार्यक्रम है गुड इवनिंग धर्मशाला, और इसका समय रहता है शाम को 6 बजे से लेकर 8 बजे तक का। ये 2 घंटों का सफ़र श्रोताओं आपके साथ हम बिताते हैं और आप बिताते हैं हमारे साथ, हमारी इन बातों में, हमारे इन विचारों में और गीतों के साथ। तो श्रोताओं, कार्यक्रम में आज किस विषय पर बात करने वाले हैं उस पर थोड़ी सी नज़र दौड़ाएंगे। रोज़ाना हम सोचते हैं कि आज हम जाकर अपने श्रोताओं के साथ किस विषय पर बात करें, लेकिन जब सोच में बैठते हैं तो कई बार बार बार वही बातें, वही चीज़ें हमारे सामने आती हैं जो आजकल हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और उन्हीं बातों का निचोड़ जो है वो जिस बात पर निकला वो निकला। चीज़ें महंगी हो सकती हैं लेकिन ज़िंदगी अनमोल है। श्रोताओं, आए दिन हम बहुत सारी खबरें पढ़ते भी हैं, सुनते भी हैं, और कार्यक्रम के माध्यम से हम आप तक पहुंचाते भी रहते हैं उन घटनाओं को, उन बातों को जिनसे हमें सीख लेनी चाहिए, और कहीं ना कहीं वो बातें हमारे दिल को भी ठेस पहुंचाती हैं और हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं उन खबरों को सुनकर। लेकिन आज इसी विषय पर बात होगी कि ज़िंदगी जो है वो हमारी बहुत अनमोल है। चीज़ें जितनी मर्जी महंगी हों उन्हें हम ले लेंगे आज नहीं तो कल, लेकिन ज़िंदगी एक बार निकल गई तो वो फिर से नहीं मिलती है, और इसी पर आज आपके साथ होने वाली है बातें। लेकिन इन बातों को शुरू करने से पहले एक प्यारा सा गीत आप तक पहुंचाना चाहेंगे जिसे हम लेकर आए हैं अंदाज फिल्म से। आवाज़ है किशोर कुमार की।
1: और बेल आइकन

बिल्कुल श्रोताओं, बहुत प्यारा गीत आपने अभी सुना, ज़िंदगी एक सफ़र है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। लेकिन श्रोताओं, ज़िंदगी में कल क्या हो किसी को नहीं पता, लेकिन कल की चिंता करते करते हम अपना आज जो है वो भी कई बार ख़राब कर लेते हैं। अपने आज में जिए और आज जैसा भी आपका समय है उसे बहुत ही अच्छे से मुस्कुरा कर और खुशी के साथ व्यतीत करना ही ज़िंदगी है। और ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन उनको लेकर अगर हम बैठे रहेंगे तो आगे कभी भी नहीं बढ़ पाएंगे। कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला आप सभी सुन रहे हैं 91.2 MHz पर, श्रोताओं आपकी अपनी रेडियो दोस्त सुषमा के साथ। कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला में हम आपके साथ बातें तो करते ही हैं, लेकिन साथ ही जानकारियां भी आप तक पहुंचाते हैं। तो बिल्कुल आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं कि अब हम बढ़ रहे हैं आगे, यानी कि जानकारी की और। श्रोताओं, विद्युत उपमंडल सिद्धपुर के सहायक अभियंता संतोष कुमार ने जानकारी देते हुए बताया है कि विद्युत लाइनों के सामान्य रखरखाव हेतु 250 KV रक्कड़ क्षेत्र, 250 KV दरूनी माता मंदिर क्षेत्र तथा 100 KV स्पीति होस्टल आदि ट्रांसफार्मों के तहत आने वाले क्षेत्र रक्कड़ दरूनी माता स्पीति हॉस्पिटल हॉस्टल के आसपास के क्षेत्रों में 26 अगस्त सुबह 9:30 बजे से शाम कार्य समाप्ति तक विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी। मौसम खराब होने या अन्य आकस्मिक आपदा में ये कार्य जो है स्थगित या आंशिक रूप से किया जा सकता है। उन्होंने लोगों से सहयोग की अपील की है। श्रोताओं, 26 अगस्त सुबह 9:30 बजे से लेकर शाम कार्य समाप्ति तक जो है वो इन क्षेत्रों में बिजली जो है वो बंद रहेगी। तो आप सभी से यही अनुरोध रहेगा कि अगर आपके बिजली से होने वाले जितने भी काम हैं उन्हें आप उससे पहले यानी कि 25 तारीख को कर लें, क्योंकि 26 को आप वो काम नहीं कर पाएंगे। और ये जानकारियां आप तक पहुंचाने का मकसद भी यही रहता है कि अगर आप तक ये जानकारी पहुंची होगी तो आप अलर्ट हो जाएंगे। और बिजली के बिना बहुत सारे काम हैं जो हम नहीं कर पाते हैं, जिसके लिए हम कई बार अगर हमने अपने कपड़े भी अगर प्रेस करने हैं तो सुबह मॉर्निंग में हम शुरू कर देते हैं वो काम, या फिर सोच के रखा होता है कि ये काम हमने करना है, और अगर हमें पता हो कि बिजली नहीं होगी तो उस काम को हम पिछले दिन ही कर सकते हैं। तो श्रोताओं, ये जानकारी आप तक पहुंचाई रेडियो गुंजन धर्मशाला ने। और जानकारी के बाद अब कार्यक्रम में फिर से हम गीत संगीत की ओर बढ़ेंगे और उसके बाद हम अपनी बातों पर भी आएंगे। तो चलिए सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत। जख्म फिल्म से लिया गया ये गीत है श्रोताओं, कुमार शानू की आवाज़ में आप सभी तक पहुंचा रहे हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला से, कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला में।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर श्रोताओं, आप सभी ने ट्यून किया है आपका अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला में। अभी आपने सुना ये गीत। श्रोताओं, कार्यक्रम में आज हम बात कर रहे हैं, चीज़ें महंगी हो सकती हैं लेकिन ज़िंदगी अनमोल है। बिल्कुल, आज हमारी ज़िंदगी में महंगाई बढ़ गई है श्रोताओं। घर का सामान हो, मोबाइल हो, कपड़े हो, गाड़ी हो या कोई और ज़रूरत की चीज़ हो, हम कीमत देख कर सोचते हैं कि इसे खरीदना चाहिए या नहीं। लेकिन क्या कभी हमने ये सोचा है कि ज़िंदगी की कीमत क्या है, ज़िंदगी कितनी मूल्यवान है, ये हम कई बार नहीं सोचते हैं। कई बार हम छोटी छोटी बचत के लिए अपनी सुरक्षा को नज़रअंदाज कर देते हैं, सड़क पर जल्दी पहुंचने के लिए नियम तोड़ देते हैं और वाहन चलाते समय लापरवाही कर देते हैं, घर में बिजली या गैस की छोटी सी खराबी को नज़रअंदाज कर देते हैं। हम सोचते हैं छोटी सी खराबी है, बाद में ठीक कर ली जाएगी। और कई बार हमें कहीं पहुंचना होता है तो हमें जल्दी होती है, उस समय हम बहुत सारे रूल जो कानून है यातायात के वो तोड़ देते हैं और ऐसे में कई बार ज़िंदगी भी हम खो बैठते हैं, अपनी ज़िंदगी भी और दूसरों की ज़िंदगी भी दाव पर बन जाती है। तो श्रोताओं, ऐसे में हमें कई बार अकेले बैठकर सोचना चाहिए कि ज़िंदगी में हर कुछ हम ले सकते हैं, महंगी चीज़ है तो उसके लिए हम कमा सकते हैं, धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी बचत करके हम उसे ले सकते हैं। लेकिन अगर ज़िंदगी के साथ कोई ऐसी मिसहैपनिंग हो गई तो क्या हम उसे ठीक कर सकते हैं, या ज़िंदगी ही चली गई तो दोबारा हम उसे ला सकते हैं वापस? बिल्कुल नहीं श्रोताओं। इसलिए ज़िंदगी के बारे में सोचिए। हम हर चीज़ के बारे में सोचते हैं लेकिन बस एक ज़िंदगी है जिसके बारे में हम सोचते नहीं हैं। और जब कई हादसे हो जाते हैं, कई घटनाएं हो जाती हैं, तब हम पछताते हैं कि काश हमने थोड़ी सी परवाह इस ज़िंदगी की कर ली होती। बिल्कुल श्रोताओं, और ज़िंदगी अनमोल है ये सभी जानते हैं, लेकिन कई बार हम भूल जाते हैं इस बात को। हर बात को याद रखिए लेकिन ज़िंदगी को सबसे पहले याद रखिए। ज़िंदगी को छोटा बिल्कुल भी मत समझिए, बहुत बड़ी चीज़ है ज़िंदगी, और हमारी ज़िंदगी के साथ बहुत सारी ज़िंदगियां भी जुड़ी रहती हैं। तो कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और ज़िंदगी पर आधारित एक प्यारा सा खूबसूरत सा गीत आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम में।

91.2 MHz पर श्रोताओं आप सभी जुड़े हुए हैं आपके अपने रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला। इस समय आप सभी सुन रहे हैं श्रोताओं, और कार्यक्रम में अब समय है एक छोटे से अंतराल का। इस छोटे से ब्रेक के बाद फिर से हम कार्यक्रम में जुड़ेंगे आपके साथ। आप यूं ही बने रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ।

श्रोता 91.2 भूमिका हर्ट्स पर श्रोताओं आप सभी ने ट्यून किया है आपका अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। इस छोटे से ब्रेक के बाद फिर से कार्यक्रम में हम जुड़ चुके हैं और हमारे श्रोता भी ज़रूर कार्यक्रम के साथ जुड़े होंगे और हमारी बातें भी सुन रहे होंगे और सोच विचार भी कर रहे होंगे। श्रोताओं, बातचीत करने का मकसद भी यही होता है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई बात ऐसी हो जिस पर हमें सोचने पर मजबूर होना पड़े, क्योंकि बहुत सारी बातें हम भी कहीं ना कहीं सुनते हैं, पढ़ते हैं और थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ जाते हैं कि सच में ऐसा ही है। और आज ज़िंदगी की बात हो रही है तो ज़िंदगी के बारे में जब हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हम सोच में पड़ जाते हैं कि सच में हम हर चीज़ के बारे में सोचते हैं लेकिन ज़िंदगी के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचते हैं। श्रोताओं, अगर हम कहीं भी जा रहे हों और सफ़र कर रहे हों, कहीं हमें जल्दी पहुंचना हो और लेट हो रहे हों, तो हम लोग ये सोचते हैं कि किसी तरह से जल्दी वहाँ पर पहुंचा जा सके। तो उसके लिए हम लोग कई बार थोड़ी सी भी जगह मिलती है, ख़ास करके दो पहिया वाहन वालों की बात है, उन्हें थोड़ी सी भी जगह मिलती है तो वो निकल जाते हैं। श्रोताओं, मैं भी जब आती हूँ तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो निकल जाते हैं पर मैं हिम्मत नहीं कर पाती, क्योंकि तब मुझे लगता है कि नहीं, हमारे साथ और भी ज़िंदगियाँ जुड़ी हैं, परिवार है, बच्चे हैं, और थोड़ी सी जल्दी के चक्कर में कहीं कुछ हो गया तो फिर पीछे रहने वालों का क्या होगा। ये सब बातें सोचनी चाहिए श्रोताओं, और अगर हम सोचेंगे, हम अपने लिए नहीं, हम अपने अपनों के लिए जीते हैं और अपनों के लिए ही ये चीज़ें सोचते भी हैं। तो श्रोताओं, अपने बारे में सोचिए, आपके साथ जुड़े हुए लोगों के बारे में सोचिए, और हमेशा हमें कहा भी जाता है कि हेलमेट पहनकर हमें जाना चाहिए, हेलमेट हमें चोट से बचाता है। लेकिन हम क्या करते हैं, कहीं पर भी हमें कोई पुलिस वाला दिख जाता है या ट्रैफिक पुलिस वाले दिख जाते हैं तो हम फटाफट हेलमेट को अपनी बाजू से निकाल के अपने सर पर रख लेते हैं। लेकिन श्रोताओं, ये हमारी सुरक्षा के लिए है, ना कि खर्च बचाने के लिए। और अगर हम गाड़ी में बैठे हैं तो सीट बेल्ट भी हम तभी पहनते हैं कोई हमें देख ना ले, और अब तो बहुत ही अच्छा हो गया है, अब हमें कोई देखे ना देखे, एक आँख है जो हमें देखती रहती है, वो है कैमरा। हर जगह कैमरा लगे रहते हैं और कैमरे के डर से अब लोगों ने हेलमेट को पहनना, सीट बेल्ट को पहनना जो है वो शुरू कर दिया है। कहते हैं ना कि किसी की आँख हम पर बनी रहे तो अच्छा रहता है, कहीं ना कहीं किसी के डर से ही सही, लेकिन हम अपनी सुरक्षा तो कर ही रहे हैं। और ऐसी आदतों के लिए अगर ऐसे कैमराज और भी लगाने पड़े तो लगा देने चाहिए श्रोताओं। खैर, आप सभी में से कई लोग तो ऐसा सोच रहे होंगे कि ये तो हम पर मतलब एक वही है कि हम कैसे हेलमेट पहन लेंगे और हर जगह सीसीटीवी कैमराज या कैमराज लगेंगे तो मुश्किल हो जाएगी। लेकिन श्रोताओं, ये बातें आपके लिए हैं, हमारे लिए हैं, हम अगर इन बातों पर चलेंगे, नियम का पालन करेंगे तो हमारी ही सुरक्षा होगी। तो भाई, ज़िंदगी पर हम बात कर रहे हैं तो करेंगे ज़रूर और भी बातें, क्योंकि ज़िंदगी पर बात जितनी की जाए वो कम है, लेकिन बातों के साथ साथ गीत संगीत भी बने रहना चाहिए। तो चलिए लेते हैं एक और गीत प्यारा सा कार्यक्रम में, सुनिए इस गीत को और हम भी सुनेंगे आपके साथ इस प्यारे से गीत को।

उदित नारायण, विनोद राठौर और अलका याग्निक की आवाज़ों में आपने अभी सुना दीवाना मस्ताना फिल्म का एक गीत। 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर श्रोताओं, आप सभी ने ट्यून किया है आपका अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला। इस समय आप सभी सुन रहे श्रोताओं आपकी अपनी रेडियो दोस्त सुषमा के साथ, और इस गीत के बाद कार्यक्रम में हम आगे बढ़ेंगे श्रोताओं और आप तक पहुँचाएँगे जानकारी। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने आज जम्मू में श्री कैलाश ज्योतिष एवं वैदिक संस्थान ट्रस्ट द्वारा आयोजित संस्कृत मास 2026 के समापन समारोह को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि संस्कृत को केवल अतीत की भाषा के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि इसे एक ऐसी सशक्त ज्ञान परंपरा के रूप में समझना चाहिए जिसकी शिक्षा, अनुसंधान, प्रौद्योगिकी और वैश्विक ज्ञान दृष्टि से आज भी प्रासंगिक भूमिका है। राज्यपाल ने कहा कि भारत के विविध क्षेत्रों को बौद्धिक और सांस्कृतिक विरासत के माध्यम से जोड़ने में संस्कृत ने अद्वितीय भूमिका निभाई है। उत्तर की वैदिक परंपराओं से लेकर दक्षिण की ज्ञान परंपराओं तक संस्कृत भारत की सभ्यतागत एकता की साझा कड़ी रही है और यह एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को साकार करती है। साथ ही श्रोता, उन्होंने श्री कैलाश ज्योतिष एवं वैदिक संस्थान ट्रस्ट के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि संस्थान ने संस्कृत को पारंपरिक अध्ययन की सीमाओं से आगे ले जाकर विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से समाज से जोड़ने का सराहनीय कार्य किया है। राज्यपाल ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत भारतीय भाषाओं और ज्ञान परंपराओं को दिए जा रहे महत्व का उल्लेख करते हुए कहा कि संस्कृत से जुड़े विश्वविद्यालय, शोधकर्ता और संस्थान इस ज्ञान परंपरा को डिजिटल युग के अनुरूप विकसित करने और नई पीढ़ी तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। तो श्रोताओं, ये थी जानकारी जो कि आप तक पहुँचाई रेडियो गुंजन धर्मशाला ने। जानकारी के बाद फिर से हम लौटेंगे कार्यक्रम के अगले गीत की ओर। उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज़ों में श्रोताओं ईमान बेईमान फिल्म का ये गीत आप तक पहुंचा रहे हैं आप सभी के रेडियो सेट्स पर।

श्रोताओं, शाम का ही समय है और इस शाम के समय में हमें बहुत सारे काम होते हैं, घर के भी, और साथ ही साथ रेडियो अगर चल रहा हो, रेडियो गुंजन धर्मशाला, और कार्यक्रम में प्यारे प्यारे गीत सुनने को मिल जाएं तो मज़ा ही आ जाता है। हम भी आपको गीत सुनाते हैं और यहाँ हम भी गीतों को एंजॉय करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप सभी भी गीतों को एंजॉय करते होंगे। श्रोताओं, कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला इस समय आप सभी सुन रहे हैं और 91.2 MHz पर रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ जुड़े हुए हैं। ठीक 7 बजे सुनेंगे आप समाचार, तो समाचारों का समय भी अब नज़दीक है, तो समाचारों से पहले ले लेते हैं कार्यक्रम में एक और प्यारा सा गीत। कल की आवाज़, श्रोताओं, इस फिल्म का गीत हम लेकर आए हैं आशा भोसले और कुमार शानू की आवाज़ों में।

0: इस दौरान दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार, आर्थिक सहयोग और बैठकों पर चर्चा हुई। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध लगातार सुदृढ़ हुए हैं।
1: इकोनॉमिक कोऑपरेशन,
2: हमारा आर्थिक सहयोग, व्यापार, ऊर्जा, उर्वरक, परमाणु ऊर्जा और अन्य क्षेत्रों में लगातार मजबूत हुआ है। मुझे लगता है कि दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन और ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में आपसे मिलने को उत्सुक हैं। दोनों देशों के बीच सहयोग की एक मजबूत तस्वीर हमारे सामने है, जिसे हम और आगे बढ़ाना चाहते हैं।
0: डॉक्टर जयशंकर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से राष्ट्रपति पुतिन को शुभकामनाएं दी और उनका व्यक्तिगत संदेश सौंपा। इससे पहले डॉक्टर जयशंकर ने रूस के प्रथम उप प्रधानमंत्री डेनिस मंतुरोव के साथ भारत रूस अंतर सरकारी आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि आने वाले समय में भारत मुक्त व्यापार समझौते के माध्यम से वैश्विक व्यापार के लगभग 75% हिस्से तक पहुंच बना लेगा। उन्होंने कहा कि भारत कम से कम 8 से 9 और देशों के समूहों तथा अलग अलग देशों के साथ बातचीत कर रहा है। श्री गोयल ने भारत और जापान के व्यापार प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए कहा कि पिछले 4 वर्षों में 9 मुक्त व्यापार समझौते किए गए हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल आज चीन की राजधानी पेचिंग पहुंचे। वे कल चीन के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार वांग यी के साथ भारत चीन सीमा मुद्दे पर विशेष प्रतिनिधियों की 25वें दौर की वार्ता में शामिल होंगे। श्री डोभाल और श्री वांग सीमा मुद्दे के साथ साथ द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे। भारतीय एजेंसियां मलेशिया में पकड़े गए बम्बिया गिरोह से जुड़े 3 फरार गैंगस्टर को भारत ले आई है। गृह मंत्रालय कार्यालय ने बताया कि जसप्रीत सिंह, अजय सिंह और पवनदीप सिंह को भारत लाकर पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। इन आरोपियों पर जबरन वसूली, सीमा पार हथियार और मादक पदार्थों की तस्करी समेत कई अपराधों में शामिल होने का आरोप है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एजेंसियों ने वर्ष 2026 में अब तक 51 कुख्यात अपराधियों को भारत वापस लाने में सफलता हासिल की है। पश्चिम बंगाल सरकार आपात स्थिति से निपटने के लिए अग्निवीरों की भर्ती कर नई राष्ट्रीय आपदा मोचन बल अर्जुन वाहिनी का गठन करने जा रही है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि यह बल सितंबर में काम करना शुरू करेगा। अब तक सैनिक बोर्ड के माध्यम से 200 कर्मियों का चयन किया गया है। नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान ने 2026-27 के शैक्षणिक सत्र में आयुर्वेद पर आधारित प्रस्तुति देखभाल को बेहतर बनाने के लिए गर्भिणी मित्र नाम से एक नया पाठ्यक्रम शुरू किया है। आयुष मंत्रालय के अनुसार 6 महीने का ये पाठ्यक्रम गर्भावस्था और प्रसवोत्तर अवधि के दौरान महिलाओं को उच्च स्वास्थ्य शिक्षा, जीवन शैली मार्गदर्शन और सामुदायिक स्तर पर सहायता प्रदान करते हुए प्रशिक्षित कर्मियों को तैयार करने के लिए बनाया गया है। प्रवर्तन निदेशालय ने गोवा में डिजिटल अरेस्ट के एक मामले से जुड़े धन शोधन की जांच के सिलसिले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि 2025 में एक व्यक्ति को डिजिटल अरेस्ट कर 2 करोड़ 60 लाख रुपए से अधिक की रकम अलग अलग बैंक

खातों में जमा करने के लिए मजबूर किया गया था। मेघालय के सत्तारूढ़ नेशनल पीपल्स पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा के पूर्व सांसद डब्ल्यू आर खारलुखी ने आज पार्टी से इस्तीफा दे दिया। डॉक्टर खारलुखी वर्ष 2020 से 2026 तक राज्यसभा सांसद रहे। बम्बई शेयर बाजार का सेंसेक्स आज 172 अंक गिरकर 77,369 पर बंद हुआ। निफ्टी 33 अंक कम होकर 24,219 पर पहुंच गया। कोलंबो में श्रीलंका के साथ दूसरे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत ने पहली पारी 9 विकेट पर 503 रन बनाकर घोषित की। जवाब में श्रीलंका ने पहली पारी में दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक 2 विकेट पर 8 रन बना लिए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

91.2 MHz पर श्रोताओं, आप सभी ने ट्यून किया है आपका अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला। इस समय आप सभी सुन रहे श्रोताओं आपकी अपनी रेडियो दोस्त सुषमा के साथ। समाचारों के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम में, और सभी श्रोताओं को एक बार फिर से सुषमा की प्यार भरी राम राम, नमस्कार और गुड इवनिंग। श्रोताओं, आप सभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हमारे कार्यक्रम में हमारी बातों को भी सुन रहे हैं, जानकारियों को भी सुन पा रहे हैं और गीतों का आनंद भी ले रहे हैं। तो कार्यक्रम में फिर से हम आगे बढ़ेंगे और समाचारों के बाद एक बार फिर से कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे गीत के साथ। तो लीजिए सुनिए कार्यक्रम में इस प्यारे से गीत को, आदमी खिलौना है। इस फिल्म का गीत श्रोताओं अलका याग्निक और पंकज उदास की आवाज़ों में आप सभी के रेडियो सेट्स पर।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर श्रोताओं, आप सभी ट्यून इन हैं आपके अपने रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला में। अभी आपने सुना ये प्यारा सा गीत। श्रोताओं, इस गीत के बाद थोड़ी सी बात हम अपने युवा वर्ग से भी करेंगे। बच्चों से और युवाओं से यही कहना चाहेंगे कि ज़िंदगी एक लंबी यात्रा है, इसमें अच्छे दिन भी आएंगे और मुश्किल दिन भी आएंगे। कभी जीत मिलेगी, कभी हार मिलेगी, लेकिन हर सुबह अपने साथ एक नया मौका लेकर आती है। इसलिए जब भी कोई परेशानी बड़ी लगे, उसे अकेले मन में दबाकर मत रखिए। माता पिता से बात कीजिए, किसी भरोसेमंद शिक्षक से बात कीजिए, या किसी ऐसे बड़े व्यक्ति से बात कीजिए जिस पर आपको भरोसा हो। मदद मांगना कमज़ोरी नहीं, समझदारी होती है। और छोटी छोटी बातों के लिए इतना परेशान होना या इतने बड़े बड़े फैसले कर लेना जो कि ज़िंदगी के लिए अच्छे नहीं होते, वो अच्छी बात नहीं होती है। इसलिए समझदार बनिए और कोई भी फैसला लेने से पहले किसी से बात ज़रूर कीजिए। तो श्रोताओं, बातों को अब यहीं पर रोकेंगे और कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। और गीतों की इस श्रृंखला में एक और गीत आप तक पहुँचाना है, तो लीजिए सुनिए इस प्यारे से गीत को। प्रेम दीवाने फिल्म का ये गीत है, उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज़ों में।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर श्रोताओं, आप सभी जुड़े हुए हैं आपके अपने रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला में। अभी आपने सुना ये गीत। श्रोताओं, ज़िंदगी में दुख सुख सभी के आते हैं, लेकिन कई बार हमारी ज़िंदगी में ऐसे दुख आते हैं और हमें लगता है कि इस दुनिया में सबसे बड़ा दुखी इंसान हम ही हैं। भगवान के आगे बैठकर हम कोसते हैं भगवान को कि मेरी किस्मत ऐसी क्यों बनाई है, मुझे ही सारे दुख क्यों मिले हैं। तो श्रोताओं, ऐसे में कभी अगर वक्त मिले तो आप अस्पताल जाकर देखिए। भगवान ना करे कि किसी को अस्पताल जाना पड़े, लेकिन अगर आप वहाँ जाते हैं, वहाँ कोई अपने शरीर की तकलीफ़ से जूझ रहा होता है, कोई अपने बच्चे के ठीक होने की उम्मीद लगाए बैठा होता है, कोई अपने माता पिता के लिए प्रार्थना कर रहा होता है, वहाँ जाकर महसूस होता है कि ज़िंदगी कितनी बड़ी नेमत है। और हम कभी छोटी सी बात पर नाराज़ हो जाते हैं, कभी किसी असफलता को अपनी पूरी ज़िंदगी की हार समझ लेते हैं, कभी किसी चीज़ के ना मिलने पर सोचते हैं कि हमारे पास कुछ भी नहीं रहा। लेकिन अस्पताल के एक गलियारे में खड़े होकर देखिए, किसी के लिए सबसे बड़ी इच्छा सिर्फ इतनी है कि वह स्वस्थ होकर अपने घर वापस जा सके। तो श्रोताओं, ज़िंदगी की कीमत सच में तब समझ में आती है जब हमें लगता है कि हम बड़े दुखी हैं, लेकिन हमसे ज़्यादा दुखी लोग मिलते हैं तो लगता है हमारा दुख तो कुछ है ही नहीं। तो कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और गीतों के इस सिलसिले को यूं ही बढ़ाते हैं आगे। लीजिए, सुनिए श्रोताओं इस प्यारे से गीत को। शागिर्द फिल्म से इस गीत को लिया गया है और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ है।

श्रोताओं, कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला इस समय आप सभी सुन रहे हैं आपकी अपनी रेडियो दोस्त सुषमा के साथ। आप सभी ने ट्यून किया है 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आपका अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। श्रोताओं, थोड़ी सी बात करेंगे आजकल की रौनकों के ऊपर भी, क्योंकि आजकल सचमुच बाज़ार में चले जाइए या कहीं भी चले जाइए रौनकें लगी हुई हैं। घरों में भी अगर आप जाएंगे तो आजकल देखिए हर घर में यही चर्चा हो रही है कि राखी आ रही है, रक्षाबंधन आ रहा है, और ऐसे में हमारी जो बहनें हैं वो घर आएंगी तो हम कौन से पकवान बनाएंगे, या हमारी बहनों ने आना है हम उन्हें राखी पर क्या उपहार देंगे। तो कहीं ना कहीं घरों में भी इस चीज़ की तैयारियां हैं, और बाज़ार तो भाई देखने से बनते हैं, हर जगह नई नई राखियाँ जो हैं वो हमें अपनी ओर आकर्षित कर लेती हैं। बहुत सारी बहनें, बहुत सारी महिलाएं आजकल जब भी समय मिल रहा है जाकर रक्षाबंधन की जो है वो तैयारियों में लगी हुई हैं, बाज़ार जा रही हैं, और साथ ही साथ मिठाइयों की दुकान पर भी बहुत रश हो रहा है, क्योंकि बहुत अच्छी अच्छी मिठाइयां जो हैं वो अब बनने वाली हैं। दिवाली, माफ़ कीजिएगा, रक्षाबंधन के लिए जो है वो अब मिठाइयाँ भी तो बिकेंगी, और बहनों ने अपने भाइयों का मुंह भी तो मीठा करवाना है। लेकिन श्रोताओं, कहीं ना कहीं हमारे जो भाई हैं उनको एक डर जो है वो भी बना हुआ है कि उनकी जेब जो है वो हल्की होने वाली है। लेकिन हम यही कहेंगे, साल में एक दिन आता है बहनों का, और अगर आपकी जेब का बोझ थोड़ा सा कम हो भी जाए तो कोई बात नहीं। कहते हैं कि बहनों की दुआएँ इतनी होती हैं कि वो आप जो दोगे उससे दो गुना चार गुना आपको मिलेगा। तो छोटी छोटी बातों पर बिल्कुल भी चिंता मत किया कीजिए। और वैसे भी श्रोताओं, बहनें तो सिर्फ़ और सिर्फ प्यार की भूखी होती हैं, धन दौलत तो यहीं रह जाता है, बस जाता है, तो साथ आपका प्यार और आपका साथ। श्रोताओं, अब बातों को यहीं रोकते हैं और चलते हैं आगे समय के दर्पण में, यानी कि एक प्यारा सा गीत आप तक पहुँचाते हैं जीवनधारा फिल्म से, सुरेश वाडकर और आशा भोसले की आवाज़ों में ये गीत है। लीजिए, सुनिए और इन्जॉय कीजिए इस प्यारे से गीत को।

श्रोताओं कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला में अभी आपने सुना ये गीत और इन गीतों को आप ज़रूर सुन रहे हैं और इन्जॉय भी कर रहे होंगे। तो श्रोताओं कार्यक्रम में अब समय है एक छोटे से अंतराल का। इस छोटे से अंतराल के बाद फिर हम कार्यक्रम में जुड़ेंगे और आपसे करेंगे बातचीत। तो आप सभी यूं ही जुड़े रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर श्रोता हूँ, आप सभी ने ट्यून किया है आपका अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला में। श्रोता हूँ, एक जानकारी है जो आप तक पहुँचानी है। श्रोता हूँ, उपायुक्त ने बताया है कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा एवं सुविधा को देखते हुए मनी महेश यात्रा 25 अगस्त तक स्थगित रहेगी। उन्होंने श्रद्धालुओं से इस दौरान यात्रा मार्ग पर जाने से बचने तथा प्रशासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करने का आग्रह किया है। उन्होंने बताया कि मौसम एवं यात्रा मार्ग की स्थिति अनुकूल होने पर 26 अगस्त से यात्रा को दोबारा से शुरू किया जाएगा। तो श्रोताओं, ये जो जानकारियां हैं, ये जो प्रशासन के द्वारा हमें खबरें दी जाती हैं, उनका हमें ज़रूर पालन भी करना चाहिए और अपनी सुरक्षा हमारे अपने हाथों में ही है। श्रोताओं, कार्यक्रम में इस जानकारी के बाद अब हम आगे बढ़ेंगे और आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत। तो लीजिए श्रोताओं, सुनिए इस प्यारे से गीत को कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला में। पारस मनी फिल्म का ये गीत है श्रोताओं, और लता मंगेशकर की आवाज़ है।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर श्रोता हूँ, आप सभी ने ट्यून किया है आपका अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला में। अभी आपने सुना ये गीत। और श्रोता हूँ, कार्यक्रम में हम रोज़ाना आपके लिए नए नए गीत लेकर आते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको ये गीत पसंद आते होंगे। श्रोताओं, कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला में आप सभी जानते हैं कि हम आपको सुनवाते हैं प्रेरणादायक कहानी। तो अब समय हो गया है कहानी सुनवाने का। श्रोताओं, आप सभी ज़रूर तैयार बैठे होंगे कहानी सुनने के लिए, क्योंकि कहानी का नाम सुनते ही हमारे कान खड़े हो जाते हैं, क्योंकि कहानी सुनना हमें बचपन से ही अच्छा लगता है और कहानियाँ हमें कुछ ना कुछ सीख देकर जाती हैं। आज की कहानी भी श्रोताओं ऐसी ही है जो हमें कुछ ना कुछ सीख दे के जाने वाली है। तो चलते हैं, लेते हैं ये कहानी। श्रोताओं, एक आदमी ने बांस का बीज लगाया, वह हर दिन उसे पानी देता रहा। एक साल बीत गया लेकिन कुछ भी नहीं उगा, दूसरा साल भी निकल गया, तीसरा भी, चौथा साल भी ऐसे ही बीत गया, फिर भी ज़मीन के ऊपर कुछ दिखाई नहीं दिया। लोग जो थे उसका मजाक उड़ाने लगे, उन्होंने कहा इतनी मेहनत का क्या फ़ायदा जब कुछ उग ही नहीं रहा। लेकिन उस आदमी ने हार नहीं मानी, वह रोज़ उसी विश्वास के साथ पानी देता रहा। फिर पांचवें साल एक छोटा सा अंकुर निकला और हैरानी की बात ये थी कि सिर्फ 6 हफ्तों में वो बांस का जो पेड़ था वो लगभग 90 फीट ऊंचा बांस बन गया। तब श्रोताओं, लोगों ने बड़ी हैरानी के साथ उससे पूछा, क्या ये वही बांस है जिसे सिर्फ 6 हफ्तों में इतना बड़ा हो गया? उस आदमी ने मुस्कुराकर कहा, नहीं, इसे 6 हफ्ते नहीं, पूरे 5 साल लगे हैं। इन 5 सालों में इसकी जड़ें ज़मीन के अंदर मजबूत हो रही थी, अगर जड़ें मजबूत ना होती तो इतना ऊंचा बांस कभी खड़ा नहीं रह पाता, हल्की सी हवा चलने पर वो गिर सकता था। तो श्रोताओं, इस कहानी से हमें सीख क्या मिलती है? हमें ये सीख मिलती है कि ज़िंदगी में भी सफलता तुरंत नहीं मिलती, कई बार हमारी मेहनत का परिणाम लंबे समय तक दिखाई नहीं देता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कुछ हो ही नहीं रहा। आपकी मेहनत, आपका धैर्य और आपका विश्वास अंदर ही अंदर आपको मजबूत बना रहे होते हैं। इसलिए मेहनत करते रहिए, धैर्य रखिए और ख़ुद पर भरोसा रखिए। आपने जो सोचा है, जिस मंजिल पर पहुंचने का सोचा है, आप ज़रूर पहुंचेंगे, लेकिन समय ज़रूर लग सकता है। श्रोताओं, उम्मीद करते हैं कि आपको आज की ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर श्रोताओं, आप सभी ने ट्यून किया है आपका अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला में। अब समय हो रहा है प्रादेशिक समाचारों का, तो अब हम आगे बढ़ेंगे और चलेंगे शिमला, सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। राज्य सरकार के मुताबिक प्रदेश में 2 साल की अवधि में कैंसर रोगियों की संख्या हुई स्थिर। सभी स्वास्थ्य संस्थानों में 84,162 रोगी पहुंचे। सत्तापक्ष और विपक्ष के विधायकों ने विधानसभा परिसर में किया धरना प्रदर्शन। भ्रष्टाचार को लेकर लगाए आरोप प्रत्यारोप। प्रदेश विधानसभा में आज भी राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत को लेकर गतिरोध रहा जारी। सत्र के पहले दिन की फुटेज न मिलने से नाराज विपक्ष ने सदन से किया वॉकआउट। और लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने शिमला में ई मार्ट का किया शुभारंभ। महिलाओं को ऑनलाइन उत्पाद बेचने में मिलेगी मदद। अब समाचार विस्तार से। हिमाचल प्रदेश में 2 साल की अवधि में कैंसर रोगियों की संख्या लगभग स्थिर हुई है। शिमला में चल रहे प्रदेश विधानसभा के मॉनसून सत्र के दौरान आज सदन में प्रश्नकाल में विधायक विनोद कुमार के सवाल के जवाब में सरकार की तरफ से ये जानकारी दी गई है। सरकार ने बताया कि प्रदेश में वर्ष 2023 से 2026 की अवधि में सभी स्वास्थ्य संस्थानों में 84,162 कैंसर रोगी इलाज के लिए पहुंचे। विधायक केवल सिंह पठानिया के सवाल के जवाब में राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 साल पहले 1,500 करोड़ के विशेष आपदा पैकेज की घोषणा की थी, लेकिन धरातल पर आज तक राज्य को ये राशि प्राप्त नहीं हुई है। केवल सिंह पठानिया के ही सवाल के जवाब में सरकार की तरफ से जानकारी दी गई कि प्रदेश की जेलों में क्षमता से 775 अधिक कैदी मौजूद हैं और राज्य में कुल 14 कारावास हैं। विधानसभा में आज सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले ही सत्ता पक्ष व विपक्ष के विधायकों ने एक दूसरे के खिलाफ विधानसभा परिसर में धरना प्रदर्शन किया और सदन की कार्यवाही न चलने देने के आरोप लगाए। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे विशेष संवाददाता।
1: विधानसभा में आज मानसून सत्र के तीसरे दिन की कार्यवाही शुरू होने से पहले दोनों पक्षों सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों ने विधानसभा परिसर में भ्रष्टाचार को लेकर एक दूसरे पर आरोप लगाए। भाजपा विधायक हाथों में अटैची लेकर विधानसभा परिसर पहुंचे और नारेबाजी की। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी हुई है और विकास कार्य ठप पड़े हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के ही नेता सरकार पर 3 अटैची दिल्ली भेजने व 2 मुख्यमंत्री कार्यालय में रखने के आरोप लगा रहे हैं। जयराम ने कहा कि भाजपा सदन चलाना और जनता के मुद्दे उठाना चाहती है, लेकिन कांग्रेस भाग रही है।
2: हिमाचल प्रदेश में वर्तमान कांग्रेस की सरकार पूरी आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी हुई है और स्थिति ये बन गई है जो कांग्रेस पार्टी के ही नेता कहते हैं कि 3 अटैची दिल्ली जाते हैं और 2 अटैची मुख्यमंत्री के यहाँ जाते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि कांग्रेस पार्टी के ही नेता ने गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं वर्तमान कांग्रेस की सरकार के ऊपर। आज पूरे हिमाचल प्रदेश में जहाँ पूरी तरह से विकास कार्य ठप पड़े हैं, वहाँ भ्रष्टाचार चरम सीमा पर पहुँचे।
1: वहीं दूसरी तरफ उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि विपक्ष देश में महंगाई, चंदा चोरी, पेपर लीक जैसे बड़े मुद्दों को दबाने की कोशिश कर रहा है, इसलिए सदन की कार्यवाही को बार बार बाधित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सत्ता पक्ष चाहता है कि जनता से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हो।
3: पूरे हिमाचल को बताना चाहते हैं कि हम हाउस चलाना चाहते हैं, लेकिन ये हाउस नहीं चलाना चाहते, ये डिसरप्ट करना चाहते हैं, क्योंकि इनको पता है महंगाई की वजह से जो हालत हुई है, जो ये हिमाचल के हकों के खिलाफ जा रहे हैं, जो अन्य मुद्दे प्रदेश में इसमें बने हुए हैं इनके खिलाफ, ये हाउस नहीं चलाना चाहते, हम हाउस चलाना चाहते हैं।
1: विधानसभा के बाहर और अंदर दोनों जगह जहां विपक्ष बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सरकार को घेरने में लगा है, वहीं सरकार इन मुद्दों पर पूर्व भाजपा सरकार को जिम्मेदार ठहरा रही है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
0: मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति से काम कर रही है। आज शिमला में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने भाजपा विधायकों द्वारा विधानसभा परिसर में अटैची लेकर किए गए

0: दर्शन पर कहा कि भाजपा विधायकों की खरीद फरोख्त और असली मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाना चाहती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अटैची की राजनीति की शुरुआत भाजपा ने की थी और आज वही लोग भ्रष्टाचार के नाम पर नाटक कर रहे हैं। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार के 3 वर्ष के कार्यकाल में किसी मंत्री या मंत्रिमंडल पर भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं लगा है।
1: प्याज के दाम से ध्यान बढ़ाने के लिए टैची 2 टैची 3 टैची 5 टैची 7 टैची तो हम बता रहे हैं ना, जितने मर्जी टैची लाए, हिमाचल प्रदेश की जनता जानती है कि प्रदेश के हक की लड़ाई कौन लड़ रहा है। प्याज का दाम बढ़ गया, प्याज ही भर के लाते इन टैचियों में और जनता को बांट देते तो ही अच्छा होगा। चीनी भर के लाते इन टैचियों में जो आज उठाकर चले हुए। हम तो प्रदेश में भ्रष्टाचार मुक्त शासन चाहते, जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट करप्शन है। आपकी तरह नहीं कि टैची भर के 9 MLA खरीद लिए और वो भी प्रूफ है हमारे पास। अभी तो कई चीजें जनता की अदालत में आएगी, जनता तय करेगी कि क्या सच्चाई है।
0: ताजा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रदेश विधानसभा के मॉनसून सत्र के आज तीसरे दिन भी राष्ट्रगान और राष्ट्रीय गीत को लेकर गतिरोध जारी रहा। शोर शराबे के बीच सदन की कार्यवाही शुरू हुई और प्रश्नकाल के दौरान विपक्ष ने विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया से पहले दिन की कार्यवाही की वीडियो क्लिपिंग जारी करने की मांग की। सदन में राष्ट्रगान और राष्ट्रीय गीत को लेकर विधानसभा अध्यक्ष ने व्यवस्था दी कि सत्र की शुरुआत में राष्ट्रगान होगा जबकि सत्र के समापन में राष्ट्रीय गीत गाया जाएगा और वीडियो क्लिप भी उपलब्ध करवाई जाएगी। उन्होंने कहा कि विधानसभाओं को कोई डायरेक्शन नहीं आई है और राष्ट्रगान की परंपरा पहले से चली आ रही है। इस दौरान विपक्ष ने सदन के भीतर राष्ट्रगान के अपमान के आरोपों को लेकर सत्ता पक्ष पर झूठ बोलने के आरोप लगाए। विपक्ष ने सत्र के पहले दिन हुए राष्ट्रगान की फुटेज देने की मांग की लेकिन फुटेज न मिलने से नाराज विपक्ष ने सदन से वॉकआउट कर दिया। बाद में पत्रकारों से बातचीत में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि बार बार आग्रह करने के बावजूद विधानसभा अध्यक्ष द्वारा दी गई व्यवस्था में कांग्रेस के पाप पर पर्दा डालने की कोशिश की गई है।
2: हम चाह रहे सदन चले लेकिन सदन चलने से पहले जो हमने कमिटमेंट विधानसभा अध्यक्ष मोदी जी ने की है कि हम आपको वो क्लिपिंग जो है वो रिकॉर्ड की वो दे दें, लेकिन आज देने से मना कर दिया। अभी तक मैं बाद अब कहा कि मैं बाद में उसको एग्जामिन करूंगा, उसके बाद देखो कितना समय लगेगा। आज 4 दिन हो गए उसको एग्जामिन करते करते, उसके बावजूद भी वो उपलब्ध नहीं कराई गई। तो उसका मतलब है कि जो बोला गया था मुख्यमंत्री जी द्वारा, मंत्री के द्वारा, राष्ट्रीय गान का अपमान जो है भारतीय जनता पार्टी के विधायक उनके वो झूठ था, वो साबित हो गया, वो सरासर झूठ था और अध्यक्ष मोदी उनके झूठ को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए आज हम सदन से वॉकआउट करके बाहर।
0: दूसरी तरफ उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि विपक्ष सदन नहीं चलाना चाहता है इसलिए बार बार अवरोध डालने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि 15 अगस्त को जहां भी कार्यक्रम हुए वहां पहले राष्ट्रीय गीत गाया गया और फिर राष्ट्रगान गाया गया, लेकिन राज्य विधानसभाओं में अध्यक्ष का फैसला अंतिम होता है।
3: राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत दिए किसने हैं? ये सबसे पहले संविधान सभा में जो है कांग्रेस के समय में जो है ये गाए गए, उसी समय तय हो गया था कि इनको एक समान दर्जा मिलेगा। लेकिन यहाँ विधानसभा के अंदर तो स्पीकर इज सुप्रीम, अगर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर भी कोई गाइडलाइन जारी कर दे, वो भी किसी भी मिनिस्ट्री की गाइडलाइन यहाँ लागू नहीं होती, यहाँ पे संविधान लागू होता है। लेकिन हम स्वतंत्र हैं, हमारे स्पीकर साहब जो भी फैसला करेंगे उसके मुताबिक काम चलेगा। लेकिन जब राष्ट्रीय गान हुआ उसके बाद ये खड़े हो गए कि राष्ट्रीय गान क्यों गाया जा रहा है, राष्ट्रीय गीत गाया जाना चाहिए था। तो राष्ट्रीय गान का भी अपमान करना 3 साल की सजा का प्रावधान है।
0: लोक निर्माण व शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने आज शिमला में ई मार्ट का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि ई मार्ट सुविधा हिमाचल में नई शुरुआत है और प्रदेश में महिलाओं को सशक्त करने की दिशा में ई मार्ट मददगार बन रहे हैं। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि ई मार्ट के माध्यम से प्रदेश की स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को ऑनलाइन माध्यम से अपने उत्पाद बेचने का मंच प्रदान किया जा रहा है।
4: ई मार्ट एक नई शुरुआत है हिमाचल के अंदर, प्रदेश में हमारी महिलाओं को सशक्त करने के लिए एक अच्छा प्रयास इसके माध्यम से करवाया जा रहा है। इसमें हमारी जितनी भी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स पूरे प्रदेश के अंदर है उनको एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है जिसके माध्यम से वो अपने प्रोडक्ट्स को केवल हिमाचल में नहीं मगर पूरे देश के अंदर जो है वो बेच सकती हैं। हैंडीक्राफ्ट है, हमारा एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है, हॉर्टिकल्चरल प्रोड्यूस है, उनको पैकेजिंग सही रूप से करके को को इसके माध्यम से पूरे प्रदेश में देश में मार्केटिंग करने का प्रयास किया जाएगा।
0: चंबा जिला के जनजातीय क्षेत्र पांगी घाटी की शौर पंचायत में लोगों को पिछले लगभग 10 महीनों से खाद्य वितरण प्रणाली के माध्यम से राशन नहीं मिला है, जिससे उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। शौर पंचायत के उप प्रधान निहाल सिंह भारद्वाज ने आकाशवाणी को बताया कि लोगों को पिछले वर्ष अक्टूबर माह में राशन दिया गया था और उसके बाद अभी तक खाद्य सामग्री नहीं मिली है। उन्होंने कहा कि राशन उपलब्ध ना होने से शौर पंचायत के लोग कुल्लू मंडी से खाद्य सामग्री लाने के लिए मजबूर हो रहे हैं। निहाल सिंह भारद्वाज ने प्रदेश सरकार और पांगी प्रशासन से जल्द खाद्य सामग्री मुहैया करवाने की मांग की है, ताकि लोगों को राहत मिल सके। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य सरकार के मुताबिक प्रदेश में 2 साल की अवधि में कैंसर रोगियों की संख्या हुई स्थिर। सभी स्वास्थ्य संस्थानों में 84,162 रोगी पहुंचे। सत्तापक्ष और विपक्ष के विधायकों ने विधानसभा परिसर में किया धरना प्रदर्शन। भ्रष्टाचार को लेकर लगाए आरोप प्रत्यारोप। प्रदेश विधानसभा में आज भी राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत को लेकर गतिरोध रहा जारी। सत्र के पहले दिन की फुटेज न मिलने से नाराज विपक्ष ने सदन से किया वॉकआउट। और लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने शिमला में ई मार्ट का किया शुभारंभ। महिलाओं को ऑनलाइन उत्पाद बेचने में मिलेगी मदद। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:20 पर। नमस्कार।
5: 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर श्रोताओं, आप सभी ने ट्यून किया है आपका अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। श्रोताओं, आपने सुने अभी प्रादेशिक समाचार, और प्रादेशिक समाचारों के साथ ही कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला का समय भी अब समाप्ति की ओर है। तो श्रोताओं, जाते जाते आपको सुनवाएंगे आज के कार्यक्रम का आखिरी गीत। रॉकस्टार फिल्म से लिया गया ये गीत है और मोहित चौहान की आवाज़ है। इस गीत के साथ श्रोताओं, अब अपनी रेडियो दोस्त सुषमा को दीजिए आज के लिए जाने की अनुमति। जय हिंद।

0: गोरिया
1: गोरिया गोरिया आकर आ
0: गोरिया
2: हटो हटो हटो हटो एले गोरिया।
3: प्लास्टिक गोरिया जैसे नादान जानवरों की जान ले सकता है। आप भी छोटी सी शुरुआत कीजिए, प्लास्टिक को अलग डस्टबिन में डाल के शुरू करें एक छोटी सी अच्छाई।
4: बैठिए मैडम बैठिए। अरे देखो इनको, इनकी नाक देखो, बिल्कुल अपने पिताजी से मिलती है। देखो इसकी आंखें देखो। पता है तेरे पिताजी ने हमें हंसाया है, रुलाया है, मनोरंजन दिया है। मतलब कौन सा गाना था, एक चतुर नार बड़ी होशियार है, क्या गाना था वो।
5: अरे बेटो तू यहाँ क्या कर रहा है, और ये दोनों लड़कियां कौन है?
4: देखिए भाई साहब आप कौन है?
5: जी मैं इसका बाप हूँ।
4: आप इसके बाप हैं? महमूद का बेटा नहीं तू? अरे हास्य कलाकार महमूद, ये तेरे बाप का रोड नहीं है?
6: जी नहीं।
4: तो फिर बिना हेलमेट के दो लड़कियों को बिठा के रूम रूम करते शर्म नहीं आती तुम्हें?
7: जवान तो कटेगा भैया तेरा।
4: और अभी उतर के लेके जाओ। आपकी और सबकी सुरक्षा के लिए कृपया ट्रैफिक नियम का पालन कीजिए, क्योंकि
6: रोड किसी के बाप का नहीं।
4: शाबाश, सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा।
8: नमस्कार दोस्तों, प्रेम विश्वास और भाई बहन के अटूट रिश्ते का ये पावन पर्व रक्षाबंधन आप सभी के जीवन में ढेर सारी खुशियाँ लेकर आ रहा है। राखी का ये पवित्र धागा सिर्फ कलाई पर बंधा एक धागा नहीं, बल्कि प्यार विश्वास सुरक्षा और जीवन भर साथ निभाने के वचन का प्रतीक है।

0: का उत्सव,
1: रिश्तों में मिठास रहे, अपनों का साथ रहे, रिश्तों में मिठास रहे, अपनों का साथ रहे, हर कलाई पर सजे प्यार का धागा और हर चेहरे पर मुस्कान रहे। इन्हीं खूबसूरत भावनाओं के साथ रेडियो गुंजन धर्मशाला की ओर से आ रहे इस रक्षाबंधन पर्व की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं।

0: नमस्ते भैया, कैसे हो भाभी जी?
1: अभी शादी का लहंगा सिलवाना था।
0: हाँ हाँ, बहुत सारे डिजाइन है, ये देखिए। कौन सा स्टाइल चाहिए आपको? ये देखिए, पिछले महीने मिश्रा जी की बेटी की शादी के लिए सिया था।
1: ये तो स्लीवलेस है, हमें फुल स्लीव्स वाला चाहिए। थोड़ा सिंपल दिखाइए।
0: सिंपल में तो फिर, अरे पर किसके लिए बनाना है?
1: चुन्नी के लिए।
0: ये अपनी चुन्नी?
1: हाँ, अच्छा रिश्ता मिला है।
0: बेटा चुन्नी, कितने साल के हो आप?
2: अगले महीने 12 साल की हो जाएगी। पंडित जी ने इसी इतवार का मुहूर्त निकाला है, तो हो तो जाएगा ना तब तक।
0: अच्छा, 12 साल की है तो आपको प्रॉब्लम नहीं है?
2: नहीं, क्यों?
0: और आपको भी प्रॉब्लम नहीं है? पर मुझे प्रॉब्लम है, मैं नहीं सीऊंगा।
2: चलो छोड़ो उसे, किसी और से सिलवा लेंगे।
0: अरे भैया जी, एक मिनट। अरे बिरजू, वो कौन सा नंबर है, निकलवाओ तो जरा।
3: मास्टर जी, टोल फ्री नंबर है 1098, कभी भी कॉल करके कंप्लेन कर सकते हैं।
0: ना हम सिएंगे, ना किसी को सीने देंगे।
4: जीवन की हर उलझन का हल मिलेगा मित्र, बस अपने मन को थोड़ा शांत करके देखो। जो तुम्हारा है वो कहीं नहीं जाएगा, और जो चला गया वो कभी तुम्हारा था ही नहीं। हर परिस्थिति में मुस्कुराना सीखो, क्योंकि मुस्कान ही हर दर्द की सबसे बड़ी दवा है। भरोसा उस ईश्वर पर पूरा रखो, वो तुम्हें वही देगा जो तुम्हारे लिए सही है। तुम्हारी सरलता ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है, और तुम्हारी खामोशी में ही ईश्वर का वास।
5: मम्मी जी क्या कह रहे हैं, बचपन में आपका बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ था।
2: हाँ, जब मैं 12 साल का था ना, तो मैं पापा को बिना बताए उनकी बाइक लेके घर से बाहर निकल गया, और मैं बाइक इतनी तेज चला रहा था कि सामने से एकदम से ट्रक आ गया। तो ट्रक को बचाने के चक्कर में मैंने एकदम से लेफ्ट ले लिया। तो जैसे ही लेफ्ट लिया, सामने से गाड़ी आ रही थी, और गाड़ी में जाके बाइक लगी और बाइक पूरी खत्म हो गई।
5: बेबी बाइक को छोड़ो, आप बताओ आप बचे थे कि नहीं?
2: तब तो बच गया था, लगता है अब नहीं बचूंगा।

0: गोरिया
1: गोरिया
2: गोरिया।
3: प्लास्टिक गोरिया जैसे नादान जानवरों की जान ले सकता है। आप भी छोटी सी शुरुआत कीजिए, प्लास्टिक को अलग डस्टबिन में डाल के शुरू करें एक छोटी सी अच्छाई।
4: बैठिए मैडम बैठिए। देखो इनको, इनकी नाक देखो, बिल्कुल अपने पिताजी से मिलती है। देखो इसकी आंखें देखो। पता है तेरे पिताजी ने हमें हंसाया है, रुलाया है, मनोरंजन दिया है। मतलब कौन सा गाना था, एक चतुर नार बड़ी होशियार है, क्या गाना था वो।
5: ओए बेटो तू यहाँ क्या कर रहा है, और ये दोनों लड़कियां कौन है?
4: देखिए भाई साहब आप कौन है?
5: जी मैं इसका बाप हूँ।
4: आप इसके बाप हूँ? महमूद का बेटा नहीं है तू? अरे हास्य कलाकार महमूद, ये तेरे बाप का रोड नहीं है?
6: जी नहीं।
4: तो फिर बिना हेलमेट के दो लड़कियों को बिठा के रूम रूम करते शर्म नहीं आती तुम्हें?
7: जवान तो कटेगा भैया तेरा।
4: और अभी उतर के लेके जाओ। आपकी और सबकी सुरक्षा के लिए कृपया ट्रैफिक नियमों का पालन कीजिए, क्योंकि
6: रोड किसी के बाप का नहीं।
4: शाबाश, सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा।
8: नमस्कार दोस्तों, प्रेम विश्वास और भाई बहन के अटूट रिश्ते का ये पावन पर्व रक्षाबंधन आप सभी के जीवन में ढेर सारी खुशियाँ लेकर आ रहा है। राखी का ये पवित्र धागा सिर्फ कलाई पर बंधा एक धागा नहीं, बल्कि प्यार विश्वास सुरक्षा और जीवन भर साथ निभाने के वचन का प्रतीक है।

रिश्तों में मिठास रहे, अपनों का साथ रहे। रिश्तों में मिठास रहे, अपनों का साथ रहे। हर कलाई पर सजे प्यार का धागा और हर चेहरे पर मुस्कान रहे। इन्हीं खूबसूरत भावनाओं के साथ रेडियो गुंजन धर्मशाला की ओर से आ रहे इस रक्षाबंधन पर्व की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं।

0: नमस्ते भैया, कैसे हो भाभी जी?
1: अभी शादी का लहंगा सिलवाना था।
0: हाँ हाँ, बहुत सारे डिजाइन है, ये देखिए। कौन सा स्टाइल चाहिए आपको? ये देखिए, पिछले महीने मिश्रा जी की बेटी की शादी के लिए सिया था।
1: ये तो स्लीवलेस है, हमें फुल स्लीव्स वाला चाहिए। थोड़ा सिंपल दिखाइए।
0: सिंपल में तो फिर, अरे पर किसके लिए बनाना है?
1: चुन्नी के लिए।
0: ये अपनी चुन्नी?
1: हाँ, अच्छा रिश्ता मिला है।
0: बेटा चुन्नी, कितने साल के हो आप?
2: अगले ही महीने 12 साल की हो जाएगी। पंडित जी ने इसी इतवार का मुहूर्त निकाला है, तो हो तो जाएगा ना तब तक।
0: अच्छा, 12 साल की है तो आपको प्रॉब्लम नहीं है?
2: नहीं, क्यों?
0: और आपको भी प्रॉब्लम नहीं है? पर मुझे प्रॉब्लम है, मैं नहीं सीऊंगा।
2: चलो छोड़ो उसे, किसी और से सिलवा लेंगे।
0: अरे भैया जी, एक मिनट। अरे बिरजू, वो कौन सा नंबर है, निकलवाओ तो जरा।
3: मास्टर जी, टोल फ्री नंबर है 1098, कभी भी कॉल करके कंप्लेन कर सकते हैं।
0: ना हम सीएंगे, ना किसी को सीने देंगे।
4: जीवन की हर उलझन का हल मिलेगा मित्र, बस अपने मन को थोड़ा शांत करके देखो। जो तुम्हारा है वो कहीं नहीं जाएगा, और जो चला गया वो कभी तुम्हारा था ही नहीं। हर परिस्थिति में मुस्कुराना सीखो, क्योंकि मुस्कान ही हर दर्द की सबसे बड़ी दवा है। भरोसा उस ईश्वर पर पूरा रखो, वो तुम्हें वही देगा जो तुम्हारे लिए सही है। तुम्हारी सरलता ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है, और तुम्हारी खामोशी में ही ईश्वर का वास।
5: मम्मी जी क्या कह रहे हैं, बचपन में आपका बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ था।
6: हाँ, जब मैं 12 साल का था ना, तो मैं पापा को बिना बताए उनकी बाइक लेके घर से बाहर निकल गया, और मैं बाइक इतनी तेज चला रहा था कि सामने से एकदम से ट्रक आ गया। तो ट्रक को बचाने के चक्कर में मैंने एकदम से लेफ्ट ले लिया। तो जैसे ही लेफ्ट लिया, सामने से गाड़ी आ रही थी, और गाड़ी में जाके बाइक लगी और बाइक पूरी खत्म हो गई।
5: बेबी, बाइक को छोड़ो, आप बताओ आप बचे थे कि नहीं?
6: तब तो बच गया था, लगता है अब नहीं बचूंगा।

102 मेगाहर्ट्ज पर ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। जी श्रोताओं, और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने।

आप सभी का अपना सामुदायिक रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ।

92.2 मेगाहर्ट्ज पर ये है आप सभी का अपना पसंदीदा रेडियो गुंजन धर्मशाला। और दोस्तों आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने।

92.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और श्रोताओ, आप सभी इस समय कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने, अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ।

समय आप सभी ने ट्यून किया है 91.2 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो गुंजन धर्मशाला। जी श्रोताओं, और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ।

ये है आप सभी का अपना सामुदायिक रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ।

92.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये है आप सभी का अपना पसंदीदा रेडियो गुंजन धर्मशाला। और दोस्तों आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने।

92.2 MHz पर ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और श्रोताओं, आप सभी इस समय कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने, अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ।

0: गोरिया
1: गोरिया गोरिया आकर आ
0: गोरिया
2: हटो हटो हटो हटो एले गोरिया।
3: प्लास्टिक गोरिया जैसे नादान जानवरों की जान ले सकता है। आप भी छोटी सी शुरुआत कीजिए, प्लास्टिक को अलग डस्टबिन में डाल के शुरू करें एक छोटी सी अच्छाई।
4: बैठिए मैडम बैठिए। अरे देखो इनको, इनकी नाक देखो, बिल्कुल अपने पिताजी से मिलती है। देखो इसकी आंखें देखो। पता है तेरे पिताजी ने हमें हंसाया है, रुलाया है, मनोरंजन दिया है। मतलब कौन सा गाना था, एक चतुर नार बड़ी होशियार है, क्या गाना था वो?
5: ओए बिट्टो तू यहाँ क्या कर रहा है, और ये दोनों लड़कियां कौन है?
4: देखिए भाई साहब आप कौन है?
5: जी मैं इसका बाप हूँ।
4: आप इसके बाप हूँ? महमूद का बेटा नहीं है तू? अरे हास्य कलाकार महमूद, ये तेरे बाप का रोड नहीं है?
6: जी नहीं।
4: तो फिर बिना हेलमेट के दो लड़कियों को बिठा के रूम रूम करते शर्म नहीं आती तुम्हें?
7: जवान तो कटेगा भैया तेरा।
4: और अभी उतर के लेके जाओ। आपकी और सबकी सुरक्षा के लिए कृपया ट्रैफिक नियम का पालन कीजिए, क्योंकि
6: रोड किसी के बाप का नहीं।
4: शाबाश, सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा।
8: नमस्कार दोस्तों, प्रेम विश्वास और भाई बहन के अटूट रिश्ते का ये पावन पर्व रक्षाबंधन आप सभी के जीवन में ढेर सारी खुशियाँ लेकर आ रहा है। राखी का ये पवित्र धागा सिर्फ कलाई पर बंधा एक धागा नहीं, बल्कि प्यार विश्वास सुरक्षा और जीवन भर साथ निभाने के वचन का प्रतीक है।

रिश्तों में मिठास रहे, अपनों का साथ रहे। रिश्तों में मिठास रहे, अपनों का साथ रहे। हर कलाई पर सजे प्यार का धागा और हर चेहरे पर मुस्कान रहे। इन्हीं खूबसूरत भावनाओं के साथ रेडियो गुंजन धर्मशाला की ओर से आ रहे इस रक्षाबंधन पर्व की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं।

0: नमस्ते भैया, कैसे हो भाभी जी?
1: अभी शादी का लहंगा सिलवाना था।
0: हाँ हाँ, बहुत सारे डिजाइन है, ये देखिए कौन सा स्टाइल चाहिए आपको। ये देखिए, पिछले महीने मिश्रा जी की बेटी की शादी के लिए सिया था।
1: ये तो स्लीवलेस है, हमें फुल स्लीव्स वाला चाहिए। थोड़ा सिंपल दिखाइए।
0: सिंपल में तो फिर, अरे पर किसके लिए बनाना है?
1: चुन्नी के लिए।
0: ये अपनी चुन्नी?
1: हाँ, अच्छा रिश्ता मिला है।
0: बेटा चुन्नी, कितने साल के हो आप?
2: अगले ही महीने 12 साल की हो जाएगी। पंडित जी ने इसी इतवार का मुहूर्त निकाला है, तो हो तो जाएगा ना तब तक।
0: अच्छा, 12 साल की है तो आपको प्रॉब्लम नहीं है?
2: नहीं, क्यों?
0: और आपको भी प्रॉब्लम नहीं है? पर मुझे प्रॉब्लम है, मैं नहीं सीऊंगा।
2: चलो छोड़ो उसे, किसी और से सिलवा लेंगे।
0: अरे भैया जी, एक मिनट। अरे बिरजू, वो कौन सा नंबर है, निकलवाओ तो जरा।
3: मास्टर जी, टोल फ्री नंबर है 1098, कभी भी कॉल करके कंप्लेन कर सकते हैं।
0: ना हम सीएंगे, ना किसी को सीने देंगे।
4: जीवन की हर उलझन का हल मिलेगा मित्र, बस अपने मन को थोड़ा शांत करके देखो। जो तुम्हारा है वो कहीं नहीं जाएगा, और जो चला गया वो कभी तुम्हारा था ही नहीं। हर परिस्थिति में मुस्कुराना सीखो, क्योंकि मुस्कान ही हर दर्द की सबसे बड़ी दवा है। भरोसा उस ईश्वर पर पूरा रखो, वो तुम्हें वही देगा जो तुम्हारे लिए सही है। तुम्हारी सरलता ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है, और तुम्हारी खामोशी में ही ईश्वर का वास।
5: मम्मी जी क्या कह रहे हैं, बचपन में आपका बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ था।
6: हाँ, जब मैं 12 साल का था ना, तो मैं पापा को बिना बताए उनकी बाइक लेके घर से बाहर निकल गया, और मैं बाइक इतनी तेज चला रहा था कि सामने से एकदम से ट्रक आ गया। तो ट्रक को बचाने के चक्कर में मैंने एकदम से लेफ्ट ले लिया। तो जैसे ही लेफ्ट लिया, सामने से गाड़ी आ रही थी, और गाड़ी में जाके बाइक लगी और बाइक पूरी खत्म हो गई।
5: बेबी, बाइक को छोड़ो, आप बताओ आप बचे थे कि नहीं?
6: तब तो बच गया था, लगता है अब नहीं बचूंगा।

10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, let's start the fun!

0: जाते हो या जबरदस्ती करूं?
1: जाता हूँ जाता हूँ जाता हूँ। केवल इतना बता दीजिए कि आप हमसे प्यार तो करती हैं ना,
0: नहीं
1: थोड़ा भी नहीं,
0: नहीं
1: झूठा भी नहीं।
0: नहीं नहीं नहीं

91.2 MHz पर यह आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। तो आइए श्रोताओं, सुनते हैं सुंदरकांड। आप सभी यूं ही सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।